0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
1: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य की जल आवश्यकताओं और शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय के दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में कल शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने जल संरक्षण से जुड़े उपाय अपनाने का आह्वान किया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन अंतरिक्षयान है और ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को HPV टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव का एक महत्वपूर्ण उपाय है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि

0: विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा यह दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का पांचवा विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल उपकरण और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। 6 टन से अधिक बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हैं। भोटे कोशी नदी के मार्ग में बनी सुरंगों और नेपाल के भूमिगत बिजली घरों में लोगों के फंसे होने की आशंका है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और वित्तीय प्रणाली की बेहतर सुदृढ़ता दर्शाता है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। पहली ICC विमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has called for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization, including population growth and future water requirements, and suggested organizing similar Chintan Shivirs for urban local bodies. Mr. Modi yesterday chaired the valedictory session of the 2-day National Departmental Summit on Water, organized by the Ministry of Jal Shakti. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops, including exposure to global best practices, to enable Indian manufacturers and stakeholders to develop and scale efficient solutions. The Prime Minister appreciated the intensive 2-day deliberations and emphasized that the actionable and time-bound action points emerging from the summit should be pursued through a continuous process of review and learning. Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Belgium Bart De Wever will hold bilateral talks in New Delhi today. Both leaders will discuss the entire spectrum of bilateral relations as well as regional and global issues of mutual interest. The Belgian Prime Minister arrived in the national capital last night on a 3-day visit to India. Prime Minister De Wever is accompanied by Belgian Minister of Defence Theo Franken. This is his first visit to India since taking office in February last year. The visiting dignitary will also deliver a keynote address at a Confederation of Indian Industry business event in the context of the India-EU Free Trade Agreement. More from our correspondent.
2: India and Belgium share historical ties spanning over 3 centuries. Belgium was among the first European countries to establish diplomatic relations with independent India in September 1947. Belgium is an important economic partner for India in Europe. Bilateral trade reached over $13 billion in 2025-26. Diamond trade, with Antwerp as a major global diamond hub, remains a significant component of bilateral commerce. Belgium is also an important source of investment in India. FDI inflows from Belgium amounted to approximately $4.2 billion between April 2000 and December 2025. Science, technology, and innovation cooperation is an important pillar of the partnership, and India and Belgium have developed cooperation in renewable energy, clean technologies, and sustainability. Defense cooperation is also emerging as an important new dimension of the partnership, reflecting the diversification of bilateral ties into strategic and security-related areas. Suparna Saikia, Akashwani News, Delhi.
1: Japan Credit Rating Agency, JCR, has upgraded India's long-term foreign currency and local currency issuer ratings by 1 notch from BBB+ to A-, while maintaining the stable outlook. JCR has also raised India's country ceiling by 1 notch to A. The Finance Ministry said that the upgrade reflects India's solid economic growth, the effectiveness of economic policies in

0: श्रोताओं, इसी शब्द के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे राजा राम मोहन रॉय के विचार। शुभ प्रभात। आज के चिंतन कार्यक्रम में प्रस्तुत है लघु वार्ता राजा राम मोहन रॉय के विचार। आलेख है संध्या रानी का और वाचन स्वर नीलम मलकानिया का।
1: राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। उनका उद्देश्य एक समान और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना था। उनकी शुरुआती शिक्षा गांव में ही हुई थी। वे बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे। यही कारण है कि उनको बहुत ही कम उम्र में अनेक भाषाओं का ज्ञान हो गया था। उन्होंने कुछ समय के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में भी काम किया था। वहां कुछ सालों तक काम करने के बाद छोड़ दिया। दरअसल उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था। समाज में अंधविश्वास, छुआछूत, जातपात, बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा, महिलाओं में शिक्षा का अभाव और धार्मिक भेदभाव के खिलाफ उन्होंने जमकर विरोध किया था। सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की भूमिका सबसे अहम रही है। उस समय समाज में ऐसी परंपरा थी कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी भी पति के साथ चिता पर जल जाती थी। उसको धर्म का नाम दिया जाता था, लेकिन इसके विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाता था। कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय के भाई की मृत्यु के बाद उनकी भाभी भी अपने पति के साथ चिता पर जल गई थी। इसका प्रभाव राजा राम मोहन राय के मन पर बहुत अधिक पड़ा और उन्होंने उसी समय ठान लिया कि अब इस बुराई का अंत करके ही रहूंगा, ताकि ऐसी घटना किसी दूसरी महिला के साथ ना हो। इसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और घूम घूम कर लोगों को जागरूक किया। इसका परिणाम ये हुआ कि अंत में वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सन 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। राजा राम मोहन राय महिलाओं की शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे। उनका मानना था कि महिलाएं जब तक शिक्षित नहीं होंगी, तब तक वे अपने अधिकारों के बारे में नहीं समझेंगी, क्योंकि वे जानते थे कि समाज में बदलाव तभी आ सकता है जब देश का हर नागरिक शिक्षित हो। इसके लिए उन्होंने अपने धन से कॉलेज खोला, जहां अंग्रेजी और विज्ञान की पढ़ाई होती थी। इसके अतिरिक्त वे चाहते थे कि पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार दिया जाए। इसके साथ ही वे बहुविवाह के बहुत बड़े विरोधी थे।

0: दरअसल उस समय समाज में पुरुष कई कई विवाह करते थे। सन 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, क्योंकि उस समय छुआछूत और अंधविश्वास का बोलबाला था। वे देश के पहले ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने शिक्षा को आत्मनिर्भरता और सामाजिक जागरूकता का साधन माना था। उन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली का भी समर्थन किया था। उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच संवाद और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया था। इसके अलावा उन्होंने ईश्वर की एकता का प्रचार किया था और धर्म को मानवता की सेवा का श्रेष्ठ साधन बताया था। उन्होंने तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया था। उनका मानना था कि अंधविश्वास और अज्ञानता से मुक्ति पाने के लिए तर्क का सहारा लेना बेहद जरूरी है। राजा राम मोहन राय ने विदेशी उत्पादों के उपयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का समर्थन किया था, जिससे देश की अर्थव्यवस्था की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिल सके। उनके विचारों ने सिर्फ भारतीय समाज को जागरूक ही नहीं किया, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, जिसमें आपने सुना राजा राम मोहन रॉय के विचार। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस अयोध्या कांड भाग 37।

प्रयाग क्षेत्र को तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गंगा यमुना तथा सरस्वती के संगम पर स्थित इस पुण्य भूमि पर पहुंचकर सबके मनोरथ सफल हो जाते हैं। ऐसी पावन भूमि के दर्शन कर श्री रामचंद्र ने परम सुख का अनुभव किया। उन्होंने सीता, लक्ष्मण तथा सखा निषाद राज को तीर्थराज प्रयाग की महिमा कह सुनाई। सभी ने त्रिवेणी के दर्शन किए। वहां स्नान कर विधि पूर्वक शिव तथा तीर्थ देवताओं की पूजा की और फिर भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। श्री राम ने भरद्वाज मुनि को दंडवत प्रणाम किया तो मुनिराज ने उन्हें हृदय से लगा लिया। आनंदातिरेक में आशीर्वाद देते हुए उन्हें यह प्रतीति हुई कि देवी सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम के दर्शन कराकर विधाता ने उनके संपूर्ण पुण्यों का फल लाकर आंखों के सामने रख दिया है। प्रेम सहित पूजन करके भरद्वाज जी ने उन्हें कंद मूल फल खिलाए और स्नेह सनी वाणी में अपने उद्गार प्रकट किए। आपके दर्शन कर आज मेरी तपस्या, जप योग, तीर्थ सेवन और त्याग, वैराग्य सभी सफल हो गए। प्रभु दर्शन के अतिरिक्त लाभ और सुख की कोई अन्य सीमा नहीं है। जब तक मनुष्य मन, वचन और कर्म से छल कपट त्याग कर आपका दास नहीं हो जाता, तब तक कोटि उपाय करके भी उसे स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
1: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की कल अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृपया से फिर से सुन लें, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्य रात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को HPV टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा ये दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सामग्री भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 7:10 और पूरे 25 सेकेंड। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संगीत का, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे शीतल चौहान द्वारा गाए भजन। सबसे पहले मीराबाई की रचना पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीत का, जिसके अंतर्गत आपने सुना शीतल शर्मा द्वारा गाए भजन, शीतल चौहान द्वारा गाए भजन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि इस खूबसूरत से भजन को सुनने के बाद आपका मन भी आनंदित हो गया होगा। मैं कौन हूँ? मैं हूँ आपकी दोस्त आरती गौड़। कार्यक्रम लेकर आई हूँ गीतों भरी गुड मॉर्निंग। आप जुड़े हैं इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ और नमस्कार आप सभी का। आप सबका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, यही मेरी कामना है। और इसी कामना को लेकर मैं आज की इस खूबसूरत सी सुबह में आपके लिए चली आई हूँ। जिंदगी की एक नई सुबह है, नई नई चाय की चुस्की होगी। आपके साथ आपकी दोस्त जुड़ी हुई है और हमेशा की तरह आपके लिए कुछ खास भी लेकर आई हूँ। लेकिन इस खास से मिलने से पहले आइए एक खूबसूरत से गीत की और भी शुरुआत हो जाए। इस गीत को सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि बस जिंदगी ऐसे ही गुजर जाए, प्रेम नगरिया की डगरिया चल चल।

दोस्तों, आज जब रास्ते से मैं आ रही थी तो काफ़ी जगह बहुत सारी सजावट हो रही थी, क्योंकि आप सबको पता है कि कल का दिन क्या है। कल है जन्माष्टमी, हमारे कान्हा जी का जन्मदिन। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ कान्हा जी के बारे में ही आज आपसे बात की जाए। कल शायद आपसे मुलाकात ना हो, तो चलिए आज एक किस्सा जो है मैंने कहीं पर पढ़ा था वो मेरे दिमाग में आ गया है, तो उसको मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बात कुछ ऐसी है कि बात बहुत पुरानी है। श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के साथ गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गरीब ब्राह्मण दिखा जो भगवान कृष्ण का परम भक्त था। वो हर समय कृष्ण का नाम जप करता रहता था, लेकिन उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी यानी आर्थिक स्थिति थी वो बहुत खराब थी। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, माधव ये तो आपका सच्चा भक्त है, तो फिर ये इतना दुखी और गरीब क्यों है? आप इसकी मदद कीजिए ना। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन तुम चाहो तो मदद करके देख लो, कर लो। अर्जुन को दया आ गई। उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को एक थैली भर के सोने की अशर्फियां दे दी। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और अपने घर की तरफ भागा। लेकिन पता है रास्ते में क्या हुआ?

तो दोस्तों, हम मैं सुना रही थी आपको कृष्ण और अर्जुन की एक दास्तान, एक कहानी। तो उस गरीब ब्राह्मण को जो अर्जुन ने दिया, उसके बावजूद जो ब्राह्मण था वो उसके जो पैसे थे, थैली में जो सोने की सर्फियां थी, वो सब लूट के ले गए डाकू। लेकिन उसके बाद बताया क्या हुआ, अर्जुन ने हार नहीं मानी। अर्जुन ने उस ब्राह्मण को दुखी देखा तो उस पर फिर से तरस आया, और इस बार अर्जुन ने उसे एक बहुमूल्य जो कीमती रत्न था ना, वो दे दिया। ब्राह्मण घर गया और उसने उस रत्न को एक पुराने घड़े में छिपा दिया ताकि कोई चुरा ना सके। थका हुआ था तो सो गया। दोपहर को उसकी पत्नी नदी से पानी लेने गई और गलती से वही पुराना घड़ा ले गई जिसके अंदर उसने वो रत्न छुपाया था। नदी में उसने घड़ा धोया और पता है क्या हुआ, रत्न जो था वो नदी के बहते पानी में चला गया। ब्राह्मण जब जागा और उसने घड़ा गायब देखा तो उसने अपनी पत्नी से पूछा। उसने कहा कि मैं तो पानी लेने गई थी लेकिन घड़ा तो टूटा हुआ था और पानी भर ही नहीं पाया। अब उसकी पत्नी ने तो बहुत आराम से इस बात को कह दिया, लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि इतनी मुश्किल से तो कीमती रत्न मिला था, वो भी चला गया, और वो बहुत फिर से दुखी हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये कहानी भी आगे बढ़ेगी, लेकिन इस गीत के बाद।

चलिए दोस्तों, कहानी को बढ़ाते हैं आगे है। तो आगे की कहानी में कुछ ऐसा होता है कि कुछ ही दिनों बाद श्री कृष्ण और अर्जुन फिर से उसी रास्ते से गुजरते हैं। अर्जुन ब्राह्मण को फिर से दुखी देखता है तो हैरान हो जाता है। कहता है, माधव, मैंने इसकी दो बार मदद की, पर इसकी गरीबी तो दूर नहीं हुई। मैंने मुद्राएं दी, मैंने कीमती रत्न दिया, पर फिर भी क्या परेशानी है। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और कहा, चलो इस बार मैं मदद करता हूँ। तो कृष्ण ने खुद उस ब्राह्मण को 2 पैसे दिए। अर्जुन ने कहा, इतने में क्या होगा उसका, इतने में तो उसका कुछ भी गुजारा नहीं होगा। उसने कहा, तुम बस देखो। अर्जुन ने तो मन ही मन सोचा, मैंने सिक्के दिए, कीमती रत्न दिया, तब तो इसका कुछ हुआ नहीं, 2 पैसे से क्या ही होगा, भगवान कृष्ण भी कितने कंजूस हैं। इसके बाद जो ब्राह्मण था वो 2 पैसे लेके घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक मछुआरा था, वो जाल में फंसी एक छोटी सी मछली को मार रहा है। ब्राह्मण के मन में तो भाई दया आ गई। उसने सोचा, 2 पैसे से मेरा तो कोई भला होने वाला है नहीं, क्यों ना इस बेजुबान की जान बचा ली जाए। उसने 2 पैसे देकर वो मछली खरीद ली और अपने कमंडल के पानी में डाल ली ताकि उसे नदी में छोड़ सके। जैसे ही उसने मछली को कमंडल में डाला, उसके बाद एक जादू हुआ। और वो जादू क्या था वो भी बताएंगे पहले ये गीत से।

दोस्तों, मैं आपको सुना रही थी कहानी अर्जुन और कृष्णा की। आपको पता है, जब जो वो ब्राह्मण थे, उन्होंने जब कमंडल में पानी में उसको डाल लिया मछली को, और उसे इसलिए लेके चले कि इसे नदी में छोड़ दें, इसकी तो जान बच जाए, मेरा तो पता नहीं क्या होगा। पता है क्या हुआ? मछली के मुंह

से वही रत्न बाहर निकल आया जो अर्जुन ने कभी दिया था उन ब्राह्मण को। मतलब ये देखने के बाद ब्राह्मण खुशी से चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया, माधव की कृपा से मिल गया। और उसके बाद जब वो ये बोल रहे थे, चिल्ला चिल्ला के खुशी से झूम रहे थे कि मिल गया मिल गया, तो वहां से वही डाकू जिसने सोने की वो मुद्राएं, सोने की वो अशर्फियां चुराई थी, वो गुजर रहा था। डाकू को पता क्या लगा, उसने सोचा कि ब्राह्मण उसे पहचान गया है और मिल गया चिल्ला रहा है। डाकू डर गया कि ब्राह्मण तो सबको बुला लेगा तो मेरी हो जाएगी पिटाई। तो उसने तुरंत ब्राह्मण जी के पैर छुए और कहा, भाई अपने जो मुद्राएं हैं वो वापस ले लो, पर मुझे लोगों से मत पिटवाओ, लो रखो। अर्जुन ये सब देखकर हैरान हो गए। उन्होंने कृष्ण से पूछा, माधव ये चमत्कार कैसे हुआ? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन जब तुमने उसे धन दिया तब वो केवल अपने और अपने परिवार के सुख के बारे में सोच रहा था, लेकिन जब मैंने उसे दो पैसे दिए तो उसने उस थोड़े से पैसे में भी दूसरे के दुख को दूर करने का सोचा। जब आप दूसरों का भला सोचते हैं तो ईश्वर स्वयं आपका भला करता है। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है और कृष्ण जी भी हमें यही सिखाना चाहते हैं कि अपने बारे में सोचना बुरा नहीं है, लेकिन अपने साथ साथ अगर आप दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचेंगे, उनका भी भला करेंगे, तो आपकी जिंदगी में आपकी तरक्की, आपकी खुशी, आपकी चाहत, आपकी उम्मीदों को कोई रोक नहीं सकता और आप आगे बढ़ते जाएंगे।

तो दोस्तों मुझे लगता है इस कहानी को सुनने के बाद आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ चेंजेस तो ज़रूर आएंगे। अब आप अपनों से ज़्यादा मतलब अपने से ज़्यादा अपनों के बारे में ज़रूर सोचेंगे। और ज़िंदगी में अक्सर यही तो होता है कि हम यही सोचते हैं कि हमें क्या मिला और क्या नहीं मिला, बस हम उसी के बारे में जोड़ घटाना करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी जब हम अपनी हथेली दूसरों की मदद के लिए फैलाते हैं तो ऊपर वाला हमारी झोली खुशियों से भर देता है, और जिसने इस बात को समझ लिया उसकी ज़िंदगी में खुशियों को आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर आप अपने दिल को भी खुश कर सकते हैं। करके देखिएगा ज़रूर।

0: दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन इस कहानी के ज़रिए बहुत कुछ सीखने का जो मुझे भी मौका मिला और मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में भी बदलाव आएंगे, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। क्योंकि परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके दिल में भी दूसरों के लिए दया की भावना और आप दूसरों के लिए अच्छा सोचने की भावना ले आते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। और कहते हैं कि कान्हा जी से अच्छा गुरु तो कोई हो नहीं सकता। सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर ही वही कहलाए थे, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था जो आज तक हम सब के काम आ रहा है। तो उनकी छोटी छोटी कहानियों में भी काफ़ी सारा ज्ञान होता है जो हमारी ज़िंदगी को आसान बना सकता है, अगर हम उस कहानियों को दिल से सुने, और सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि समझें और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करें। फिलहाल चलते हैं। और कहते हैं कि कृष्णा जी राधे के बिना हमेशा अधूरे रहते हैं, और उनका नाम लिए बिना कृष्ण जी का नाम अधूरा सा फील होता है। तो हम भी चलते चलते राधे जी के साथ कृष्ण जी को करते हैं याद और आपसे लेते हैं विदा इस कार्यक्रम से, की तो भरी गुड मॉर्निंग से। अपनी दोस्त आरती को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: कुल की राधा चली, ओ चली, ओ चली। कुल की राधा चली, ओ चली, चली, चली। कुल की राधा।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने तथा उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेबर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
3: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। यह यात्रा भारत और बेल्जियम के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की निरंतर गति को दर्शाती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being

0: hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi or Instagram per AIR News Alerts ko follow karein.
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत के विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। ये रेटिंग किसी देश की सरकार के ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। एक रिपोर्ट।
5: मंत्रालय ने कहा कि यह उन्नयन चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में हुआ है और निरंतर विकास प्रभावी आर्थिक नीतियों बेहतर राजकोषीय प्रबंधन तथा मजबूत वित्तीय प्रणाली द्वारा समर्थित भारत के आर्थिक बुनियादी ढांचे का परिचायक है। JCR ने एक बयान में कहा कि मजबूत निजी उपभोग और सार्वजनिक निवेश से समर्थित भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्च विकास दर बनाई रखी है। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि केंद्रीय राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 में 4.07% से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4.04% पर आ गया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नेहा गोस्वामी।
4: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने पर मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। एक रिपोर्ट।
6: दिशा सालियान मामले में न्यायमूर्ति सारंगवी कोतवाल और न्यायमूर्ति रंजीत सिन्हा आर भोसले की खंडपीठ ने कल CBI को दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश किसी के खिलाफ दोष सिद्ध करने का संकेत नहीं है। पीठ ने कहा किसी व्यक्ति को तब तक आरोपी नहीं माना जाएगा जब तक जांच अधिकारी की राय में उनके खिलाफ उचित संदेह पैदा करने के पर्याप्त आधार न हो। प्रार्थना आकाशवाणी समाचार मुंबई।
4: उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्यभर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा ये दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। ग्रुप बी के मैच में कल रात दुबई में प्रतियोगिता में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रन से मात दी और पहली ICC वीमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी

0: की अगर बात करें तो ये प्रतियोगिता अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसका कारण श्रीलंका को मेजबानी से हटाया जाना है। आईसीसी ने कहा कि 6 टीमों का ये टूर्नामेंट अब भारत में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाली 6 टीमों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी। 28 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके अलावा भारत पहली बार अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 5 से 9 सितंबर तक ह्युंडई विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला की मेजबानी करेगा। इसमें 20 देशों के 100 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन 4 सितंबर को होगा।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, विदर्भ और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। उधर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में तेज बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है।
2: भोपाल, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मंडला में मंगलवार शाम से शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह तक रुक रुक कर जारी रही। इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। सतना में भारी बारिश से बाढ़ और जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। प्रशासन ने 434 प्रभावित आवासों के लिए 18,01,000 रुपए की सहायता दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के बालासोर जिले में सुवर्ण रेखा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजघाट में भी नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है।
3: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि बालेश्वर के राजघाट में सुवर्णरेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर 10.36 मीटर के खतरे के निशान के मुकाबले लगभग 11.5 मीटर तक पहुंच गया है। झारखंड के गालुडीह बैरेज से छोड़े गए पानी ने नदी के बहाव को और बढ़ा दिया है। भोगराई, बालियापाल और जलेश्वर ब्लॉक के कई गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य जारी रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
5: धन्यवाद कनक। एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का सीईओ बनाए जाने की खबर आज के ज्यादातर अखबारों की पहली सुर्खी है। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, राम मंदिर के लिए वायुसेना के पूर्व अफसर पर ट्रस्ट। दैनिक जागरण लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर के वायुवीर बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले ट्रस्टी, गोविंद देवगिरी बने महासचिव। अमर उजाला की टिप्पणी है, सिंदूर के सेनानी को रामलला की कमान। राजस्थान पत्रिका ने अखिल भारतीय सर्वेक्षण के हवाले से बताया है, उच्च शिक्षा में बेटियों की उड़ान, दाखिलों में लड़कों को पछाड़ा। साथ ही पत्र ने यह भी लिखा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अब भी लड़कों को बढ़त। नेपाल त्रासदी में राहत और बचाव कार्यों में भारत द्वारा की गई भरपूर मदद पर नेपाल के प्रधानमंत्री का आभार, लोकसत्य के पहले पन्ने पर है। नेपाल के पीएम बोले, भारत का धन्यवाद। अमेरिका में पासपोर्ट नियमों में बदलाव की तैयारी, दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, इसका उद्देश्य अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता पर प्रतिबंध लगाना है। हिंदुस्तान ने राजधानी दिल्ली में एसआईआर के दौरान की गई मैपिंग पर लिखा है, 45% लोग ही दे पाए अपना पुराना ब्यौरा, नाम जुड़वाने के लिए घोषणा पत्र जरूरी। जनसत्ता ने लुप्तप्राय सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए दक्कन में 16 अहम क्षेत्रों की पहचान किए जाने का समाचार प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से देते हुए लिखा है, सोन चिड़िया की संख्या अब केवल 100-150 ही बची है। ये पक्षी कभी पूरे भारत और दक्षिण पाकिस्तान में पाया जाता था। दैनिक भास्कर की ये पंक्तियां ध्यान खींचती हैं, डिजिटल दौर में दोस्ती का संकट, मैसेज तो होते हैं मुलाकात नहीं। एनसीईआरटी द्वारा 6ठी और 9वीं की सभी भारतीय भाषाओं की नई पुस्तकों के नाम देश की नदियों के नाम पर रखे जाने पर दैनिक जागरण लिखता है, देश की नई पीढ़ी को भारतीय भाषाओं से जोड़ने की पहल में छात्र सिर्फ भाषा नहीं सीखेंगे बल्कि देश की नदियों के नाम से भी रूबरू होंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पानी की बचत करने वाली टेक्नोलॉजीज को ज्यादा से ज्यादा अपनाने और आलमी सतह पर अपनाए जाने वाले बेहतरीन तरीकाकार से सीखने पर जोर दिया। वजीर आजम मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के अपने हममनसब बार्ट दे वेवर के साथ बातचीत करेंगे। इसरो कल श्रीहरिकोटा से अर्जियाती मुशाहिदाती सैटेलाइट EOS-05 खला में भेजेगा। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर A- कर दिया है और इसके लिए मुस्तहकम आउटलुक बरकरार रखा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आजहानी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की साबिक मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI तहकीकात का हुक्म दिया है। और खवातीन क्रिकेट में भारत आज शाम दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में हांगकांग का सामना करेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आबादी में इजाफे और मुस्तकबिल में पानी की जरूरियात समेत शहरकारी से पैदा होने वाले चैलेंजेस के बारे में शहरी मकामी बल्दियाती इदारों को हसास और बाखबर बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने शहरी मकामी बल्दियाती इदारों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर मुनक्किद करने की तजवीज़ दी। जनाब मोदी ने कल जल शक्ति की वजारत के जेर एहतमाम पानी के मौजू पर मुनक्किदा दो रोज़ा कौमी महकमा जाती इजलास के इख्तितामी सेशन की सदारत की। उन्होंने पानी की बचत करने वाली टेक्नोलॉजीज को ज्यादा से ज्यादा अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने आलमी सतह पर अपनाए जाने वाले बेहतरीन तौर तरीकों से आगाही फराहम करने के लिए खसूसी नुमाइशों और वर्कशॉप्स के इनेकाद की भी तजवीज़ पेश की ताकि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स और शराकतदार पानी के मुअसर इस्तेमाल के लिए बेहतर हल तैयार करके उन्हें बड़े पैमाने पर नाफिज कर सकें। तफसील हमारे नामानिकार से।
1: वजीर आजम मोदी ने जोर दिया कि इजलास से सामने आने वाले काबिल अमल और मुकर्रा वक्त के अंदर मुकम्मल किए जाने वाले निकात पर मुसलसल जायजे और सीखने के अमल के जरिए अमल दरामद किया जाना चाहिए। दो रोजा तफसीली बातचीत की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इजलास सिर्फ एक मरतबा की सरगर्मी बनकर ना रह जाए बल्कि इसके फैसलों और इकदामात का मुसलसल जायजा लिया जाना चाहिए और इन पर बाकायदगी से अमल दरामद की पेशरफ्त का भी जायजा लिया जाना चाहिए। जन भागीदारी की अहमियत पर जोर देते हुए वजीर आजम ने लोगों में पानी के बारे में ज्यादा से ज्यादा बेदारी पैदा करने के लिए जल उत्सव को फरोग देने की तजवीज दी। डैमों की हिफाजत के बारे में जनाब मोदी ने हर मानसून से पहले सख्त तैयारी, मुकर्रा एहतियाती तदाबीर पर अमल और स्कूल के तलबा में बेदारी पैदा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस मकसद को मुनासिब तौर पर तालीमी निजाम में भी शामिल किया जाना चाहिए। जनाब मोदी ने मजबूत आबी डेटा गवर्नेंस पर भी जोर दिया जिसके तहत आबी शोबे से मुतालिक तमाम आदाद शुमार को एक जगह जमा किया जाए, मुनज्जम तरीके से महफूज किया जाए, उनका तजिया किया जाए और मुअस्सर तौर पर इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने यकसां फॉर्मेट के जरिए डेटा जमा करने और इसके तजिये के लिए AI के इस्तेमाल की सिफारिश की। उन्होंने पानी की किल्लत से निपटने के लिए पेशगी और मरबूत मनसूबाबंदी पर भी जोर दिया जिसके तहत साफ किए गए पानी को ज़राअत और सनअती मकासद की खातिर मुनासिब तौर पर इस्तेमाल किया जाए। नई दिल्ली से विष्णु की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के वजीर आजम बार्ट दे वेवर आज नई दिल्ली में दो तरफा बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं के अलावा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादलाए ख्याल करेंगे। बेल्जियम के वजीर आजम कल रात भारत के 3 रोजा दौरे पर राजधानी नई दिल्ली पहुंचे। वजीर आजम दे वेवर के हमरा बेल्जियम के वजीर दिफा थियो फ्रेंकिन भी हैं। पिछले साल फरवरी में वजीर आजम का ओहदा संभालने के बाद ये उनका भारत का पहला दौरा है। मुअज्जज मेहमान कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के एक कारोबारी प्रोग्राम से भी कलीती खिताब करेंगे। ये प्रोग्राम भारत यूरोप यूनियन आजाद तजारती मुआहिदे के तनाजुर में मुनक्किद किया जा रहा है। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि उनका ये दौरा भारत और

0: बेल्जियम की शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने और तजारत व सरमायाकारी, दिफा व सलामती और काबिल तशदीद तवानाई समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में तआवुन को वसअत देने का मौका फराहम करेगा। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: भारत और बेल्जियम के दरमियान 3 सदियों पर मुहित तारीखी ताल्लुकात हैं। बेल्जियम उन अव्वलीन यूरोपीय मुल्कों में शामिल है जिसने सितंबर 1947 में आज़ाद भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम किए। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक अहम इक्तिसादी शराकत दार है। 2025-26 में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा तजारत 13 अरब डॉलर से तजावज कर गई। हीरों की तजारत दोनों ममालिक की बाहमी तजारत का एक अहम हिस्सा है। बेल्जियम भारत में सरमायाकारी का भी एक अहम जरिया है। अप्रैल 2000 से दिसंबर 2025 के दरमियान बेल्जियम से भारत में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी FDI तकरीबन 4.2 अरब डॉलर रही। साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तरा में ताउन दोनों ममालिक की शराकत दारी का एक अहम सतून है। भारत और बेल्जियम ने काबिल तजदीद तवानाई, माहौलियात के लिए साजगार टेक्नोलॉजी और पायदारी के शोबों में ताउन को फरोग दिया है। दिफाही ताउन भी दोनों मुल्कों की शराकत दारी का एक अहम पहलू बनकर उभर रहा है जो दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक और सलामती से मुतालिक शोबों तक उसत देने की अक्कासी करता है। भारत नजाद अफराद दोनों मुल्कों के दरमियान एक अहम वसीले की हैसियत रखते हैं। बेल्जियम में तकरीबन 35,000 भारत नजाद अफराद मुकीम हैं जो इस मुल्क की इक्तिसादी, समाजी और सकाफती जिंदगी में नुमाया रोल अदा कर रहे हैं। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्बार।
0: इसरो के चेयरपर्सन वी नारायणन ने कहा है कि जमीन का मुशाहिदा करने वाले सैटेलाइट EOS-05 को कल खला में रवाना किया जाएगा। ये सैटेलाइट GSLV-F17 रॉकेट के जरिए कल रात 2:55 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से लॉन्च किया जाएगा। जनाब नारायणन ने कहा कि EOS-05 एक जदीद तरीन अर्थ ऑब्जर्वेशन खलाई जहाज है और ये भारत का पहला इमेजिंग सैटेलाइट है जिसे जियो सिंक्रोनस मदार में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मिशन से भारत के जमीन से मुतालिक मुशाहिदे की सलाहियतों में मजीद इजाफा होगा और अर्थ ऑब्जर्वेशन खिदमात की फराहमी बेहतर होगी। इसरो के चेयरपर्सन ने यह बात कल तिरुमला में वाक़े श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कही। इससे पहले जनाब नारायणन ने GSLV-F17 रॉकेट के मॉडल को भगवान वेंकटेश्वर के कदमों में रखा। उन्होंने कहा कि श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से लॉन्च के सिलसिले में तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जापान की कर्जे की दर्जाबंदी करने से मुतालिक एजेंसी JCR ने भारत की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी और मकामी करेंसी जारी करने से मुतालिक दर्जाबंदी को एक दर्जा बढ़ाकर BBA+ से A- कर दिया है। JCR ने भारत की कंट्री सीलिंग को भी एक दर्जा बढ़ाकर ए कर दिया है। वजारत खजाना ने कहा कि दर्जाबंदी बढ़ाए जाने से भारत की मजबूत मुआशी तरक्की की बुनियाद को मजबूत करने से मुतालिक मुआशी पॉलिसियों की इफादियत और मुआशी निज़ाम की बेहतर हालत की अक्कासी होती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वजारत खजाना ने कहा है कि दर्जाबंदी से मुतालिक ये इजाफा चैलेंजिंग आलमी सूरतेहाल के तनाजुर में पेश आया है और इससे पायदार तरक्की, मोसर मुआशी पॉलिसियों, बेहतर मुआशी मेयार और एक मजबूत तर मुआशी निज़ाम के जरिए भारत की मुसलसल मजबूत होती मुआशी बुनियाद की अक्कासी होती है। एक बयान में JCR ने कहा कि भारतीय मईशत ने बढ़ती निजी खपत और अवामी सरमायाकारी के जरिए ऊंची शरह तरक्की को कायम रखा है। एजेंसी ने यह भी उजागर किया कि भारतीय हुकूमत ने डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचा और अशिया और खिदमत टैक्स के नफाज समेत मुसलसल पॉलिसियां नाफिज की हैं जिनसे भारत की मुआशी बुनियाद मजबूत हुई है। JCR ने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत का मुआशी खसारा मुआशी साल 2025 में 4.7% से कम होकर मुआशी साल 2026 में 4.4% रहा। आकाशवाणी न्यूज से जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आजहानी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की साबिक मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच के लिए CBI तहकीकात का हुक्म दिया है। दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मुजाफाती इलाके में एक रिहायशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद हो गई थी। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: दिशा सालियान मौत के मामले में जस्टिस सारंग वी कोतवाल और जस्टिस रंजीत सिन्हा आर भोंसले पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने कल उनके वालिद ستیش سالیان کی طرف سے داخل کردہ شکایت کی بنیاد پر سی بی آئی کو FIR درج کرنے کی ہدایت دی۔ عدالت نے مزید واضح کیا کہ FIR

0: दर्ज करने की हिदायत का मतलब ये नहीं है कि किसी के खिलाफ जुर्म साबित हो गया है। बेंच ने कहा कि किसी भी शख्स को उस वक्त तक मुलजिम नहीं समझा जाएगा जब तक तफ्तीशी अफसर की राय में तफ्तीश के दौरान जमा किए गए शवाहिद की बुनियाद पर उस शख्स के खिलाफ माकूल शुबा पैदा करने के लिए काफी वजूहात मौजूद न हों। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: उत्तर प्रदेश में आज से इस माह की 17 तारीख तक सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एक खसूसी HPV टीकाकारी मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। ये मुहिम रियासत के तमाम 75 अजला में मुनाकिद की जाएगी। 14 साल की उम्र के ग्रुप में शामिल तकरीबन 10 लाख अहल नौ उम्र लड़कियों को इस मुहिम के तहत HPV वैक्सीन लगाने का निशाना रखा गया है। लखनऊ के आला मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर NB सिंह ने अहल लड़कियों और उनके वालिदैन से अपील की है कि वो आगे आएं और मुहिम के दौरान वैक्सीन लगवाएं। HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एक अहम हिफाजती इकदाम है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद बढ़कर 1,250 हो गई है। इमदादी कारकुन बारिश और मलबे का मुकाबला करते हुए उन अफराद को तलाश कर रहे हैं जिनके बारे में ख्याल है कि वो भोटेकोशी दरिया के रास्ते में मौजूद सुरंगों और नेपाल में जेर जमीन बिजली घरों में फंसे हुए हैं। वजीर आजम बालेंद्र शाह ने कहा कि आलमी बिरादरी के सामने इस कुदरती आफत के आबो हवा की तब्दीली के ताल्लुक को भरपूर अंदाज में उठाया जाना चाहिए। इस दौरान पिछले हफ्ते आने वाले सैलाब के बाद लापता मकामी अफराद के अहले खाना ने अलामती तौर पर उनकी आखिरी रसूम अदा की। लापता अफराद में 583 गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं। सिक्योरिटी एहलकारों जिनमें नेपाल की फौज भी शामिल है की मुश्तरका फोर्सेज ने अब तक हेलीकॉप्टरों और जमीनी रास्तों के जरिए 11,993 अफराद को बचाया है। तलाश और बचाव कार्रवाइयों के लिए तकरीबन 21,314 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। दूसरी जानब चीन की जानब नेपाल की सरहद के करीब तिब्बत के गिरोंग काउंटी में आने वाले सैलाब से हलाकतों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है जबकि 541 अफराद अब भी लापता हैं। शिमाली ओडिशा में सैलाब का नया खतरा पैदा हो गया है क्योंकि बालासोर जिले में सुबर्णरेखा नदी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। राजघाट के मकाम पर दरिया का पानी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रहा है। झारखंड में वाके गलुडीह बैराज से पानी छोड़े जाने के बायस नदी के निचले हिस्से में पानी का बहाव मजीद बढ़ गया है। महकमाई मौसमियात ने मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। बाज अजला में मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। आज मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का इम्कान है। जबलपुर रीवा शहडोल और सागर में बारिश हो सकती है। भोपाल ग्वालियर चंबल और नर्मदापुरम डिवीजन के बाज इलाकों में भी बारिश की पेशगोई की गई है। इसके अलावा मंडला में मुसलसल बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। खवातीन के क्रिकेट में आज UAE में दुबई बैनुल अख्वामी स्टेडियम में 2020 एशिया कप में भारतीय टीम ग्रुप ए के दूसरे मैच में हांगकांग का सामना करेगी। मस्कूरा मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। इतवार के रोज खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने थाईलैंड के खिलाफ 94 रन की बड़ी जीत से अपनी मुहिम का आगाज किया था। अगर भारतीय टीम हांगकांग के खिलाफ आज मैच में जीत हासिल करती है तो वो 8 टीमों पर मुश्तमिल मौजूदा टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में पहुंच जाएगी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
2: शुक्रिया नीतिका। दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में सेशल्स के पार्लियामानी वफद के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बातचीत को नुमाया किया है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और सेशल्स के ताल्लुकात सिफारतकारी की रवायती सरहदों से बालातर हैं और दोनों ममालिक के दरमियान सदियों पुराने तहजीबी रिश्ते हैं। इसी अखबार की एक और अहम खबर है, इको टूरिज्म के मौके पर मुनक़िदा इफ्तिताही वर्कशॉप से खिताब करते हुए मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि शेरों के तहफ्फुज़ को मुकामी बिरादरियों के रोजगार और पायदार समाजी इक्तसादी तरक्की से जोड़ा जाना चाहिए। ब्रिक्स इजलास के हवाले से रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, ब्रिक्स इजलास की तैयारियां तेज, दिल्ली में कारों के काफिले की रिहर्सल, ये इजलास भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर को होगा।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पानी की बचत करने वाली टेक्नोलॉजीज को ज्यादा से ज्यादा अपनाने और आलमी सतह पर अपनाए जाने वाले बेहतरीन तरीकाकार से सीखने पर जोर दिया। वजीर आजम मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के अपने हमनसब बार्ट दे वेवर के साथ बातचीत करेंगे। इसरो कल श्रीहरिकोटा से अर्जियाती मुशाहिदाती सैटेलाइट EOS-05 खला में भेजेगा। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर A- कर दिया है और इसके लिए मुस्तहकम आउटलुक बरकरार।

0: रखा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आजहानी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की साबिक मैनेजर दिशा सालियान की मौत की सीबीआई तहकीकात का हुक्म दिया है। और खवातीन क्रिकेट में भारत आज शाम दुबई में टी20 एशिया कप के ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में हांगकांग का सामना करेगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। शोडाउन स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 8:45 और पूरी 10 सेकंड। और आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम स्वर गंगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप आनंद लेंगे मनोज कुमार शर्मा द्वारा बजाए संतूर वादन का, राग रहेगा तोड़ी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर गंगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आपने सुना मनोज कुमार शर्मा द्वारा संतूर वादन राग था तोड़ी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम उद्योग पत्रिका।

0: पत्रिका।
1: नमस्कार, उद्योग पत्रिका में आप सबका स्वागत है। कृत्रिम बुद्धिमता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो समस्याओं को हल करने, पैटर्न पहचानने और फैसले लेने के लिए इंसानी बुद्धिमता की नकल करता है। पहले से तय और सख्त नियमों का पालन करने के बजाय AI सिस्टम बहुत सारे डेटा से सीखते हैं और समय के साथ अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैसले लेने की क्षमता को बेहतर बनाकर, कामकाज को आसान बनाकर और अकेले या छोटे बिजनेस को बड़ा करके एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता के विकास को बढ़ावा देता है। ये बाजार में उतरने की पारंपरिक रुकावटों को कम करता है, जिससे छोटी टीमें भी वैसे ही ग्रोथ और क्षमता हासिल कर पाती है जो पहले सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए मुमकिन थी। स्टार्टअप, नवाचार और एंटरप्रेन्योरशिप के विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता समन्वय, इसके बारे में जानने के लिए सुनते हैं नागेंद्र रॉय और दिलीप झा की ये बातचीत।
2: जैसा कि हमारे सुनने वाले जानते हैं कि हम अपने इस पत्रिका कार्यक्रम में प्रत्येक सप्ताह उन तक नई नई बातें, नई नई जानकारियां नए नए विशेषज्ञों द्वारा पहुंचाते रहते हैं, जिसका उद्देश्य होता है कि वे उन जानकारियों से लाभान्वित हों और अपने आसपास के लोगों को भी उसका लाभ दें। आज हम जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं वो हमारी पत्रिका का बहुत ही रिलीवेंट विषय है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहां पिछले 10 साल से स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप पे काफी ध्यान दिया गया है, के सकारात्मक परिणाम भी दिख रहे हैं और हमारे देश में बहुत सारे स्टार्टअप विकसित हुए हैं। हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में जो उपस्थित विशेषज्ञ हैं वे बैंकिंग, फिनटेक, सरकारी संस्थानों, शिक्षा और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं इसमें इनका एक विस्तृत अनुभव है, नेतृत्व का भी अनुभव रहा है और उन्होंने अपने नेतृत्व से डिजिटल परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या भविष्य की जो तकनीक है किस तरह से उसका लाभ उठाया है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अन्य लोग कैसे उठा सकते हैं, उनके क्या सुझाव होंगे, इन सब बातों पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं नागेंद्र राय जी। नागेंद्र राय जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
3: नमस्कार, धन्यवाद।
2: सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आप आफ्टर एजुकेशन जो एक प्रोफेशन में आए और अब आप एक एंटरप्रेन्योर हैं अमेरिका में, तो ये परिवर्तन आपने कैसे किया, ये विचार इस यात्रा के लिए कैसे आया आपके मन में?
3: बहुत सेंसिटिव प्रश्न है लेकिन इसका जवाब देने की जिम्मेदारी बनती है मेरी। मैंने जब हमारी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा मैंने उदयपुर में ली और कॉलेज भी वहीं से पढ़ाई की है। जब हम वहाँ पढ़ रहे थे तो उस समय इंटरनेट की उपलब्धता नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब हम IT फील्ड में आए तो हमारे को उसकी एक्सप्लोरेशन भी करना पड़ा, उसमें जाना भी पड़ा, समझना भी पड़ा, वो सब हमने काम किया। लेकिन तब तक हमारे दिमाग में ये भी बात नहीं थी कि हम ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर बनेंगे या स्टार्टअप खोलेंगे। लेकिन जब इस दौरान हमने कई संस्थाओं में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम किया, बड़े बड़े इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम किया, तो इंस्पिरेशन आया कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं जो कि दुनिया में वैल्यूएबल होगा, जिससे हम कुछ इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकेंगे। वो दिमाग में रखते हुए एक कंपनी की स्थापना की हमने 2019 में, और उसी वर्ष कोविड भी आ गए थे, कोरोना काल चालू हो गया था। लेकिन हमारे जो सहकार्यकर्ता हैं, ऑफिस में जो काम करते हैं, जो पार्टनर्स हैं, उन सब ने मिलके उस पे विचार किया, उसको इस तरीके से चलाया कि हम हार ना माने और आगे बढ़ते रहें। तो एक जो सजेशंस या रिकमेंडेशन जो होगी कि एंटरप्रेन्योर्स शुरू के 3 साल तक अगर उनको कोई सफलता नहीं मिल जाती है तो वो हार मान लेते हैं। नेवर गिव अप वाला माइंडसेट हमेशा होना चाहिए किसी भी स्टार्टअप को जो रखते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल चैलेंज हो सकते हैं, बिजनेस चैलेंज हो सकते हैं, एक्सटर्नल जो आपके फैक्टर्स हैं, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वॉर सिचुएशंस हो, उनमें ये चैलेंजेस आते हैं। लेकिन उनसे ऊपर निकलना और आगे बढ़ना वही एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर की जिम्मेदारी भी होती है और स्किल भी होती है।
2: बहुत अच्छा, आपने एक स्किल की चर्चा की। स्किल डेवलपमेंट जो है हमारे देश का एक बहुत बड़ा मिशन है, भारत सरकार का। माननीय प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं युवाओं को जब भी संबोधित करते हैं कि आप रोजगार ढूंढने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बनिए। निश्चित रूप से वो तभी हो सकता है जब लोग अपना एक कंपनी चलाए, अपना स्टार्टअप शुरू करें। इसके लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय जो हैं कई तरह के आर्थिक सहयोग भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। आजकल जो है विश्वविद्यालयों में भी इसकी सुविधा दी गई है कि पढ़ते हुए वो किस तरह से एक बिजनेस मैनेजमेंट की ओर जाए, तभी जो है हमारा विकसित भारत का जो स्वप्न है 2047 का वो पूरा होगा जब आर्थिक रूप से ये समृद्ध होगा। आपने बताया कि आप किस तरह से कंपनी फाउंडर के रूप में आगे आए, तो आपकी जो कंपनी है क्या है और ये अन्य तरह की कई सारी कंपनियां कार्य करती हैं, चाहे कंसल्टिंग हो या किसी और क्षेत्र में, तो ये किस तरह अन्य से अलग है?
3: ग्लोबल विजन को

0: लेकर हम 2019 में चालू हुए थे और आज चार देशों में अपना काम कर रहे हैं। जिस समय हमने कंपनी की स्थापना की उस समय थोड़ा ग्लोबल अनस्टेबिलिटी थी बिकॉज ऑफ कोरोना एंड ऑल, लेकिन नेवर गिव अप, जो हम कभी हार नहीं मानेंगे, वो मानसिकता हमने रखी। दूसरा, हमने शुरू से एक पार्टनर, जो कोलैबोरेशन वाली जो मानसिकता होती है, जो बड़ी कंपनियों के साथ जुड़ के या जो पहले से मार्केट में जो काम कर रहे हैं उनके साथ बात करके अपना वैल्यू कहाँ हम दिखा सकते हैं, कैसे वो जो काम जो दूसरे नहीं कर पा रहे हैं वो हम कर सकें और क्वालिटी के साथ कर सकें, वो एक सक्सेस मंत्र आप बोल सकते हैं कि हम उस मानसिकता को लेकर आगे चले और हमने अपनी निरंतरता को बनाए रखा, प्रयासों में कभी कमी नहीं की और सही टैलेंट है उसको हमने अवसर दिया। और जैसा मोदी जी ने भी कहा है कि इंडिया इज अ टैलेंट फैक्ट्री, तो उस टैलेंट फैक्ट्री को समझना और उसको अपने परिवेश में लेके आना और काम करना, वो एक चीज है जो हम सबको समझनी चाहिए, जो धीरे धीरे आती है, समय पर ही आती है।
1: निश्चित रूप से, और ये जो टैलेंट फैक्ट्री है वो निश्चित रूप से इसीलिए कहा गया होगा कि आप जैसे टैलेंटेड लोगों ने इस देश से बाहर जाके वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और हम कह सकते हैं कि आप एक वैश्विक बिजनेस और टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में आपने स्थापित किया है अपनी मेहनत से। एक हम इसमें ये जानना चाहेंगे, आप अपनी कंपनी के संस्थापक CEO हैं, तो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट होते हैं बिजनेस के लिए, प्रोजेक्ट होता है, फिर उस प्रोजेक्ट को मैनेज करना पड़ता है, फिर उसके लिए जो ऑफिस होता है प्राय वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का होता है
0: जी।
1: लेकिन उससे आगे फील्ड पे जाकर इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर जाए, ग्राउंड टू वर्क काम करे, इसको लेके आप किस तरह की अपनी नीति बनाते हैं या किस तरह की नीति बनानी चाहिए?
0: मेरा जो मुख्य रोल है मेरी कंपनी में वो वही है। मैं किसी भी प्रोजेक्ट को अगर चालू करूं या मैं किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करूं हमारे क्लाइंट के लिए, तो उसका जो प्रभाव है वो एक एक उसका जो यूजर है, जो उसको प्रयोग में लेके आएगा उस प्रोजेक्ट का या उस प्रोडक्ट का, उसके पास क्या इम्पैक्ट जा रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। अगर हम हमारी गणित वहां से चालू करेंगे और उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके समझेंगे तो हम उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना सकते हैं। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बनाने की डेफिनेशन प्रोजेक्ट को खत्म करना नहीं है, उस प्रोजेक्ट के प्रभाव कहाँ कहाँ पहुंचा और वो किस रूप में पहुंचा, अगर उसका मेजरमेंट हम कर पाए तो फिर हम उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल मान सकते हैं। हमारे टर्म में बोलते हैं KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स,
1: PMO यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस
0: जी,
1: उसका किस तरह से सक्रिय रोल होना चाहिए और हो रहा है ये आपने बताया। आजकल तकनीक बदल रही है, खास करके हर जगह कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। भारत सरकार ने भी इनोवेशन पे ज्यादा फोकस किया है, तकनीक और नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन, ये सारी चीजें किस तरह से एक प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट को या उसकी इम्प्लीमेंटेशन को प्रभावित कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं?
0: बिल्कुल, हेल्प भी कर रहे हैं और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी बढ़ा रहे हैं, उसकी स्पीड को भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमें उसी समय में एक बात और ध्यान रखना है कि ये उस चीज का नेगेटिव इफेक्ट भी आपके प्रोजेक्ट पे आ सकता है, वो आपके टैलेंट पे भी आ सकता है। जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको कोई भय तो नहीं है कि भाई नवाचार हो जाएगा या कुछ इनोवेशन हो गया, कुछ टेक्नोलॉजी आ गई तो हमारी जॉब खतरे में आ जाएगी या हमारा काम कोई और करने लग जाएगा, ये भय निकालना पड़ेगा। बनिस्पत इसके हमारे को क्या करना चाहिए कि हमको सीखना चाहिए, अगर हम उस चीज को सीख लेंगे तो हम उसके एक्सपर्ट बन जाएंगे और हमारी रिलीवेंस बढ़ जाएगी। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर हम इनोवेशन और एक्सीलेंस लेके आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, तो ये बहुत ही अच्छी बात है पूरे कम्युनिटी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि वहीं से इनोवेशन का प्रादुर्भाव होगा।
1: उद्यमिता को बढ़ाने के लिए या युवाओं को और से और अधिक अवसर मिलने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे और आपको क्या लगता है भविष्य की और तकनीक क्या आ सकती है इस क्षेत्र में मदद करने के लिए?
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा एक काल चालू हुआ है, ये काफी समय से चल रहा है। 2017 में मैंने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर इसको डेमो किया था कि इसको हम कैसे यूज में लेके आ सकते हैं, लेकिन जहां तक इसका प्रभाव है या आगे की इसकी जो नई टेक्नोलॉजी आ सकती है वो बहुत ही विस्तृत है। इसका स्वरूप बहुत विशाल है, विराट है और वो पूरे विश्व में एक समान रूप से बढ़ रहा है और जहां टैलेंट है वहां पे ये बहुत त्वरित गति से बढ़ रहा है, क्योंकि उसको यूज करने वाला ज्यादा है, उनको प्रयोग में लाने वाले ज्यादा हैं। तो उस सारी डायनेमिक्स को समझने के लिए या समझते हुए हमें अपने आप को उससे एक्वेंटेड करना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम में इसको डालना पड़ेगा कि ये एक कोई ऑप्शनल विषय नहीं रह गया है, ये हमारे को छोटी कक्षाओं से लेके मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेजेस सब में इसको पढ़ाना पड़ेगा, जो आज चालू हो गया है। अभी मैं IIM में भी पढ़ा के आया ये बात और सारी जो इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें इस तरीके के कोर्सेज प्रारंभ कर दिए गए हैं।
1: आपके अनुभव से जानना चाहेंगे कि आपकी सफलता है, बहुत सारी चीजें जो है वो शुरू

0: शुरुआती दौर के बाद आगे नहीं बढ़ पाती है। आपको क्या लगता है कि असफलता को किस तरह से सफलता में बदला जा सकता है? उस असफलता के कारण क्या है? क्या आर्थिक कारण होते हैं, तकनीकी कारण होते हैं, या व्यक्ति जिसने शुरू किया है संस्था ने उसमें विल की कमी हो जाती है?
1: जब मैंने अपना करियर चालू किया था तब से ही एक बात सीखी थी, वो मैं बार बार बोलता भी हूँ और उसको अपने जीवन में उतारा भी है। वो ये है, इंग्लिश में उसका कोटेशन है कि यू डोंट वांट टू डू डिफरेंट थिंग्स, यू वांट टू डू द थिंग्स डिफरेंटली। नए नए तरीके के कार्य करने की जरूरत भी नहीं होती, हमें उसी कार्य को नए तरीके से करने की आवश्यकता है। अगर किसी को सफलता नहीं मिली है तो धैर्य की परम आवश्यकता रहती है, और जो हम काम नहीं मिल रहे हैं उस असफलता के पीछे कारण क्या है, अगर उनको हम जान पाएंगे तो फिर हम उसके हिसाब से अपना प्लानिंग भी कर सकते हैं और उसको हम असफलता को सफलता की ओर मोड़ सकते हैं। और उसके लिए एक प्रमुख, और जो अभी गुरु पूर्णिमा थी 2 दिवस पहले, तो विश्व में उसकी बहुत महत्ता है। मेरे जीवन में प्रमुख रूप से मैं बहुत मानता हूँ कि हमारे जीवन में जो गुरु होते हैं वो मार्गदर्शन करते हैं, और वो गुरु आपको किसी भी रूप में मिल सकते हैं और कहीं भी मिल सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि आप गुरु बनाओगे तभी वो गुरु बनेंगे, आपके लिए मेंटर कोई भी हो सकता है, और मेंटर होना अच्छी बात है। और अलग अलग क्षेत्रों में आपके एक साथ 10 मेंटर भी हो सकते हैं जिनके पास आप जाके बात करो। तो मेंटरशिप मिलेगी, आपका माइंडसेट चलेगा, आपके अंदर धैर्य उत्पन्न होगा, आप अपने कार्य में बदलाव लाएंगे, तो असफलता को सफलता में लाया जा सकता है।
0: किसी संगठन के लिए आगे बढ़ने के लिए कुछ नीतियों के सहयोग की या सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, गवर्नेंस की जिसको हम बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है नवाचार के साथ कंपनियों के विस्तार के लिए गुड गवर्नेंस कितना महत्वपूर्ण होता है, और आपने जहाँ ये एस्टेब्लिश किया है उसका अनुभव कैसा है?
1: बिना गवर्नेंस के कोई भी आप प्रोजेक्ट या एक्टिविटी या इनिशिएटिव आप चलाते हैं वो ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, और अगर हम उस गवर्नेंस को सही तरीके से उस इकोसिस्टम में फॉलो कर पाएँ तो उसकी सफलता सिद्ध होती है। तो नीतियाँ होनी चाहिए, नियम होने चाहिए, और वो अपना एक अनुशासन लेके आता है, वही चीज़ें हमारे जीवन में अनुशासन लेके आती है, और वो प्रोजेक्ट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो नीति का होना, पॉलिसीज़ का होना, गवर्नेंस का होना, डिसिप्लिन का होना, स्टैंडर्ड्स का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि अपने शरीर में विटामिन का होना आवश्यक है।
0: आप टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ भी हैं और बिजनेस में भी विशेषज्ञ हैं, 2019 में बताया कि आपने कंपनी एस्टेब्लिश किया है, आपने एक किताब लिखी है PMO रिवाइड, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस को किस तरह से आप नए सिरे से एक विस्तार दे सकते हैं या आपस में जोड़ के रख सकते हैं, ये इसका शाब्दिक अर्थ है
1: जी।
0: इसके बारे में हमें बताइए कि इसकी मूल भावना क्या है और कैसे आपको ये प्रेरणा मिली लिखने की?
1: तो अगर मैं उसको एक उदाहरण के द्वारा अगर मैं आपसे बात करूं कि पहले किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता था तो हम किस तरीके से सोचते थे कि उसका जो नींव रखी जाएगी उसके ऊपर कैसे आर्किटेक्चर बनेगा, वो सारी चीजें। अब आज के परिवेश में अगर आप टेक्नोलॉजी को उसके अंदर मिक्स करके देखते हैं तो हमारे को कई तरीके की संभावनाएं नजर आती है कि मैं इस बिल्डिंग को इस छोटी सी जगह में इस तरीके से भी बना सकता हूँ या अलग तरीके से भी बना सकता हूँ। तो वो जो इनोवेशन है, वो जो रिवायर अपन जो सोच रहे हैं, वो सिमिलरली वो अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस में। पहले ऐसे होता था कि भाई प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, 10 प्रोजेक्ट मैनेजर एक PMO डिपार्टमेंट में हैं, वो अपना अपना काम करेंगे, इस तरीके से करेंगे, वैसे करेंगे। लेकिन उसी PMO ऑफिस को अगर हम मॉडर्न बनाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी से एसोसिएट करना चाहते हैं, जो लीगेसी सिस्टम है उसके ऊपर हम एडवांसमेंट लेना चाहते हैं, तो हमारे को उसको रिवायर करना पड़ेगा। और वो रिवायर करने के लिए ही मैंने ये PMO रिवायर्ड किताब लिखी है, जिसमें मैंने दुनिया के 28 विशेषज्ञों को शामिल किया है, उनके जो पर्सपेक्टिव हैं, उनके जो विचार हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को मैंने उसमें अंदर डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की है, जो पूरी दुनिया में अच्छी तरह से प्राप्त हुई है।
0: बहुत अच्छा, आपने PMO रिवायर्ड की चर्चा की कि किस तरह से वो आपके प्रोजेक्ट को, मैनेजमेंट के ऑफिस को रिवायर्ड किया जा सकता है। नागेंद्र राय जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने उद्यमिता, विकास, जो वर्तमान की तकनीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल परिवर्तन और जो इनोवेशन है, वो किस तरह से इस क्षेत्र में कंपनियों के विस्तार में, रोजगार के अवसरों में बढ़ावा दे रहा है, आकाशवाणी आने के लिए और इन सब जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: स्टार्टअप, नवाचार और एंटरप्रेन्योरशिप के विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता समन्वय, अभी आप इस विषय पर नागेंद्र रॉय और दिलीप झा की ये बातचीत सुन रहे थे। और इसी के साथ आज का उद्योग पत्रिका का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाइक का था और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
3: उद्योग पत्रिका।
4: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर।

0: भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने तथा उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। ये रेटिंग किसी देश की सरकार की ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली को दर्शाता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने के लिए मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। न्यायालय ने कहा कि पुलिस की जांच से जवाब मिलने के बजाय और सवाल खड़े होते हैं। उच्च न्यायालय ने CBI को प्राथमिकी दर्ज करने और दिशा के पिता सतीश सालियान का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया, लेकिन यह भी साफ किया कि जांच के दौरान किसी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने तक किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाएगा। सरकार ने विधिक माप विज्ञान भारतीय मानक समय नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। ये देश में भारतीय मानक समय को साझा, कानूनी रूप से मान्य और प्रमाणित समय संदर्भ के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इन नियमों को पिछले महीने की 27 तारीख को अधिसूचित किया था और 29 तारीख को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इन नियमों में भारतीय मानक समय के निर्धारण, रखरखाव, प्रसार और उपयोग के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 180 दिन बाद लागू होंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा, किसी सच्ची प्रतिभा को जब सकारात्मक और सहयोगपूर्ण वातावरण में विकसित किया जाए तो वो महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। नेपाल बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सामग्री भेजी है। वहीं नेपाल तिब्बत में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में भारत ने रविवार को थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। ग्रुप बी के मैच में कल रात दुबई में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रनों से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Belgium, Bart De Wever, will hold bilateral talks in New Delhi today. Both leaders will discuss the entire spectrum of bilateral relations as well as regional and global issues of mutual interest. The Belgian Prime Minister arrived in the national capital last night on a 3-day visit to India. Prime Minister De Wever is being accompanied by Belgian Minister of Defence, Theo Franken. This is his first visit to India since taking office in February last year. The visiting dignitary will also deliver a keynote

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। समय हुआ है 10:10:12 और ये समय होता है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम का। जी हाँ, आपका अपना कार्यक्रम, आपकी पसंद, और इसको लेकर हाजिर हुई हूँ मैं, यानी आपकी दोस्त और होस्ट अल्पना, और मेरे साथ है मेरी साथी आरती गौर। तो कैसी हैं अल्पना?
1: बिल्कुल सही। और आरती, आपकी मुस्कान बता रही है कि आज बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हम लोग करने वाले हैं।
0: जी हाँ, जब पता है रास्ते से आ रही थी तो काफी जगहों पर मैंने मतलब देखा कि तैयारियां चल रही हैं।
1: जी
0: भाई
1: अभी
0: किसकी
1: अभी अभी
0: तैयारी?
1: हमें बताना नहीं है, देखो।

0: पता चलें किसकी रही है।
1: ये तो हमारे श्रोता ही बताएंगे कि काहे की तैयारियां चल रही हैं, और उसी से कुछ रिलेटेड हम पहले एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाएंगे जिससे कि उन्हें पता चले कि हम किस बारे में आज बात करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी अपने मेल्स भेजना शुरू करिए और सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: हाँ दोस्तों, गाना सुन के आपको ये पता तो चल ही गया होगा कि हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। आपके यहाँ जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है और क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं आप लोग?
1: जी हाँ, कुछ ना कुछ खास तो होता है। हर साल हमारे कान्हा जी आते हैं और हम सब के लिए बहुत सारी उम्मीदें लाते हैं और बहुत सारी आशाएं लाते हैं, तो हम भी तो उन्हें बदले में कुछ देंगे ना। तो क्या
0: बिल्कुल
1: करने वाले हैं आप, जरा हमें भी बताइए, हो
0: बिल्कुल
1: सकता है हमारे भी काम आ जाए।
0: जी हाँ। और आरती अभी ये हमें मेल भेजते हैं, सोचते हैं और ये बताते हैं कि क्या क्या करने वाले। उससे पहले एक छोटा सा संदेश सुन लेते हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल।
0: बिल्कुल।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: जी हाँ बिल्कुल, सतर्क रहिए। और लेकिन देखिए, हमारे जो श्रोता है ना, इतनी अच्छी जानकारी, देखिए हमने बस बात करी, एक छोटा सा गाना सुनाया और देखिए हमारे पास मेल आना शुरू हो गए। और ये जो पहला संदेश है, आरती जी और मुझे नमस्कार कर रहे हैं, ये भेज रहे हैं जमशेदपुर से हरजिंदर भाटिया, अंजल भाटिया, तमन्ना भाटिया, और लिख रहे हैं आज हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी की बातें करने वाले हैं, मजा आ जाएगा। क्या बात है, देखिए कितने अच्छे श्रोता है ना
1: जी हाँ,
0: हमारे।
1: हमारे कान्हा जी बड़े नटखट हैं और उनकी बातें करने के टाइम में मुस्कान आनी तो बनती है।
0: बिल्कुल, और इतना अच्छा लगता है जब हमारे श्रोता इस तरह से हमें संदेश भेजते हैं और बताते हैं कि हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी और लोग भी भेजिए
1: ये
0: संदेश।
1: जो है अगला संदेश हम तक पहुंचा है, यह है गांव खारिया ढाड़ी जिला सिरसा हरियाणा से सतबीर सिंह के बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, अर्जुन, नव्या बिजारनिया, और ये हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही बहुत सारे और भी श्रोता हैं, जैसे कि ये हैं सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव, ये डाबकी रोड अकोला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
0: जी
1: और इनके साथ जो अगले श्रोता जुड़े हैं वो जल्दी से नाम ले लीजिए
0: जी
1: आप।
0: हाँ, ये है बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज हैं, सरफराज, फरदीन, सुहाना, अरजान, अब्बान और सबस अब्बासी परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है और प्यार भरा नमस्कार हमें भेज रहे हैं। आदिल कुमार और अली मुजफ्फर और ये शुक्रिया भी भेज रहे हैं, गुन्नौर से इनका हमारे पास संदेश आया है। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें हमारा भी मेल शामिल कर लीजिए, बोधराज खोरवाल जी हमें इस बारे में संदेश भेज रहे हैं। तो चलिए एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं और आप अपने संदेशों का सिलसिला यूं ही जारी रखिए।

थाई शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई सर

दधकी भरी मटकी ले जात रही डगर बीच, आहट सुन आहट सुन आहट सुन जियरा गयो धड़क धड़क धड़।

0: और ये अगला जो हमारे पास संदेश आया है वो भेजा है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य लाडो कोयल, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का डुक्कू, भाविका सिक्का। और आप लिख रहे हैं कि हम तो जन्माष्टमी पर सारे मंदिरों में जाकर दर्शन करेंगे। दीदी क्या बात है।
1: हाँ, मंदिर जो होते हैं वो काफी सुंदर सजे होते हैं, और सबसे बड़ी चीज वो पालना झुलाने का जो मौका मिलता है
0: कितना
1: वो
0: अच्छा
1: तो
0: लगता
1: अलग ही
0: है।
1: मतलब आनंद
0: बिल्कुल
1: आता है सही।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा ये कासगंज उत्तर प्रदेश से संदेश भेज रहे हैं
1: ये है
0: योगेंद्र
1: योगेंद्र
0: गीता
1: नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक।
0: जी। और
1: साथ में हमारे साथ जुड़े हैं व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
0: इसके अलावा ये बहुत ही प्यारा सा संदेश भेजा है, नमस्कार जय श्री कृष्णा लिख रहे हैं। नमस्कार आपको भी, और आप की सुंदर प्रस्तुति ने जन्माष्टमी की यादों को फिर से ताजा कर दिया। हमारे यहाँ भी राधा कृष्ण जी का सुंदर मंदिर है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गांव में नन्हे बच्चे राधा कृष्ण और मोह मनमोहक रूप धारण करते हैं और कान्हा बनकर मुरली बजाते हैं और राधा जी बहुत खूबसूरत लगती हैं। इसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भजन कीर्तन और सुंदर झांकियां होती हैं। चारों ओर कृष्ण की नाम की गूंज होती है और भक्तिमयी वातावरण होता है। ये हमें लिख के भेज रहे हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांग, कौशल्या देवांगन और हेमा हेमलता डिम्पल। और इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन भी लिखी है
1: इन्होंने लिखा
0: आरती
1: है कि कान्हा की मुरली बजे,
0: जी।
1: राधा का प्रेम मुस्कुराए, जन्माष्टमी का पावन पर्व हर दिल में खुशियां लाए,
0: क्या बात
1: नंद
0: है।
1: के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जी हाँ, आपको भी जय श्री कृष्णा
0: जय
1: और
0: श्री कृष्णा।
1: जन्माष्टमी आपकी बहुत शुभ मनाएं।
0: आप सबकी जन्माष्टमी

0: में बहुत उल्लासपूर्ण बने और बहुत अच्छा, बहुत खुशियाँ बांटें और आपकी भी जिंदगी में बहुत खुशियाँ हैं। तो चलिए इसी खुशियों के साथ एक और प्यारा सा खुशी भरा गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: वही जहां कृष्ण होते हैं वहां राधा होती हैं, और जहां राधा होती हैं वहां कृष्ण जरूर होते हैं।
1: जी
0: दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे से लगते हैं। तो हमारा भी जो ये शो है ना, वो अधूरा लगता है जब आपके संदेश नहीं आते, लेकिन फिलहाल तो अभी तो पूरा हो रखा है, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: बहुत सारे संदेश हैं। जैसे ये अगला संदेश है, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी और शांति नगर सोनीपत से ये लिखते हैं। कहते हैं, आप सब श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बात कर रहे हैं, हमारी ओर से आप सबको आईपी परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं इस पावन पर्व की। तो भाई, हमारी तरफ से भी आपका ये दिन मंगलमय हो और सभी श्रोता खुश रहें, उनकी जिंदगी में उम्मीदों की और खुशियों की बारिश होती रहे।
1: और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी। और इसके अलावा हमारा जो कार्यक्रम सुन रहे हैं वो कला नॉर्ड से नरेश शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
0: साथ ही कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष, सुशील, डब्बू डब्बू, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
1: और इसके अलावा छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं
0: हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखे लाल वर्मा, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी का भी संदेश हम तक पहुंचा है।
1: जी हाँ। और इसके अलावा ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर और मिराज आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
0: दिल्ली से आई के इंदर और आर एस स्वीटी, नई दिल्ली वेस्ट से राजेंद्र छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, इंद्रजीत छाबड़ा हमारे साथ बने हुए हैं।
1: और हैप्पी जन्माष्टमी कह रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके अलावा हमारे पास वर्णिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू, पिंकी, लवली और आरती जुड़ी हुई हैं।
0: जी हाँ दोस्तों, श्रोता आप सारे बहुत सारे हैं, लेकिन हमने एक सवाल भी पूछा था कि जन्माष्टमी किस तरीके की मनाई जा रही है आपकी तरफ, क्या क्या सजावट है, क्या क्या डेकोरेशन है, क्या खास है, और सबसे बड़ी चीज, आपकी तरफ मटकी फोड़ने वाला ये जो चलता
1: बिल्कुल
0: है ना परंपरा, ये
1: हाँ।
0: होती है या नहीं, और आपने कभी पार्टिसिपेट किया है?
1: और आप क्या क्या खुद खास करने वाले हैं, आपके अपने क्या प्लान्स
0: हाँ,
1: हैं?
0: कुछ आइडिया हमें भी दे दीजिए, हम दोनों भी ट्राई कर लेंगे।
1: बिल्कुल। और ये देखिए एक और संदेश आ गया
0: ये है
1: है।
0: जिला पीतल नगरी ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह जुड़े हैं। बहुत सारे श्रोता जुड़े हैं, उन सब के संदेश भी शामिल करेंगे, लेकिन एक गीत भी शामिल हो जाए तो कैसा रहे।
1: बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत।

0: और ये जो अगला संदेश है वो है चंडीगढ़ से सतीश जनेजा जी का, और ये लिख रहे हैं बहुत सारी शुभकामनाएं दोनों बहनों को जी, आपको भी, और लिख रहे हैं कि हम इस शुभ दिन मंदिर जाकर पूजा करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं और बांटते हैं, प्रसाद बांटते हैं। परिवार के कुछ सदस्य आज वृंदावन भी गए हैं, क्या बात है, और जन्माष्टमी की धूमधाम से मनाते हैं, क्या बात है, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे।
1: अल्पना, मैं भी बताना चाहूँगी कि अभी जन्माष्टमी से पहले ही मैं मथुरा के दर्शन करके आई हूँ, और सच में वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगता है, और गोकुल की गलियों में घूमते हुए ऐसा लगता है कि कान्हा कहीं ना कहीं यहाँ मिल ही जाएंगे।
0: क्या बात है, और ये तो बस सच है कि आप जब भी किसी ऐसी जगह पे जाते हैं ना तो एक अलग सी शांति और एक अलग सा
1: हाँ
0: जो पॉजिटिवनेस होती है ना वो महसूस होती है।
1: तो चलिए, आपकी जो संदेश है उसे पढ़कर भी बड़ी पॉजिटिविटी फील होती है। जैसे कि ये संदेश पढ़ने के बाद सप्तरंग श्रोता परिवार कुमार गली श्रीरामपुर से, अशोक दले, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका और पुनावल्लेपुड़े से अजय, करिश्मा, अविका, विशाखा, सोनवने, ये सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ जो अगले श्रोता जुड़े हैं वो हमारे साथ हैं। काफ़ी सारे संदेश हमेशा की तरह वैसे ही आ रहे हैं रिपीट, क्योंकि
0: जी
1: शायद आप मानेंगे नहीं, मतलब आप भी शैतानी करेंगे, आप भी कान्हा जी की तरह थोड़ा नटखट हो गए हैं।
0: जी, और ये राजू अग्रवाल केशव सुमन चौधरी वास जी से संदेश ये भेज रहे हैं हमें। और इसके अलावा जो देखिए ये संदेश छत्तीसगढ़ पढ़लारी से प्रकाश वर्मा, निखिल, यशस्वी और प्रिंस का, और इसके अलावा जो संदेश है
1: ये कहते हैं, आपकी पसंद कार्यक्रम में प्रस्तुतकर्ता को मेरा प्यार भरा नमस्कार, हम आपका प्रोग्राम बराबर सुन रहे हैं, हमारा मेल शामिल कर लीजिए। और इसके अलावा ये कहते हैं, नंदलाला तेरी, अच्छा ये गीत की फरमाइश उन्होंने की है और बहुत ही प्यारा गीत है, चलिए कोशिश करेंगे। लिखने वाले हैं रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्रवधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा, प्रतिमा, वेद बाबू और कठेरिया परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ। तो आपको भी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और चलिए आपका संदेश तो शामिल हो चुका है और बहुत सारे और भी जो श्रोता हैं वो लाइन में लगे हुए हैं
0: जी।
1: तो उन तक भी पहुंच ही जाते हैं। ये आया है हमारे पास संदेश, आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंदा चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे भाविक ढींगरा, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही जो अगले श्रोता जुड़े हैं वो हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार, कहते हैं आप दोनों बहनों को हार्दिक नमस्कार,
0: जी आपको भी
1: बेहतरीन प्रस्तुति के साथ नगमे भी ये सुन रहे हैं और कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष चर्चा भी कर रहे हैं, और ये भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। साथ ही ये कहते हैं कि वैसे कृष्ण जन्माष्टमी पर सारे दिन उपवास रखते हैं और रात्रि को कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष महोत्सव में भाग लेते हैं और मंदिरों में भजन संध्या में भाग लेते हैं।
0: क्या बात है, और वैसे भी अभी ना कई जगह पे आपको ये झांकी दिखेंगी, सुंदर सुंदर छवि देखने को मिलती है
1: और
0: कृष्ण
1: सबसे
0: जी।

0: चीज पता है अल्पना क्या
1: बहुत
0: लगती है, ये छोटे छोटे बच्चों को राधा कृष्ण बनाया जाता है ना, कितने क्यूट लगते हैं और कितने
1: प्यारे
0: प्यारे
1: लगे,
0: लगते हैं।
1: बहुत
0: सच में
1: प्यारे
0: लगता है कि
1: लगते
0: राधा
1: हैं
0: कृष्ण धरती पर उतर के आ गए हैं।
1: जी। हाँ, तो चलिए एक और प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

0: और ये जो अगला संदेश है वो है हमारे पास पंजाब से, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपक, दीपिका और गव्या का, और भाई सुच्चा सिंह पाठक का। और इसके साथ जो अगले श्रोता हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं वो हैं जिला नांदेड़ इताला महाराज से शंकर लाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्णव, दुगेश्वरी, राखी और तृप्ति हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं। साथ ही आदर्श नगर मालौद पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मैंडी शर्मा और सौरभ शर्मा, ये पूरा शर्मा परिवार हमारे कार्यक्रम को सुन रहा है। अगले जो श्रोता हैं
1: हाँ,
0: वो हैं
1: इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं मीना, तेजस, जय, हर्षित और उनकी दीदी भी जुड़ी हुई है मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से। ये हमारे पास संदेश आया है। और इसके अलावा जो संदेश हमारे पास आया है वो है चरणदास, पंकज, राजू अग्रवाल और चौधरी वास का। और हमें अगला जो संदेश भेज रहे हैं वो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजन, वंदना, प्रिया, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

0: उदित नारायण, अलका याग्निक की आवाज़ में तेरे नाम फिल्म से इतना प्यारा सा गीत हमने सुना। और उसके साथ ही अब बढ़ते हैं अपने एक प्यारे से संदेश की तरफ, जो आया है लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास ए रानी मुनी मानिकपुरी का। कहते हैं आरती जी, अल्पना जी, हमारा भी संदेश शामिल कीजिए।
1: जी
0: तो थोड़ा सा वेट
1: बिल्कुल
0: कीजिए, देखिए संदेश शामिल हो गया।
1: बिल्कुल जा, हमारी तो पूरी कोशिश रहती है ना कि हम आपका संदेश शामिल करें ही। और ये हमें संदेश भेज रहे हैं शहादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष डब्बू पंचकुला चंडीगढ़ से, राहुल खुराना रचित और केशु खुराना जी, और राधे राधे लिख रहे हैं, आपको भी राधे राधे। और इसके अलावा ये जो छत्तीसगढ़ से हमारे पास संदेश है गुलाब दास राजा जी, देखिए ये भी संदेश हमने पहले शामिल किया था, और ऐसे ही हो जाता है कि आप लोग संदेश बार बार भेजते हैं ना तो और लोग के छूट
0: ये
1: जाते
0: है
1: हैं।
0: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़गे और विनोद खड़गे, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
1: और देखिए और भी जो जो हमारे पास संदेश है, समय बहुत ही कम बचा है, और अगर आप लगातार अपने ही संदेश भेजेंगे तो बहुत सारे श्रोता हमारे छूट जाते हैं।
0: जी हाँ, आप बार बार अपने संदेशों को दोहराते हैं और हम बार बार ये आपसे विनती करते हैं कि कोशिश कीजिए एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो। उससे ज़्यादा आप संदेश बार बार भेजेंगे तो आपके साथी नाराज़ होंगे और हमारा भी जो वक्त है ना वो ज़ाया हो
1: हाँ,
0: जाएगा।
1: और उसमें कई लोग छूट जाते हैं, फिर वो नाराजगी दिखाते हैं हमें। और ये जो संदेश भेजा है पंकज शर्मा जी का, और जगमोहन प्रजापति जी का संदेश है, और इसके अलावा ये जो सुखविंदर जी हमें संदेश सुधाकर सॉरी सुधाकर जी संदेश भेज रहे हैं, ये जाफराबाद से संदेश है, और इनके साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत और सचित और सर्वेद, हर्षित और सानवी भी। और देखिए समय भी अब हमारे पास समाप्त हो रहा है, तो चलिए इस प्यारे से गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं अल्पना को और
0: आरती को इजाजत दीजिए, लेकिन आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी
1: बहुत
0: शुभकामनाएं।
1: सारी शुभकामनाएं। आपकी जन्माष्टमी बहुत अच्छी बीते, आप बहुत एंजॉय करें, बस हम यही चाहते हैं।
2: हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट द वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण देंगे। उनके साथ रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकिंग भी दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने

घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध है जो आपसी संबंध और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश शासन आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकिंग के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि विश्व इस समय अब तक की सबसे बड़ी भू राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में बेल्जियम जैसे महत्वपूर्ण साझेदार विचार विमर्श के लिए सार्थक अवसर प्रदान करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 290 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में कोलकाता के 11 परिसरों में छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अनुसार कंपनी ने झारखंड में 66 मेगावाट बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण लिया था। आरोप है कि ऋण राशि को निजी हितों के लिए बाद में समूह की अन्य इकाइयों को भेज दिया गया। सरकार ने विधिक माप विज्ञान भारतीय मानक समय नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। ये देश में भारतीय मानक समय को साझा कानूनी रूप से मान्य और प्रमाणित समय संदर्भ के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उपभोक्ता मामले विभाग ने नियमों को पिछले महीने की 27 तारीख को अधिसूचित किया था और 29 तारीख को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इन नियमों में भारतीय मानक समय के निर्धारण, रखरखाव, प्रसार और उपयोग के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के साथ बैठक की। इसमें स्कूल शिक्षा सुधारों के अगले चरण पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के साथ बैठक में आगामी परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। 14वीं नागालैंड विधानसभा के 9वें सत्र का दूसरा और अंतिम सत्र आज आयोजित हो रहा है। इस दिन कई सरकारी बिलों के साथ साथ फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बिल 2026 समेत कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाएंगे और उनको पारित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। लद्दाख में आगामी 2 दिवसीय द्रास महोत्सव 4 और 5 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इसमें हाल ही में नए जिले के रूप में घोषित द्रास की पर्यटन, सांस्कृतिक और साहसिक क्षमता को प्रदर्शित किया जाएगा। नेपाल बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सामग्री भेजी है। वहीं नेपाल और तिब्बत में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। खेलों में महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। प्रतियोगिता में भारत ने रविवार को थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

की वरिष्ठ शिष्या सुभद्रा देसाई जी ने नई दिल्ली के गंधर्व महाविद्यालय में पंडित विनय चंद्र मौद्गल्य और श्रीमती पद्मा देवी जी से शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा ग्रहण की। संस्कृति प्रतिष्ठान के अंतर्गत मिली राष्ट्रीय मणिमान फेलोशिप के अंतर्गत आपने विदुषी मालिनी राजूरकर और पंडित दिनकर कैकणी से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आप भारत की 18 भाषाओं में गाने में कुशल हैं। ख्याल, टप्पा, निर्गुण और सगुण भजन, वेद और उपनिषदों के प्राचीन संस्कृत पाठ, वेद सूक्त, धम्म पद, संत कवियत्रियों के गीत और रवींद्र संगीत प्रस्तुत करने के लिए भी आप जानी जाती हैं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आयोजित स्वरांजलि की इस विशेष प्रस्तुति में आप कृष्ण भजन प्रस्तुत कर रही हैं और एक सुखद संयोग ये है कि जब हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम कर रहे हैं तब कृष्ण जी की बहन देवी सुभद्रा का नाम जिन्हें प्राप्त हुआ है वही हमारी आज की कलाकार हैं डॉक्टर सुभद्रा देसाई। आपके साथ संगत कर रहे हैं तबले पर शंभुनाथ भट्टाचार्य जी, हारमोनियम पर हैं चेतन निगम जी, बांसुरी पर हैं किरण कुमार जी, डुग्गी तरंग पर अनुरोध जैन जी और तानपुरे पर हैं वैशाली पाल और स्वाति भगत। तो आइए अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आज नटवर नागर नंदकिशोर भक्त वत्सल रास रचैया मुरलीधर गिरधारी बांके बिहारी द्वारकाधीश कुंज बिहारी को नमन करते हैं। उनका जो स्वरूप हमारे मन के अधिक निकट है उसे हम याद करते हैं। आज की प्रथम प्रस्तुति भागवत पुराण से चतुश्लोकी भागवत अहमे वास्मे वाग्रे।

गीत गोविंद से अष्टपदी अभी आप सुन रहे थे श्रीत कमला कुच मंडल। मुख माखन लिपटा दिखे गोपी पकड़े कान, मुख माखन लिपटा दिखे गोपी पकड़े कान, बाल रूप में सज रहे कैसे श्री भगवान। अगली रचना सूरदास जी की, गोकुल प्रगट भय हरि आई।

हम सभी जानते हैं कि देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की तैयारियां चल रही हैं और एक तरह से पूरी सृष्टि ही सांवरे के रंग में रंगी हुई है। ऐसे में आज हमारा स्वरांजलि कार्यक्रम भी उन्हीं के चरणों में अर्पित है, उन्हीं को समर्पित है। हमारी आज की कलाकार डॉक्टर सुभद्रा देसाई प्रस्तुत कर रही हैं स्वरांजलि कार्यक्रम में श्री कृष्ण भजन। अगली प्रस्तुति सूरदास की रचना बूझत श्याम कौन तू गोरी।

स्वरांजलि कार्यक्रम का आनंद आप ले रहे हैं। दर्द की मारी बन बन डोलू, दर्द की मारी बन बन डोलू, बैद मिलिया नहीं कोई, मेरा की प्रभु पीर मिटेगी जब बैद सांवरो होई। अगली रचना उनकी जिन्होंने भक्ति और प्रेम का

0: अंतर मिटाकर इन दो शब्दों को, दो भावों को एक दूसरे का पर्याय बना दिया। प्रीत की रीत सिखा गई मीरा। मीराबाई की अगली रचना आज रंगीली रैण प्रीतम।
1: मैं अगले प्रस्तुति में जाना चाहूंगी माई मेरो पिया बिन
0: अलूनो देश।

अगली प्रस्तुति यदुवंशज योगेश्वर मथुरापति मधुसूदन को समर्पित वल्लभाचार्य जी की रचना मधुराष्टकम अधरम मधुरम।

आकाशवाणी के प्रसारण भवन में भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में आयोजित ये थी स्वरांजलि की विशेष प्रस्तुति। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में डॉक्टर सुभद्रा देसाई ने आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किए कृष्ण भजन। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर शंभुनाथ भट्टाचार्य जी, हारमोनियम पर थे चेतन निगम जी, बांसुरी पर किरण कुमार, दुग्गी तरंग पर अनुरोध जैन, तानपुरे पर साथ निभाया वैशाली पाल और स्वाति भगत ने। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा प्रकाश थपलियाल, सुनील और कान्हा मीणा का, प्रस्तुति सहयोग था विशाल और दिव्या का, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्पर्शिता श्रीवास्तव और प्रदीप अग्रवाल। तो आज का हमारा ये कार्यक्रम समर्पित रहा श्री कृष्ण को। सब जन्म उन्हीं से पाते हैं, फिर लौट उन्हीं में जाते हैं, ऐसे श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की हमारे तमाम श्रोताओं को अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई। मैं नीलमल कानिया इसी के साथ स्वरांजलि कार्यक्रम से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार, कुछ ही देर में हम सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट दी वेवर के साथ वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे पहले आज सुबह बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बेल्जियम के प्रधानमंत्री भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल रात राजधानी पहुंचे। प्रधानमंत्री डी वेवर के साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। पिछले साल फरवरी में पद संभालने के बाद ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश शासन आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि विश्व इस समय अब तक की सबसे बड़ी भू राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का

0: का। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के साथ बैठक की। इसमें स्कूल शिक्षा सुधारों के अगले चरण पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापारिक सम्मेलन में भारत की सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनियम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनियम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। प्रवर्तन निदेशालय कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 290 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में कोलकाता के 11 परिसरों में छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अनुसार कंपनी ने झारखंड में 66 मेगावाट बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण लिया था। आरोप है कि ऋण राशि को निजी हितों के लिए बाद में समूह की अन्य इकाइयों को भेज दिया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि रूस के भीतर यूक्रेन के हमलों और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का रूस की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। श्री रूबियो ने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन ऐसी व्यवस्था पर बातचीत कर रहे हैं जिनसे यूक्रेन उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों का उत्पादन कर सके। रूबियो ने ये बात कल एक साक्षात्कार में रूस के ईरान को समर्थन और यूक्रेन में जारी युद्ध पर चर्चा के दौरान कही। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन रूस के भीतर सैन्य और ऊर्जा से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए लंबी दूरी के ड्रोन और अन्य हथियारों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त देखी गई। ताजा जानकारी के अनुसार सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 76,779 पर और निफ्टी 53 अंक बढ़कर 23,967 पर पहुंच गया। क्षेत्रीय स्तर पर रियल एस्टेट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और पूंजीगत वस्तुएं प्रमुख लाभ कमाने वाले क्षेत्र रहे। बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर 750 टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is currently holding bilateral talks with his Belgian counterpart Bart De Wever in New Delhi. Both leaders will discuss the entire spectrum of bilateral relations as well as regional and global issues of mutual interest. Several agreements are expected to be signed after the talks. This morning, the Prime Minister of Belgium visited the Rajghat and paid tributes to Mahatma Gandhi. The Belgian Prime Minister arrived in New Delhi last night on a 3-day visit to India. He is accompanied by Belgian Minister of Defence, Theo Fonken. This is his first visit to India since taking office in February last year. The visiting dignitary will deliver a keynote address at a Confederation of Indian Industry business event in the context of the India-EU Free Trade Agreement. Our correspondent reports that the visit will provide an opportunity to further strengthen the India-Belgium partnership and advance cooperation in areas of mutual interest, including trade and investment, defence and security, and renewable energy. Earlier today, Defence Minister Rajnath Singh held a delegation-level talk with his Belgian counterpart Theo Fonken. He said India and Belgium have warm and enduring ties built on mutual respect, democratic values, and a shared commitment to a rules-based global order.
2: India and Belgium share warm and long-standing relations founded on mutual respect, democratic values, and a shared commitment to rules-based global order. The recently held India-Belgium Strategic Dialogue in July 2026 has provided an institutional framework for taking up our bilateral partnership forward, including in defense and security. Excellency, we see considerable potential for expanding our

सुनहर आंगन। स्वागत अभिनंदन आप सभी का हमारे घर आंगन कार्यक्रम में। रोचक जानकारी, बातों और गीतों के साथ आज के सफर को तय करेंगे आप हमारे साथ। तो आप सभी को मेरा यानी मनीषा बोस का प्यार भरा नमस्कार। 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप और हमारे इस कार्यक्रम को इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर और हमारे यूट्यूब हैंडलर AIR

0: लाइव न्यूज 24/7 पर भी सुन सकते हैं आप। साथियों, सफर में आगे बढ़ने से पहले आज आपको बता दूं, आज का सवाल हमारी एक आदत से जो है जुड़ा हुआ। जैसे हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपनी बातों में किसी एक शब्द को आदतन बोला करते होंगे, यानी वे शब्द या वाक्यांश जिसे अपनी बातचीत के दौरान अक्सर बार बार दोहराते होंगे, तो उनका कोई ना कोई ऐसा तकिया कलाम जरूर होगा। अपनी हर बात में किसी शब्द या वाक्य को दोहराने की आदत ही व्यक्ति की पहचान और उसका तकिया कलाम बन जाता है। जैसे अरे भाई, अरे यार वगैरह वगैरह, जो हम अक्सर बोल चाल में बोलते हैं। अगर आप भी ऐसे किसी शब्द का प्रयोग अपनी बातों में करते हैं बार बार, तो आपको बताना है आज आपका तकिया कलाम क्या है। ध्यान से सोचिए और बतलाइए रोचक किस्से आपके तकिया कलाम से जुड़े हुए कौन से हैं, और लिख भेजिए हमें fmgoldga@gmail.com पे। और अब आज का सुविचार, सतत और निरंतर रहना ही सफलता की कुंजी है। इसलिए हमारे लोगों ने भी कहा है, विद्वानों ने कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। निरंतर प्रयास से जड़ यानी मूर्ख व्यक्ति समझ को प्राप्त कर लेता है। इसलिए असफल होने से बचने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखना चाहिए।
1: सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे।

साथियों, आपके आने से बहार आ ही गई है और ये जो गीत आप सुन रहे थे झुक गया आसमान फिल्म से था। मोहम्मद रफी की आवाज में आपने इस गीत को सुना। और आज सुप्रसिद्ध तबला वादक पद्म विभूषण पद्म पंडित किशन महाराज जी की जयंती है। तबला वादन में विशेष पारंगत और कथक नृत्य के साथ उनके जुगलबंदी और भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाता रहेगा और उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं। साथ ही लेखिका और उपन्यासकार चंद्रकांता जी की भी आज जयंती है। श्रीनगर में जन्मी इस साहित्यकारा ने हिंदी साहित्य और कश्मीरी संस्कृत और लोक जीवन को अपनी लेखनी से समृद्ध किया। उन्हें उनकी जयंती पर हम नमन करते हैं। और आज का दिन हमें याद दिला रहा है 3 दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले सिने जगत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सर्वप्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले महानायक उत्तम कुमार की जयंती का। और आज उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं। वो बतौर निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, गायक के रूप में पहचाने गए हैं। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आपको याद दिला दूं, आज का हमारा प्रश्न है जो जुड़ा हुआ है आपकी एक आदत से, और वो कहलाती है आपकी आदत। जिस शब्द को आप बार बार प्रयोग करते हैं वो कहलाता है आपका तकिया कलाम। यदि आपका ऐसा कोई तकिया कलाम है तो हमें लिख भेजिए fmgoldgia@gmail.com पर।

दूरियां इस फिल्म से आपने भूपेंद्र सिंह और अनुराधा की आवाज में सुना इस खूबसूरत से गीत को। और दोस्तों, हमारे जो बड़े हैं वो हमें अक्सर ये बताते हैं कि अच्छी बातें और अच्छे संस्कार जहां से भी मिले उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि हर बात अनुभव से सीखी जाए ये संभव नहीं, बल्कि दूसरों के बताए अनुभव से हम सीख सकते हैं। और जानते हैं इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है हमारा साहित्य, हमारे महापुरुषों की जीवनियां और उनकी आत्मकथाएं यानी ऑटोबायोग्राफी। हमारे मार्गदर्शक हमारे महापुरुषों की जीवनियां और आत्मकथाएं पढ़ने की बात तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताई है। हाल ही में मन की बात के एक एपिसोड में उन्होंने युवाओं और देश के नागरिकों से सफल लोगों के जीवन से सीख लेने, उनकी आत्मकथाएं पढ़ने और जीवन में शॉर्टकट से बचने की सलाह दी है। और चूंकि आत्मकथाएं हमें दूसरों के अनुभव और गलतियों और उनकी सफलताओं से बिना किसी नुकसान के सीखने का मौका देती हैं, इसलिए जब हम किसी की आत्मकथा पढ़ते हैं तब सिर्फ हम पढ़ नहीं रहे होते, बल्कि उस व्यक्ति के संघर्षों और उसकी सीखों को अल्फाजों के साथ आत्मसात कर रहे होते हैं, है ना? तो आत्मकथाओं से यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो आपको मैं बता सकती हूँ कुछ आत्मकथाएं जिन्हें मैंने पढ़ा है उनके बारे में, जिनमें परमहंस योगानंद जी की योगी कथा अमृत, महात्मा गांधी की सत्य के प्रयोग, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा अग्नि की उड़ान, हरिवंश राय बच्चन जी की क्या भूलूं क्या याद करूं और श्याम सुंदर दास जी की मेरी आत्म कहानी। ऐसी आत्मकथाएं पढ़ सकते हैं आप और गुन सकते हैं अपने सपनों को यथार्थ के धरातल पर।

साथियों, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में आप सुन रहे थे जानवर फिल्म से ये गीत। और देखिए, बहुत सारे संदेश हमारे साथियों के हमारे पास आ चुके हैं जो हमारे साथ नियमित जुड़ते हैं, और उन्होंने अपना उत्तर भेजा हुआ है जो हमारे आज के प्रश्न का है। और जो श्रोता साथी जिन्होंने अभी रेडियो ट्यून किया है उन्हें बता दूं, आज का हमारा प्रश्न है, आपको बताना है आपका तकिया कलाम क्या है। अगर ऐसा कोई शब्द जिसे आप बार बार अपनी बातचीत में दोहराते हैं, तो ऐसा कोई शब्द है तो लिख भेजिए आप हमें fmgoldga@gmail.com पर। हमारे पास ये पहला संदेश है नवीन भाटिया जी का, और उन्होंने लिखा है, वो शब्द जिसका प्रयोग वो बार बार करते हैं वो है राम भला करे। बहुत सुंदर बात है, और इसी बहाने आप राम जी को याद भी कर लेते हैं। अगला संदेश है, हमारे श्रोता साथी हैं चरणदास जी, और इनके साथ राजू अग्रवाल, केशव दक्ष चौधरी जी हैं। ये हिसार से लिख रहे हैं कि फिल्मों में और उपन्यासों में तकिया कलाम अच्छे लगते हैं, वैसे सामने बैठकर बातें करना है तो तकिया कलाम का प्रयोग करना अजीब लगता है। हाँ, ये बात भी हो सकती है, आपने भी ठीक कहा। और हमारे एक और साथी हैं जिन्होंने अपना संदेश भेजा है कि वो बार बार एक वाक्य का प्रयोग करते हैं और वो है उनका तकिया कलाम, कहने का मतलब ये है। जी हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात कही कि कई लोग अक्सर अपनी बातों में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और साथियों, अब आपको मैं बताती हूँ एक खूबसूरत सी जानकारी जो है आपके पर्यटन से जुड़ी हुई। सुंदरता को चार चांद लगाने वाले घूमने वाली जगहों में से एक है छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का धुड़ मारस गांव, जिसे अपने पर्यटन की सूची में आप शामिल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में जगदलपुर से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर कांगेर घाटी नेशनल पार्क की गोद में बसा है गांव धुड़मारस। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में शामिल किया है। अगर आप यहाँ आते हैं ना, तो पारंपरिक जीवन शैली का सुंदर नजारा आपको अपनी तरफ खींच लेगा, और गांव के अंदर पक्की सड़कें नहीं मिलेंगी, पर तहे दिल से स्वागत करते हुए धुरवा जनजाति के सीधे साधे लोग आपको जरूर यहाँ मिल जाएंगे। जैव विविधता, पारिस्थितिकी पर्यटन, बंबू राफ्टिंग, कयाकिंग, जंगल ट्रैकिंग और स्थानीय धुरवा जनजाति की पारंपरिक जीवन शैली और उनकी संस्कृति और खान पान को आप करीब से यहाँ पर देख पाएंगे जब आएंगे। और जानते हैं, ये जो धुरवा जनजाति है, इनका मुख्य पेशा जो है वो खेती है और वनोपज है। इसके अलावा बांस की लकड़ियों से हस्तशिल्प उत्पाद बनाने में ये निपुण है। बांस और मिट्टी से बने होम स्टे यहाँ पारंपरिक एहसास कराते हैं। और जानते हैं, सौर ऊर्जा से जगमगाता है ये गांव सतत पर्यटन का मॉडल बनकर। और प्रकृति और पर्यावरण के करीब रहने वाले जो

वा जाति के लोग हैं वो यहाँ पानी की पूजा करते हैं और जल को अपनी माता मानते हैं। और बस्तर में कई धुरवा परिवार पानी को साक्षी मानकर ना विवाह संस्कार संपन्न करते हैं। और अगर आप यहाँ पहुंचते हैं तो तीरथगढ़ का सीढ़ी नुमा बनावट वाला 300 फीट गहरा जलप्रपात, कोटमसर गुफाएं और कैलाश गुफाएं आप देखने को पाएंगे, जो खूबसूरत चूना पत्थर की संरचनाओं से बनी है। और जानते हैं इन गुफाओं में जो मछलियां हैं वो अंधी होती हैं, मतलब वो दृष्टि से देख नहीं पाती हैं, ऐसा कहा जाता है। और कैलाश गुफा में जो आवाज गूंजती है वो एक प्राकृतिक संगीत की तरह लगती है। तो आप यहाँ आना चाहते हैं तो हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा माँ दंतेश्वरी हवाई अड्डा है और रेलवे स्टेशन पास का जो है वो जगदलपुर है। अगर आप सड़क मार्ग से यहाँ आना चाहते हैं तो टैक्सी या बस से भी आ सकते हैं। यहाँ आने पर प्रकृति की जो सादगी है वो बरबस ही आपको अपना बना लेगी।

साथियों, हमारे श्रोता साथी जो बहुत जागरूक हैं, हमारे साथ जुड़े होते हैं और उन्होंने अपने संदेश में आज के प्रश्न का उत्तर लिख भेजा है, जिसमें सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से लिखते हैं कि हमारी और एक बार से जो बार बार बात बोली जाने वाली होती है, वो बात है, वो शब्द है हमारा तकिया कलाम, थैंक यू। कितनी अच्छी बात आपने कही, थैंक यू कहना तो वैसे भी बहुत अच्छी बात है। और हमारे अगले जो श्रोता साथी हैं, उनका संदेश है गौरी शंकर वर्मा जी का। उन्होंने कहा कि उन्हें सवाल अच्छा लगा है, एक सवाल को मैं दो बार कह देता हूँ और बात अगर कह देता हूँ तो अच्छा, यानी कि ये शब्द मैं बार बार दोहराता हूँ, यानी कि उनकी जो ये आदत है, यही उनका तकिया कलाम है और ये आदत उनकी छूटती नहीं है। तो उन्होंने कहा है, एक बात कहूँगा, जैसे हम कोई बात सही तरीके से ना लिख पाएं या अपना आपका कमाल है उसे आप सही तरीके से पढ़ देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपने इतनी अच्छी बात कही है कि हमें सचमुच में लगता है कि हम सभी को ना गौर करना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और कैसी आदतों के साथ जुड़े हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सबको याद दिला दूं, आपको बताना है आज का प्रश्न, आपका तकिया कलाम क्या है, जिस शब्द को आप बार बार प्रयोग करते हैं अपनी बातचीत में। और जागरूकता के क्रम में आज मेरे पास एक ऐसी जानकारी है जिसे सुनकर आपको सच में अच्छा लगेगा। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नगर निगम द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास है, कचरा कैफे। एक बेहद ही अनोखा वेस्ट टू रिसोर्स मॉडल का ये कचरा कैफे है, जहां कचरा करेंसी के रूप में तब्दील किया जाता है। यहां पुराने कपड़े से लेकर अखबार, किताबें, प्लास्टिक, ई वेस्ट, यहां तक कि खराब एसी, मोबाइल फोन भी जमा होते हैं, जिसके बदले मिलने वाली रकम सीधे व्यक्ति के कचरा कैफे अकाउंट में जुड़ जाती है। लोग अपने घरों का अलग किया हुआ प्लास्टिक, सूखा कचरा कैफे के कलेक्शन सेंटर पर लाते हैं और कचरे के वजन और उसकी कीमत के हिसाब से यूजर को कचरा कैफे ऐप पर डिजिटल कॉइन्स या फूड कूपन मिलते हैं, जिनका उपयोग करके लोग कैफे में स्वादिष्ट खाना खाते हैं या स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए कपड़े के थैले और जैविक खाद जो यहाँ मिलते हैं उन्हें खरीद लेते हैं। इस तरह ये कैफे महिला स्वयं सहायता समूहों को भी रोजगार दे रहा है। और जानते हैं, इन कचरा कैफों में प्लास्टिक के प्रयोग को कम करने के लिए बर्तन बैंक की सुविधा भी है, जहाँ लोग अपने जो त्योहार होते हैं या अपने यहाँ कोई फंक्शन होता है उसके लिए निःशुल्क बर्तन भी ले हैं। तो देखा कितना कमाल का आइडिया है कचरा कैफे। इस तरह की मुहिम चलाकर हम कचरे का निस्तारण और उसका सदुपयोग कर सकते हैं और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं।

बंटवारा। इस फिल्म से आप सुन रहे थे मन्ना डे, बलबीर और साथियों की आवाज में इस गीत को। और साथियों, आज एक प्रेरक कहानी है आपके लिए, उनकी, जिन्होंने इतिहास बदल दिया, क्योंकि 1 सितंबर 2026 के दिन भारतीय वायुसेना में पहली बार नॉन मेडिकल ब्रांच से, यानी कि गैर मेडिकल ब्रांच से कोई महिला 2 स्टार रैंक तक पहुंची हैं। शक्ति शर्मा नाम है उनका। एजुकेशन ब्रांच में कमीशन और 32 साल का गौरवशाली सफर। वो पहली महिला जिन्होंने सैनिक स्कूल को लीड किया, आईआईटी कानपुर और पुणे यूनिवर्सिटी में आईएएफ चेयर्स स्थापित करने वाली विजनरी लीडर बनी और पहली महिला एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा बनी। उनसे पहले मेडिकल क्षेत्र के अलावा कोई महिला एयर वाइस मार्शल नहीं रही। देश के युवाओं को रक्षा अनुसंधान से जोड़ने के लिए आईआईटीज में नई पहल करने वाली शक्ति शर्मा एनडीए और एएफसीएटी का सपना देखने वाली हर बेटी के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं।

साथियों, पैगाम फिल्म से आप इस गीत को सुन रहे थे आशा भोसले, सुमल कल्याणपुर और साथियों की आवाज़ में। और देखिए, अब आपको हम बताने वाले हैं महानगरीय संस्कृति में जो एकल परिवार की श्रृंखला

बढ़ रही है उसके बारे में और उसकी चुनौतियों के बारे में। और जानते हैं ये जो बात है इससे हम सभी प्रभावित हो रहे हैं और इसका एक लाजवाब उदाहरण बन रहा है इंदौर के 6 दोस्तों का परिवार, जिसे जिन्होंने मिलकर बसाया है गोल्डन होम्स के नाम से अपने आशियाने को। 6 दोस्तों और उनके परिवारों की ये अनूठी कहानी समाज में एकाकीपन को दूर करने की प्रेरणा बन रही है। इन दोस्तों और उनके परिजनों ने बुढ़ापे के अकेलेपन को मात देने के लिए ना सामूहिक जीवन को अपनाया है। और जानते हैं एक ही छत के नीचे रहने वाला ये परिवार जो है वो बहुत अनोखा है। यहाँ रसोई अलग अलग नहीं है, सब एक साथ पकाते हैं और एक साथ खाते हैं, मिलकर काम करते हैं। और जो परिवार की महिलाएं हैं इस वजह से उन्हें रसोई के जो रोजमर्रा के कामकाज होते हैं उनसे काफी हद तक आजादी मिल जाती है और वो अपना पूरा समय अपनी सेहत की देखभाल में और अपनी खुशियों को गंवाने की बजाय अपनी खुशियों को समेटने में पूरा समय देती हैं। बांटने से खुशियां दोगुनी और दुख आधे हो जाते हैं, है ना। और इस सूत्र पर चलने वाला ये परिवार रिटायरमेंट होम नहीं है बल्कि कर्मठ कर्म योगियों का घर है, जहां सभी अपने अपने करियर में एक्टिव हैं। मैं से हम का सफर तय करता ये परिवार त्योहार से लेकर बच्चों की शादियों तक हर बड़े फैसले में आपस में राय लेता है, मशवरा करता है और मिलजुल कर तय करता है जीवन की दिशा को। इनके इस परिवार नुमा दोस्ती के ने दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। और अगर कहें ना तो दोस्ती गहरी हो तो खून के रिश्ते के बगैर भी हम एक संयुक्त सुखी परिवार के साथ जीवन को गुजार सकते हैं, जैसे यहाँ हो रहा है।

साथियों, जीवन की डोर से आप सब हमारे साथ बंधे हुए हैं और इस खूबसूरत से गीत को आप सुन रहे थे। फिल्म थी हमारी, हमारी फिल्म का नाम था जीवन की डोर से बांध लिया है, और ये फिल्म थी असली न

और लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप इस गीत को सुन रहे थे। और साथियों, देखिए, त्यौहार आने वाला है, जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है, और इस पर्व के अवसर में भोग प्रसाद और पकवान ना बने तो जन्माष्टमी कभी पूरी नहीं होती, ऐसा लगता है ना भाई। कान्हा के भक्तों ने कुछ ना कुछ तो तैयारियां शुरू कर ही दी होंगी, और हमें लगता है हमारे बहुत सारे श्रोता साथी भी ऐसे होंगे जिन्होंने कान्हा की भक्ति में अपने घर परिवार में इस त्योहार की तैयारियों के लिए अपनी शुरुआत कर दी होगी। तो आज कान्हा के भोग के लिए झटपट बनने वाला वृंदावन का जो मेवा पाक है उसकी विधि जान लेते हैं, ठीक है। तो सामग्री आपको इसके लिए जो चाहिए होगी दोस्तों, वो चाहिए होगी 1 कप मखाना, आधा कप काजू, बादाम, पिस्ता जिसे आपको बारीक काट लेना है, और 2 चम्मच आपको घी लेना है, कढ़ाई में डालना है, और आधा कप मिल्क पाउडर और आधा कप कंडेंस्ड मिल्क या बूरा चीनी जो उसके साथ होता है वो उसके साथ मिलाना है, और इसे सबको तैयार करना है। सामग्री को इसको बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले घी में आपको ना ये जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें मखाना है उसको भुनना होगा, उसे थोड़ा सा कुरकुरा करना होगा और दरदरा पीस कर अलग रखना होगा, और उसके बाद जो घी बचा होगा उसमें सारे मेवों को एक साथ आपको रोस्ट कर लेना है, हल्का भून लेना है, और कढ़ाही में जो कंडेंस्ड मिल्क है उसे गर्म करके उसमें मिल्क पाउडर मिलाना है, फिर जो आपने ड्राई फ्रूट्स में मखाना दरदरा किया है उसे मिलाना है, और उसके साथ ही सारे मेवों को एक साथ मिला देना है और चलाते रहना है उस मिश्रण को तब तक जब तक कि वो मिश्रण गाढ़ा ना हो जाए, ठीक है। और फिर एक थाली में आपको घी लगाना है, घी को पूरा फैला देना है उस मिश्रण को फैलाने के लिए, ताकि वो जो थाली की चिकनाई है वो चिकनाई उस मिश्रण के साथ चिपके ना, और उस मिश्रण को पूरी थाली में आपको फैला कर उसे ठंडा होने तक छोड़ना है, लेकिन उसके ऊपर आपको डालना है केसर और पिस्ता सजाने के लिए, और जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तो फिर इसे बर्फी के आकार में छोटे छोटे पीस में आप काट सकते हैं, या अपनी पसंद के अनुसार आप दूसरा शेप भी दे सकते हैं, और इस तरह आपकी जो है वो भोग की थाली तैयार हो जाएगी, और आप अपने कृष्ण के आगमन के लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं और उनके स्वागत के लिए इस प्रसाद के साथ। तो चलिए हम कृष्ण को भी याद करते हैं और इस गीत सुनते हैं उनसे जुड़ा हुआ आज के दिन।

तेरे मेरे सपने इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में आप इस गीत को सुन रहे थे। और साथियों, मुरली की तान पर जो सबको नचाए वो सांवला सलोना कृष्ण ही कहलाए। आप सबको तैयारी करने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं जन्माष्टमी पर्व की, और इसी के साथ दीजिए अनुमति, नमस्कार। घर आंगन आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन। घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे पहले आज सुबह बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बेल्जियम के प्रधानमंत्री भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल रात राजधानी पहुंचे। प्रधानमंत्री डी वेवर के साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री फ्रैंकन भी आए हैं। पिछले वर्ष फरवरी में पद संभालने के बाद ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश शासन आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान ये बात कही।
1: ये दौर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का रहा है। इन परिस्थितियों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उनका मजबूती से सामना किया। ऐसे समय में आपके जैसे मित्र और महत्वपूर्ण साझेदार से मुलाकात विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। भारत और बेल्जियम के बीच लंबे समय से मजबूत संबंध रहे हैं। ये संबंध आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और साझा प्रतिबद्धताओं पर आधारित है।
0: बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने भारत को अधिक जनसंख्या तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया। उन्होंने भविष्य की परियोजनाओं के लिए बेल्जियम के साथ सहयोग करने

मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि रूस के भीतर यूक्रेन के हमलों और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का रूस की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। श्री रूबियो ने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन ऐसी व्यवस्था पर बातचीत कर रहे हैं जिनसे यूक्रेन उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों का उत्पादन कर सके। श्री रूबियो ने यह बात कल एक साक्षात्कार में रूस के ईरान को समर्थन और यूक्रेन में जारी युद्ध पर चर्चा के दौरान कही। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन रूस के भीतर सैन्य और ऊर्जा से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए लंबी दूरी के ड्रोन और अन्य हथियारों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर बाद मिला जुला असर देखा गया। सेंसेक्स 19 अंक बढ़कर 76,588 पर और निफ्टी 6 अंक घटकर 23,908 पर रहा। क्षेत्रीय स्तर पर रियल एस्टेट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और पूंजीगत वस्तुएं प्रमुख लाभ कमाने वाले क्षेत्र रहे। महिला एशिया कप 2023 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में रविवार को भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। श्रीकांत ने विश्व के 9वें नंबर के खिलाड़ी कनाडा के विक्टर लाई को हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, नरसिम्हा फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने तैयार किया था और गाने के बोल जावेद अख्तर ने लिखे थे। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार लगभग 18 लाख यूनिट बिकने के साथ इस फिल्म का साउंडट्रैक उस वर्ष का 10वां सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम था। इस फिल्म में सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया की जोड़ी जबरदस्त साबित हुई, जिसकी वजह से उन्होंने खूब सराहना मिली। पर ओम पुरी जी की बात ही कुछ अलग थी। खलनायक की भूमिका निभाते हुए ओम पुरी जी ने बुराई को एक अविस्मरणीय चेहरा दिया। मतलब एक्टिंग ऐसी कि किसी को भी देखकर विलन पर गुस्सा आ जाए। श्रोताओं, यही तो होती है असली एक्टिंग, जो किसी भी रोल में रम जाए। और इसी वजह से 37वें फिल्मफेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए ओम पुरी जी ने ये अवार्ड भी जीता।

श्रोताओं, नरसिम्हा फिल्म की कहानी एक सीधे साधे मध्यम वर्गीय युवक नरसिम्हा यानी सनी देओल के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका परिवार एक सांप्रदायिक दंगों में मारा जाता है। इस हादसे के बाद वो टूट जाता है और शराब व अपराध की दुनिया में कदम रख देता है। वो शहर के सबसे ताकतवर और भ्रष्ट जमींदार बाबजी यानी ओमपुरी का सबसे खास यानी राइट हैंड बन जाता है। परिवार को खोने के बाद उसमें इंसानियत और इमोशंस नहीं बचती और वो बुराई की दुनिया में कदम रख देता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब नरसिम्हा की मुलाकात अनीता यानी डिंपल कपाड़िया से होती है और उसकी सोई हुई इंसानियत वापस जाग उठती है, खासकर कि तब जब बाबजी अपनी बेटी मीनू और उसके प्यार रवि जो अनीता का भाई है उसे मारने का ऑर्डर देता है। जब नरसिम्हा को पता चलता है कि उसके परिवार को मारने वाले दंगे के पीछे खुद बाबजी का ही हाथ था, तो वो बाबजी के खिलाफ बगावत करता है और बदला लेता है। अंत में मीनू और रवि एक हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ नरसिम्हा और अनीता भी एक हो जाते हैं।

श्रोताओं, फिल्म नरसिम्हा में बाप जी की बेटी मीनू के किरदार के लिए पहले आयशा झुलका को चुना गया था, जो उनकी पहली फिल्म होने वाली थी, लेकिन बाद में उनकी जगह राजेश्वरी सचदेव को लिया गया। ये फिल्म राजेश्वरी की भी पहली फिल्म होने वाली थी। उन्होंने कुछ दिनों तक शूटिंग की, लेकिन शूटिंग के दौरान उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया, जिस वजह से उनकी जगह उर्मिला को ले लिया गया। श्रोताओं, ये दूसरी बार था जब उर्मिला ने सनी देओल के साथ काम किया था। इससे पहले उन्होंने 1987 में रिलीज हुई फिल्म डकैत में उनके साथ काम किया था।

अब जी जब नरसिम्हा को एक खंभे में चुनवा देता है, तब सनी देओल उस भारी खंभे को चीरते हुए गुस्से में बाहर निकलते हैं और बापजी के पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर देते हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में हमें हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है और फिल्म का अंत हो जाता है जहां अच्छाई की जीत होती है।

इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आशा करती हूँ फिल्म से जुड़ी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। अब अपनी होस्ट और दोस्त रिया को दीजिए अनुमति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दिया खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने बेल्जियम दे हमरुतबा बार टीवेवर नाल नवी दिल्ली विच दोहली गलबात कई समझौतियां दे दस्तखत। भारत ते बेल्जियम रखिया सहयोग गलबात उच्च पदरी दौरिया सिखलाई अते समर्था निर्माण राही दोहले संबंधा नूं वधाउण ते सहमत होए। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने न्यूयॉर्क विच निवेशकां सामने भारत दे सुधार आधारित विकास दी चर्चा कीती। फ्रांस अते भारत ने टैक्सटाइल अते फैशन खेतरां विच सहयोग नूं मजबूत करन लई पैरिस विच समझौतियां दे दस्तखत कीते। ते बैडमिंटन विच भारत दे किदांबी श्रीकांत चाइना मास्टर सुपर 750 टूर्नामेंट दे मर्दां दे सिंगल्स दे क्वार्टर फाइनल विच पहुंच गए ने। भारत ते बेल्जियम ने अज कई समझौतियां दा वटांदरा कीता जिस विच रक्षा सहयोग ते इरादा पत्तर अते नवीआउणयोग ऊर्जा साइबर अपराध अते कूटनीतिक सिखलाई दे खेतरां विच समझौते शामिल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज दुपहरे नवी दिल्ली विच अपने बेल्जियम दे हमरुतबा बार्ट डी वेवर नाल दवली गलबात कीती। दोवां नेतावां ने दवले संबंधां दे समुच्चे दायरे दे नाल नाल आपसी हित दे खेतरी अते आलमी मुद्दिआं ते चर्चा कीती। पहला सवेरे बेल्जियम दे प्रधानमंत्री महात्मा गांधी नूं श्रद्धांजलि देण लई राजघाट गए। बेल्जियम दे प्रधानमंत्री भारत दे 3 दिना दौरे ते कल रात राजधानी पहुंचे। प्रधानमंत्री डी वेवर दे नाल बेल्जियम दे रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी ने। पिछले साल फरवरी विच अहुदा संभालण तों बाद इह उहनां दी भारत दी पहली यात्रा है। उह भारत यूरपीन यूनियन मुक्त व्यापार समझौते दे संदर्भ विच भारतीय समिति संघ दे व्यापारक समागम विच मुख भाषण भी देणगे। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਦੌਰਾ ਭਾਰਤ ਬੈਲਜੀਅਮ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अज कहा कि भारत ते बेल्जियम आपसी सत्कार, लोकतंत्री कदरां कीमतां अते नियम आधारित विश्व व्यवस्था प्रति सांझी वचनबद्धता ते आधारित निघिया ते लंबे समय तों चल रहे संबंध सांझे करदे ने। मंत्री ने गल नवी दिल्ली विच बेल्जियम दे रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन नाल आपणी वफद पत्री गलबात दौरान कही। श्री सिंह ने कहा कि दुनिया वड्डी भूसियासी अते आर्थिक उथल पुथल दा समां

0: ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
1: ये दौर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का रहा है। इन परिस्थितियों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उनका मजबूती से सामना किया। ऐसे समय में आपके जैसे मित्र और महत्वपूर्ण साझेदार से मुलाकात विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। भारत और बेल्जियम के बीच लंबे समय से मजबूत संबंध रहे हैं। ये संबंध आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और साझा प्रतिबद्धताओं पर आधारित है।
0: ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਥਿਓ ਫ੍ਰੈਂਕਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
2: भारत और बेल्जियम मित्रता साझेदारी के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। हम भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बेल्जियम एक तकनीकी रूप से विकसित देश है और उन्नत तकनीक हमारे लिए खासकर यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश के साथ भविष्य की परियोजनाओं में सहयोग हमारे लिए बेहद जरूरी है।
0: मीटिंग दौरान दोवें मंत्री रक्षा सहयोग गलबात उच्च पदरी दौरिया सिखलाई ते समर्थन निर्माण रही दवली संबंधा नु वधाउण ते सहमत हुए। दोवां नेतावां ने खेतरी शांति ते सुरक्षा दे मुद्दिआं ते वी चर्चा कीती अते हिंद प्रशांत विच समुद्री सुरक्षा सहयोग दी जरूरत नु स्वीकार कीता। उन्हां दोहराया कि भारत अते बेल्जियम विचकार पाई वाली आपसी विश्वास अते सत्कार ते सांझे कदरां कीमतां ते आधारित है। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने न्यूयॉर्क में एक उच्च पदरी व्यापारिक कॉन्फ्रेंस में निवेश का सामने भारत के सुधार आधारित विकास से चर्चा की थी। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश के 7.8% आर्थिक विकास और सुधर रहे निवेश माहौल को उजागर किया। खजाना मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैंक ऑफ अमेरिका के सहयोग नाल भारतीय व्यापारिक कौंसल खाने ने कॉन्फ्रेंस कराई। इस मौके पर बोलते हुए खजाना मंत्री ने कहा कि आलमी रुकावटों और चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की सब तो तेजी नाल वध रही प्रमुख आर्थिकता बनिया होया है। उन्होंने इंसोलवेंसी अते दिवालियापन कोड समेत कई सुधारों नु भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन विच इन्हां उपावां ने नियम बद्ध स्थिरता बताई है, पालना नु सौखा बनाया ते कागजी कार्रवाई नु घटाया है। खजाना मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने हवाबाजी खेतर ते ध्यान केन्द्रित करते हुए पूंजीगत संपत्ति निर्माण अते बुनियादी ढांचे के विकास नु मजबूत किया है अते एक सुखावे निवेश माहौल नु उत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि होर मुख खेतरां विच आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस अते डेटा सेंटरां नु उत्साहित करना, आलमी समर्था केंद्रा की हिमायत करना, सूखम छोटे ते दरमियाने उद्यमां नूं कर्जा उपलब्धता यकीनी बनाउणा अते बैंकां दीआं गैर कारगुजारी वालीआं जायदादां नूं घटाउणा शामिल है। अमरीका विच भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा ने कहा कि 2026-27 की पहली तिमाही विच भारत की विकास दर 7.8% सी, जो कि दर्शाती है कि भारत दुनिया की सब तो तेजी नाल वध रही आर्थिकता है। उन्होंने कहा कि जिवें जिवें भारत एक विकसित देश बनने के अपने टीचे वल वध रहा है, यह अमरीकी कारोबार निवेशकों और संस्थावां नाल एक मजबूत भाईवाली की उम्मीद करता है। श्री क्वात्रा ने यह गल भारत सरकार और खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन वालों न्यूयॉर्क विच अमरीका के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज के व्यापार सैशन की शुरुआत करदिया कही। एक खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो, साडा एक्स हैंडल है @EIRRN जलंधर। भारत अते फ्रांस ने टैक्सटाइल अते फैशन खेतरां विच सहयोग नूं मजबूत करन लई पैरिस विच समझौतियां ते दस्तखत कीते। इस उद्देश विश्व बाजारां विच भारतीय टैक्सटाइल अते हुनरां नूं उत्साहित करना है। इंडिया टैक्स ट्रेड फैडरेशन अते प्रीमियर विजन सोसायटी एनानम ने टैक्सटाइल मंत्रालय दे सकत्तर नीलम शमी राव दी मौजूदगी विच समझौते ते दस्तखत कीते। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਿਜਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਨਾਨਿਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਵਪਾਰ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਥਖੱਡੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਿਜਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵੀਨਤਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਨੰਬਰ ਇਕ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸਨਅਤ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਸ ਦੇ 66ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਜਿਸਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁੱਲ 22.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 15% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 4 ਕਰੋੜ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

0: नंबर एक दर्जा हासिल करने की सलाहियत रखता है। नई दिल्ली में भारतीय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर की सोसाइटी SIAM की सालाना मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि ये शोबा, जिसकी मौजूदा कदर 22,75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, मुल्क की GST में तकरीबन 15% का तआवुन देता है और तकरीबन 4 करोड़ बराह रास्त और बिलवास्ता मुलाजमतें पैदा करने में मदद देता है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि 2025-26 के दौरान भारत की ऑटोमोबाइल बरामदात में 24% का इजाफा हुआ। मरकजी वजीर ने इस बात पर एतमाद का इजहार भी किया कि भारत की इक्तिसादी तरक्की में सनत का तआवुन जारी रहेगा। बैडमिंटन में भारत के मशहूर खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत कनाडा के आलमी नंबर 9 खिलाड़ी विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल जुमरे के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अगले मैच में श्रीकांत का मुकाबला हांगकांग के ली च्यूक यी से होगा। उधर खवातीन सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने अच्छे खेल का मुजाहिरा किया, लेकिन वो जापान की टोमोका मियाजाकी से 17-21, 21-18 और 16-21 से हार गईं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और बेल्जियम ने आइंदा 5 बरस में दो तरफा तिजारत को दोगुना करने से इत्तफाक किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के अपने हम मनसब बार डे वेवर के साथ दो तरफा ताल्लुकात के वसीतर पहलुओं पर बातचीत की। काबिले तजदीद तवानाई, साइबर जराइम और सिफारती तरबियत के शोबों में मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बेल्जियम के उनके हम मनसब थियो फ्रेंकन ने बातचीत आला सतही दौरों और सलाहियत साजी के जरिए बाहमी दिफाई ताल्लुकात को वसत देने का आजम किया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने न्यूयॉर्क में आला सतही कारोबारी गोलमेज में सरमायाकारों से मुलाकात की। उन्होंने ये बात दोहराई कि आलमी उथल पुथल और चैलेंजों के बावजूद भारत की तवज्जो इक्तिसादी तरक्की पर है। बिहार में दरियाए गंगा में पानी की सतह में इजाफा हो गया है, जिससे नए इलाकों में सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। और बैडमिंटन में शेंजेन में भारत के किदाम्बी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स के मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. India and Belgium agree to double bilateral trade in the next 5 years. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Belgian counterpart Bart De Wever in New Delhi. Agreement signed in areas of renewable energy, cyber crime and diplomatic training. Defence Minister Rajnath Singh and his Belgian counterpart Theo Franken commit to expanding bilateral defence ties through dialogue, high-level visits and capacity building. Finance Minister Nirmala Sitharaman meets investors at high-level business roundtable in New York, highlights government's focus on artificial intelligence, data centres and global capability centers. In Bihar, water level in Ganga River rises, increasing flood threat in new areas. And in badminton, Kidambi Srikanth beat Victor Lai of Canada to enter men's singles quarterfinals of China Masters in Shenzhen. India and Belgium today exchanged several agreements, including letter of intent on defence cooperation and MOUs in the fields of renewable energy, cybercrime and diplomatic training. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with his Belgian counterpart Bart De Wever in New Delhi this afternoon. Both leaders discussed the entire spectrum of bilateral relations as well as regional and global issues of mutual interest. In his press statement, Prime Minister Modi stated that shared democratic values, market economy and people-to-people ties make India and Belgium natural partners. Mr. Modi recalled that he visited Belgium 10 years ago and expressed pleasure that the partnership has made remarkable progress over the past decade. The Prime Minister said both countries will achieve doubling of trade in the next 5 years.
2: हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे. फ्रेंड, रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है. आज हमने दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई है. हमारी सरकारों और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच हुए एग्रीमेंट से डिफेंस को डेवलप और को प्रोडक्शन के नए

0: telephone to obtain detailed information. He inquired about the arrangements being made in relief camps. The Prime Minister directed that flood relief operations be continuously monitored and that immediate relief be provided to those affected. Chief Minister Yogi Adityanath also conducted aerial survey of the flood-affected areas of Farrukhabad district. The Indian Meteorological Department has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over East Madhya Pradesh tomorrow. The Met Department predicted heavy rainfall with thunderstorms and lightning over Bihar, East Rajasthan, Subhimalayan, West Bengal, Sikkim, Uttarakhand and Madhya Pradesh tomorrow. In badminton, Kidambi Srikanth stunned world number 9 Victor Lai of Canada in straight games to enter the men's singles quarterfinals of the China Masters Super 750 badminton tournament in Shenzhen today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Belgium agree to double bilateral trade in next 5 years. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Belgian counterpart in New Delhi. Agreements signed in areas of renewable energy, cybercrime and diplomatic training. Defence Minister Rajnath Singh and his Belgian counterpart commit to expanding bilateral defence ties through dialogue, high-level visits and capacity building. Finance Minister Nirmala Sitharaman meets investors at high-level business roundtable in New York, highlights government's focus on artificial intelligence, data centres and global capability centres. In Bihar, water level in Ganga River rises, increasing flood threat in new areas. And in badminton, Kidambi Srikanth beat Victor Lai of Canada to enter men's singles quarterfinals of China Masters in Shenzhen. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता की दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर किए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री टेओ फ्रॉन्कन ने संवाद उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की उन्होंने एआई डेटा केंद्रों और वैश्विक क्षमता केंद्रों पर सरकार का दृष्टिकोण दोहराया बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ा और किदाम्बी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे अब समाचार विस्तार से भारत और बेल्जियम ने नवीकरणीय ऊर्जा साइबर क्राइम और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन और रक्षा सहयोग पर आशय पत्र सहित विभिन्न समझौतों का आदान प्रदान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है फूड फ्यूल या सप्लाई चेन हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत और बेल्जियम के संबंध दीर्घकालिक हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में बेल्जियम में हजारों भारतीय सैनिकों का साहस और बलिदान दोनों देशों की साझा स्मृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वो 10 साल पहले बेल्जियम गए थे और पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच भागीदारी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है
2: पिछले एक दशक हमारी साझेदारी ने उल्लेखनीय प्रगति की है आज हमारे सहयोग का दायरा ट्रेडिशनल सेक्टर से आगे बढ़कर डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों तक पहुंच चुका है हम जोरावर टैंक जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट में से एक डेवलप कर रहे हैं
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला दोनों देशों की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आज हुए समझौता ज्ञापन से सतत सहयोग को नई गति मिलेगी।

0: रिन्यूएबल एनर्जी पर आज हुआ एमओयू हमारे सस्टेनेबिलिटी सहयोग को नई गति देगा। क्रिटिकल मिनरल्स में हमने प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। सेमीकंडक्टर्स में बेल्जियम की एक्सपर्टाइज और भारत का स्केल एक दूसरे के पूरक है। इस दिशा में हम बेल्जियम के आईमेक इंस्टीट्यूट को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे।
1: वार्ता में भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। इससे पहले बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने आज सुबह राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। वो 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही।
2: The world is witnessing a time of great...
3: ये दौर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का रहा है। इन परिस्थितियों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उनका मजबूती से सामना किया। ऐसे समय में आपके जैसे मित्र और महत्वपूर्ण साझेदार से मुलाकात विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।
1: बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने भारत को घनी आबादी तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच मित्रता को और आगे ले जाने की भी बात कही।
4: भारत और बेल्जियम मित्रता साझेदारी के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। हम भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बेल्जियम एक तकनीकी रूप से विकसित देश है और उन्नत तकनीक हमारे लिए खासकर यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश के साथ भविष्य की परियोजनाओं में सहयोग हमारे लिए बेहद जरूरी है।
1: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग संवाद, उच्च स्तरीय यात्राओं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के जरिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर News on AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रमुख क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा केंद्रों को बढ़ावा देना, वैश्विक क्षमता केंद्रों का समर्थन करना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना और बैंकों के निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करना शामिल है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने कहा है कि 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही है। ये दर्शाती है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। श्री क्वात्रा ने भारत सरकार और वित्त मंत्री सीतारामन की ओर से न्यूयॉर्क में अमेरिका के प्रमुख शेयर बाजार नैसडैक के कारोबारी सत्र का शुभारंभ करने पर ये बात कही। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 7.8% की वृद्धि हासिल करने में लघु और मध्यम उद्यम उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। उन्होंने नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौता एफटीए आउटरीच कार्यक्रम पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में ये बात कही। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नवाचार, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतों के बल पर भारत में विश्व की नंबर एक

0: ऑटोमोबाइल उद्योग बनने की क्षमता है। उन्होंने नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 66वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देश की आर्थिक वृद्धि में इस उद्योग का योगदान लगातार बढ़ता रहेगा।
1: ऑटोमोबाइल उद्योग का कुल आकार करीब 22,75,000 करोड़ रुपए है। देश के कुल जीएसटी संग्रह में ऑटोमोबाइल उद्योग का योगदान लगभग 15% है। यह उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। वर्ष 2025-26 ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान उद्योग के निर्यात में 24% की वृद्धि दर्ज की गई।
0: श्री गडकरी ने भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम को एक बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि 11 कंपनियों के 30 से अधिक वाहन मॉडल पहले ही प्रमाणित हो चुके हैं। इस कार्यक्रम ने प्रशिक्षण लागत को काफी कम कर दिया है, साथ ही वैश्विक बाजारों में भारतीय वाहनों की विश्वसनीयता को भी मजबूत किया है। उन्होंने घोषणा की कि इस कार्यक्रम का दूसरा चरण अगले वर्ष अक्टूबर से प्रभावी होगा, जिसमें दुर्घटना से बचाव, पैदल यात्री सुरक्षा और दुर्घटना के बाद निकासी सहित उन्नत सुरक्षा मानक शामिल होंगे। श्री गडकरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए हाल ही में स्वच्छ परिवहन के लिए शुरू की गई परिवर्तन योजना के बारे में जानकारी दी। पंजाब में सरकारी शवगृहों में रखे अज्ञात और लावारिस मृतकों की पहचान के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक पहचान पोर्टल पहचान शुरू किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: ये देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है जो भारत और विदेश में रहने वाले लोगों को दुर्घटनाओं या अन्य कारणों से जान गंवाने वाले अपने प्रियजनों की पहचान करने में मदद करेगा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अकेले पंजाब में लगभग 5 से 6 हजार मृतकों की पहचान नहीं हो पाती है। पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कल इस पोर्टल की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि पहचान पहल के अंतर्गत पंजाब के किसी भी सरकारी शवगृह में पोस्टमार्टम के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक ज्ञात और लावारिस शव की चेहरे की तस्वीर, जन्म चिन्ह और शारीरिक विकृतियों जैसे चिन्हों के साथ उसका विस्तृत शारीरिक विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। राज्य के सभी 23 जिले और 346 सरकारी अस्पताल इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। जलंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। बिहार में पटना और कई अन्य जिलों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इससे नए इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
4: आपदा प्रबंधन विभाग ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पटना के गांधी घाट पर आज रात और मोकामा के हाथीदह में कल दोपहर गंगा का जलस्तर उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर सकता है। भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद के नदी किनारे तथा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जोखिम से बचने की अपील की गई है। आपात स्थिति में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के 1070 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: वहीं झारखंड में भी पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश के बाद कई हिस्सों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है।
5: रांची में गेतलसूर डैम के 4 रेडियल गेट खोले गए हैं, जबकि स्वर्ण रेखा नदी के तेज बहाव को देखते हुए हुंडरू फॉल और नदी किनारे के इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जमशेदपुर में कल शाम मानगो पुल के पास स्वर्ण रेखा नदी का जलस्तर 121.26 मीटर दर्ज किया गया, जबकि आदित्यपुर पुल के पास खरकई नदी 129.76 मीटर पर बह रही थी। हालांकि मंगलवार की तुलना में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन खरकई नदी अब भी खतरे के निशान से 7-6 सेंटीमीटर ऊपर है। प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और किसी भी स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फर्रुखाबाद जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की और बाद में प्रभावित लोगों को जमीन के पट्टे और राहत सामग्री बांटी। इस बीच मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र

उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर बाद मिला जुला असर देखा गया। सेंसेक्स 19 अंक बढ़कर 76,590 पर और निफ्टी 6 अंक घटकर 23,908 पर पहुंच गया। और अब बात खेलों की। किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत का सामना हांगकांग के ली चेक ल्यू से होगा। उधर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच दुबई में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता की। दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन ने संवाद, उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा। और किदांबी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त अर्चना गोयल। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साथियों, संगीत की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें अलग अलग सुनना मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी पहचान ही एक दूसरे के साथ जुड़कर बनी होती है। और वो जुड़ी है संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल। लेकिन आज हम इस मशहूर जोड़ी की बात थोड़ी अलग तरह से करेंगे। आज हमारी कहानी का केंद्र है प्यारेलाल शर्मा के प्यारेलाल, जिनके हाथ में वायलन था, जिनकी उंगलियों में सुर थे और जिनके सामने बैठा पूरा ऑर्केस्ट्रा मानो उनकी धुन पर सांस लेता था।

1963 में आई फिल्म पारस मणि से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीतकार जोड़ी ने फिल्म संगीत की दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बनानी शुरू की। फिल्म के गीत वो जब याद आए और हंसता हुआ नूरानी चेहरा बेहद लोकप्रिय हुए, लेकिन इस सफलता के पीछे केवल धुन बनाने की कला नहीं थी, इसके पीछे था वर्षों का अभ्यास, संगीत की गहरी समझ और ऑर्केस्ट्रेशन पर अद्भुत पकड़। प्यारे लाल शर्मा का जन्म 3 सितंबर 1940 को हुआ। उनके पिता पंडित राम प्रसाद शर्मा स्वयं प्रसिद्ध संगीतकार और ट्रम्पट वादक थे, पिता ही उनके शुरुआती गुरु बने। कहा जाता है कि

जरा सोचिए, एक बच्चा जो घंटों वायलिन का अभ्यास करता है, उसे शायद तभी अंदाजा नहीं रहा होगा कि आने वाले वर्षों में उसी वाद्य यंत्र की साधना उसे भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास के सबसे बड़े नामों में शामिल कर देगी। जानते हैं आप, उन्होंने वायलिन की शिक्षा महान संगीतज्ञ एंथनी गोंजाल्विस से प्राप्त की थी, और उन्होंने फिल्म अमर अकबर एंथनी फिल्म में अपने गुरु एंथनी के नाम से गीत बनाकर उनको समर्पित किया। इसी कारण वे ऑर्केस्ट्रा पर भी अपनी पकड़ बना सके।

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और हमारे आज के कलाकार हैं प्यारे लाल, और आज मैं आपके साथ हूं अर्चना गोयल। दोस्तों, प्यारे लाल की जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही। कम उम्र में ही उन्हें वायलिन बजाकर परिवार की मदद करनी पड़ी। स्टूडियो से ही उन्हें फिल्म संगीत की वास्तविक दुनिया को करीब से देखने का मौका मिला। वाद्य यंत्र, रिकॉर्डिंग, गायक, संगीतकार और ऑर्केस्ट्रा, इन सब के बीच उनका अनुभव लगातार बढ़ता गया। इसी बीच उनके जीवन में लक्ष्मीकांत आए। दोनों की उम्र लगभग आसपास थी। दोनों ने संघर्ष देखा था और दोनों में ही संगीत के लिए जुनून था। दोस्ती हुई, संगीत का रिश्ता बना और आगे चलकर यही दोस्ती भारतीय फिल्म संगीत की यादगार जोड़ियों में बदल गई। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, करीब 4 दशक तक ये जोड़ी फिल्म संगीत पर छाई रही। दोस्ती, मिलन, दो रास्ते, बॉबी, कर्ज, प्रेम रोग, हीरो, रोटी, कपड़ा और मकान, तेजाब, रामलखन, खलनायक जैसी फिल्मों के संगीत ने अलग अलग पीढ़ियों के श्रोताओं को अपना दीवाना बना दिया।

0: कहिए, क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें

लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल की जोड़ी की सबसे खूबसूरत बात शायद यही रही कि दोनों एक दूसरे की कमी पूरी करते थे। प्यारे लाल ने एक इंटरव्यू में अपने और लक्ष्मीकांत के रिश्ते को याद करते हुए कहा था कि दोनों की पहचान एक दूसरे के बिना अधूरी है। यही साझेदारी उनकी सफलता का बड़ा राज थी। लक्ष्मीकांत की धुन, प्यारे लाल ऑर्केस्ट्रेशन और दोनों मिलकर एक ऐसा संगीत रचते थे कि जिसे आज भी सुनते ही पुराने दिनों की खुशबू आने लगती है। प्यारे लाल जी ने एक बातचीत में कहा भी था कि संगीत को अच्छा या बुरा कहने के बजाय ये समझना चाहिए कि अलग अलग समय में संगीत की शैली बदलती है। उनके लिए संगीत खूबसूरत था जैसे रिश्ते खूबसूरत होते हैं। कितनी खूबसूरत सोच है ना।

के लंबे और महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1998 में लक्ष्मीकांत के निधन के बाद प्यारेलाल ने सक्रिय रूप में बहुत कम फिल्म संगीत किया, लेकिन संगीत से उनका रिश्ता कभी खत्म नहीं हुआ। फिल्म ओम शांति ओम के गीत धूम ताना धूम के ऑर्केस्ट्रेशन में भी उनका योगदान रहा। उम्र बड़ी, समय बदला, संगीत की तकनीक बदली, लेकिन प्यारेलाल के हाथों में संगीत की कमान बनी रही। प्यारेलाल के परिवार आज भी चकाचौंध से दूर सादगी भरा जीवन जीता है।

दोस्तों, आज की संगीतमय मुलाकात में हमने जाना उस कलाकार को जिसने सिर्फ धुनों को सजाया नहीं, बल्कि धुनों के पीछे एक पूरा संसार खड़ा किया। जिसके हाथ में वायलिन था, जिसके सामने ऑर्केस्ट्रा था, और था एक ऐसा दोस्त जिसका नाम था लक्ष्मीकांत। दो नाम, एक पहचान। कहते हैं संगीत खत्म नहीं होता, बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचता रहता है। प्यारे लाल के सुर आज भी हमारे साथ हैं।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं मैटनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। मैटनी मेलोडीज में मैं अर्चना गोयल आपके साथ। दोस्तों, वो दौर जहां वक्त की सुइयां हमें लाती हैं, उस दौर में जब फिल्मों के गीत सिर्फ गीत नहीं हुआ करते थे बल्कि लोगों की यादों का हिस्सा बन जाया करते थे। 60 का दशक हिंदी सिनेमा के संगीत का ऐसा सुनहरा दौर जिसमें शंकर जयकिशन, एस डी बर्मन, मदन मोहन, रोशन रवि, ओपी नैयर जैसे संगीतकारों ने ऐसी धुनें तैयार की जो आज भी सुनते ही दिल कह उठता है, अरे ये गीत तो हमारे ज़माने का है। तो आइए कुछ ऐसे ही सदाबहार नगमों के साथ शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म वीर दुर्गादास से, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की।

और अब बारी है उपेन नैयर साहब के संगीत निर्देशन में आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में 1962 में आई फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गीत। ऐसा गीत जिसमें नोकझोंक भी है, मुस्कान भी है और रोमांस भी, और ये गीत सुनते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उस दौर में गीतों में प्रेम को जिस खूबसूरत शरारत के साथ पेश किया जाता था उसका शानदार उदाहरण है ये गीत। ओपी नैयर के संगीत में पंजाबी लोक धुनों और पश्चिमी वाद्य यंत्रों का प्रभाव भी खूब सुनाई देता था।

दोस्तों आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक ऐसा गीत जिसमें तारीफ भी है, मोहब्बत भी है और शायरी की नज़ाकत भी है। इस गीत में महबूब की खूबसूरती की तुलना चांद से की गई है, लेकिन अंदाज़ इतना नर्म और शालीन है कि हर पंक्ति दिल को छू जाती है। रफ़ी का संगीत और रफ़ी साहब की आवाज़ मिलकर ऐसा असर पैदा करते हैं कि गीत सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई महफिल सजी हो और सामने कोई ख़ास शख्स बैठा हो।

और अब बात उस एहसास की, जब कोई दूर चला जाए और उसकी यादें हर पल साथ रहने लगे। ये गीत याद और इंतज़ार की भावनाओं को बेहद खूबसूरती के साथ रखता है। लता और रफ़ी की आवाज़ों में छिपी कोमलता इसे और भी असरदार बना देती है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मधुर धुन और गीत के सरल शब्द सीधा दिल से जुड़ते हैं। यही तो पुराने गीतों की खासियत थी, वे किसी एक कहानी के नहीं हर दिल की कहानी बन जाया करते थे।

आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज और मैं हूं आज आपके साथ अर्चना गोयल। और अब सुनते हैं एक ऐसी धुन जिसे सुनते ही लगता है जैसे किसी ने प्रेम को बड़े नफासत से शब्द दे दिए हों। मदन मोहन को अक्सर गजल नुमा धुनों के लिए याद किया जाता है। उनकी धुनों में एक खास नज़ाकत थी, जैसे संगीत को बहुत धीरे से छुआ गया हो। और लता मंगेशकर की आवाज़, वो आवाज़ जो भावनाओं को सिर्फ गाती नहीं थी, उन्हें महसूस करा देती थी। ये गीत हमें उस दौर में ले जाता है जब प्यार का इजहार आंखों से भी हो जाता था और कभी कभी सचमुच एक नज़र पूरी कहानी कह देती थी।

0: और अब एक गीत जो माहौल में कश्मीर की ठंडी हवा घोल दे। शम्मी कपूर का अंदाज, शर्मिला टैगोर की खूबसूरती और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब की। शम्मी कपूर के मसमौला अंदाज के साथ रफ़ी साहब की आवाज़ का जो मेल बना, उसने हिंदी सिनेमा के रोमांस को एक नया रंग दिया। ओपी नैयर के संगीत में लय इतनी जीवंत होती थी कि गीत सुनते ही मन अपने आप झूमने लगता था।
1: ये चांद सा रोशन चेहरा।

दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं एक ऐसा गीत जिसमें मिल जाने की खुशी है। 60 के दशक की फिल्मों में प्रेम कहानी अक्सर गीतों के सहारे आगे बढ़ती थी। नायक नायिका के बीच जो बात संवाद भी नहीं कही जाती थी, वो गीत कह देता था। इस गीत की धुन में वही खुशी है जैसे जिंदगी को अचानक अपना साथी मिल गया हो।

और हम आज की इस संगीत यात्रा को एक खूबसूरत एहसास के साथ विराम देते हैं। कहते भी हैं कि कुछ गीत वक्त के साथ पुराने नहीं होते, वो वक्त को ही अपने साथ पुराना कर देते हैं। इसी खूबसूरत सोच के साथ आज के मैटनी मेलोडीज से मुझे यानी अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे एक और दौर की यादों के साथ, कुछ और सदाबहार धुनों के साथ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

शायरी गजल एक छोटा सा लफ्ज लेकिन अपने अंदर हजारों रंगीनियां समेटे हुए। गजल वो सिंफे सुखन है जो रूह तक को मसरूर कर देती है और हमें अपने इर्द गिर्द कौसे कजा के रंग बिखरे हुए महसूस होते हैं और रूह को सुकून देने

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 4 बजने को है। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। भारत और बेल्जियम ने आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें रक्षा सहयोग पर आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश और एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। भारत को एक बड़ी वैश्विक ताकत बताते हुए श्री वेवर ने आर्थिक और रणनीतिक मोर्चों पर आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं, जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने यह बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री तेओ फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में सेशेल्स विधानसभा की अध्यक्ष अजारेल अनेस्टा और सेशेल्स के संसदीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान श्री राधाकृष्णन ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित भारत सेशेल्स के अटूट मित्रता को दोहराया। उनकी चर्चा समुद्री सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री खाद्य सहयोग और क्षमता निर्माण में भारत सेशेल्स साझेदारी को मजबूत करने पर केन्द्रित थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के प्रबंधन और नियंत्रण पर चर्चा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान श्री यादव ने वायु प्रदूषण से निपटने के प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए समन्वित और केंद्रित हितधारक सहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने इस संबंध में वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि राहत कार्यों की लगातार निगरानी की जाए और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाई जाए। बिहार में पटना और कई अन्य जिलों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इससे इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। उधर झारखंड में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश के बाद कई हिस्सों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है।

0: over Thailand in Dubai on Sunday. A victory over Hong Kong will help the Harmanpreet Kaur-led side secure a place in the semi-finals of the ongoing 8-team tournament. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 4:10 हुए हैं। आइए आपको जानकारी देते हैं गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में। हुई युवती का पूरा नाम निशा कुमारी है, ये मोतीलाल महतो की पुत्री हैं, निवासी गांव वार्ड नंबर 14, दुमदुम्बा, जिला पश्चिम चंपारण, बिहार। इन्हें अंतिम बार दिनांक 30 अप्रैल 2026 को देखा गया। इनकी आयु 19 वर्ष है, हष्टपुष्ट शरीर है, रंग गोरा है एवं कद 5 फीट है। ये बिना बताए अपने घर से कहीं चली गई हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप SHO इंडस्ट्रियल सेक्टर 7 मानेसर गुरुग्राम से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा युवती का पूरा नाम गीता देवी है, ये संतोष अहिरवार की पुत्री हैं। इन्हें अंतिम बार 13 अगस्त 2026 को गांव कासन मानेसर में देखा गया। इनकी आयु 19 वर्ष है, पतला शरीर है, चेहरा गोल है एवं कद 5 फीट है। ये अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप SHO इंडस्ट्रियल सेक्टर 7 मानेसर गुरुग्राम से संपर्क कर सकते हैं। लापता युवती का पूरा नाम अंजलि है, ये ध्रुवपुरी की पुत्री हैं। इन्हें अंतिम बार दिनांक 10 अगस्त 2026 को गांव अलियर मानेसर में देखा गया। इनकी आयु 18 वर्ष है, पतला शरीर है, चेहरा गोल है एवं कद 5 फीट है। ये बिना बताए अपने घर से कहीं चली गई हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप SHO इंडस्ट्रियल सेक्टर 7 मानेसर गुरुग्राम से संपर्क कर सकते हैं। हुई हुई महिला का पूरा नाम प्राची है, ये रणवीर सिंह की पत्नी है। इनकी आयु 31 वर्ष है, पतला शरीर है, चेहरा लंबा है एवं कद 5 फीट है। इन्हें अंतिम बार दिनांक 7 अगस्त 2026 को गांव स्व मानेसर में देखा गया। ये अपने 7 वर्ष के बेटे आयुष और 8 वर्ष के बेटे अविनाश को लेकर अपने घर से कहीं चली गई हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप SHO इंडस्ट्रियल सेक्टर 7 मानेसर गुरुग्राम से संपर्क कर सकते हैं। लापता पुरुष का पूरा नाम रामचरण पितई हरिजन है, ये पितई हरिजन के पुत्र हैं। इन्हें अंतिम बार फ्लैट नंबर 270 सेक्टर 7 IMT मानेसर गुरुग्राम में देखा गया। इनकी आयु 50 वर्ष है, पतला शरीर है, रंग सांवला है, चेहरा लंबा है एवं कद 5 फीट है। ये बिना बताए अपने घर से कहीं चले गए हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप SHO इंडस्ट्रियल सेक्टर 7 मानेसर गुरुग्राम से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा युवती का पूरा नाम प्रीति कुमारी है, ये सुरेंद्र पासवान की पुत्री हैं, निवासी गांव नवकटवा, थाना रामगढ़वा, जिला मोतिहारी, बिहार। इन्हें अंतिम बार 23 मई 2026 को मानेसर में देखा गया। इनकी आयु 19 वर्ष है, पतला शरीर है, कद 5 फीट है एवं रंग सांवला है। ये बिना बताए अपने घर से कहीं चली गई हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप SHO इंडस्ट्रियल सेक्टर 7 मानेसर गुरुग्राम से संपर्क कर सकते हैं। लापता युवक का पूरा नाम प्रियांशु है, इन्हें अंतिम बार A35 दिल्ली में देखा गया। इनकी आयु 17 वर्ष है, शरीर की बनावट सामान्य है एवं कद 5 फीट है।

इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप SHO पुलिस स्टेशन मायापुरी न्यू दिल्ली से संपर्क कर सकते हैं। और अंत में खोई हुई युवती का पूरा नाम स्वाति है। ये वीर सहाय की पुत्री है, निवासी नगला खेड़ा, थाना नया गांव, जिला एटा, उत्तर प्रदेश, हाल पता गांव घाटा, जिला गुरुग्राम। इन्हें अंतिम बार गांव घाटा, जिला गुरुग्राम में देखा गया। इनकी आयु 19 वर्ष है, हष्ट पुष्ट शरीर है, रंग गेहुआ है, चेहरा गोल है, कद 5 फीट 3 इंच है। इनके माथे पर चोट का निशान है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप SHO पुलिस स्टेशन 56 गुरुग्राम से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 4:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: अरे भाई, किस और चली सवारी?
1: फिर से वहीं जहां रोज इस समय जाते हैं, युवानी की ओर, जहां हमारी आवाजें सभी युवाओं तक पहुंचती हैं।
0: बेशक, कहते हैं अच्छी शुरुआत मूड को भी अच्छा बना देती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना शुरुआत ही कुछ ऐसी करी जाए जहां मूड खुद ब खुद अच्छा हो जाए।
1: तो देर किस बात की, कॉफी हो या चाय, वॉल्यूम करो थोड़ा हाई, क्योंकि आज मैं वेदिका,
0: और मैं देविका।
1: हम दोनों जुड़ चुके हैं आज के युवानी के इस सुहाने सफर में। चलिए इसकी शुरुआत एक प्यारे से गाने से करते हैं।

0: हाय हाल कैसा है जनाब का,
1: क्या ख्याल है
2: आप? ये चांद सा रोशन चेहरा ला ला ला ला ला ला ला ला ला।
3: उफो, एक तो तुम गुनगुनाती बहुत हो, अब क्या गा रही हो?
2: ये चांद सा रोशन चेहरा।
3: लेकिन ये चेहरा आजकल इतना डल डल क्यों है?
2: अरे देविका, मैं अब तुम्हें क्या बताऊं, आजकल स्किन इतनी डल एंड ड्राई है कि इतनी क्रीम्स लोशन लगाए पर कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: उफ, बहुत सिंपल सी बात है, तुम्हारी बॉडी तुमसे तुम्हारा समय मांग रही है।
2: मतलब?
3: वेदिका, तुम्हारी बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है।
2: लेकिन मैं तो खाना भी अच्छे से खाती हूँ।
3: खाना तो सब अच्छे से ही खाते हैं, लेकिन तुम खाती क्या हो?
2: अरे जो सब खाते हैं, रोटी सब्जी चावल और बहुत कुछ।
3: बहुत कुछ? बहुत कुछ तो सभी खाते हैं।
2: अब तुम ही बताओ वे देविका, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर सब यही तो खाते हैं, इसमें नया क्या है?
3: तुम तो परेशान ही हो गई, मैं हूं ना।
2: थैंक गॉड तुम हो।
3: मैं हूं ना मूवी के गाने के बारे में डिमांड कर रही थी तुमसे।
2: वेरी फनी। चलो ठीक है, सुनते हैं मैं हूं ना के एक बढ़िया सा सॉन्ग।
3: बताऊंगी कि न्यूट्रिशन की कुछ खास बातें।

0: इस गाने के इंतजार का तो नहीं मालूम, लेकिन वेदिका, आपका इंतजार तो मैं अभी खत्म करती हूँ।
1: देविका, अब बहुत हो चुका, अब तो बता दो।
0: क्या बताना है?
1: अरे वो ही जो तुम इतनी देर से न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन बता रही हो।
0: अच्छा वो, चलो बता ही देती हूँ, पूछो क्या पूछना है।
1: जैसे तुमने बताया कि बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो इससे तुम्हारा क्या मतलब है?
0: वेदिका, हर बॉडी की अपनी स्पेसिफिक नीड होती है, उसको फुलफिल करने के लिए बॉडी को अलग अलग न्यूट्रिशन की नीड होती है।
1: अलग अलग जैसे कि क्या?
0: तुमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, इन सब का नाम सुना है?
1: हाँ, सुना ही है, ये सब तो होता ही है ना हमारे खाने में।
0: लेकिन ये सब में नहीं होता, हर खाने में अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसके जिसके कारण तुम्हारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाती है, जैसे आयरन, विटामिन, प्रोटीन की डेफिशिएंसी। लगता है ये इन्फॉर्मेशन अब काफ़ी है। चलिए अब अगले गाने की ओर बढ़ते हैं।

0: देविका ने भी दीवाने की तरह सच ही कहा है न्यूट्रिशन को लेकर। अब थोड़ा और बताओ ना न्यूट्रिशन के बारे में।
1: एक बैलेंस डाइट का मतलब है एक कलरफुल थाली। कलरफुल थाली का मतलब है वाइट राइस, रोटी, हरी सब्जियाँ, मिक्स दालें, कुछ बढ़िया से फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, कर्ड और खूब सारा सलाद। इतना ध्यान रख रहे हो तो बहुत है, लेकिन अगर थोड़ा और आगे जाना चाहो तो खाने के कुछ 40 मिनट बाद एक ग्लास पानी और एक बढ़िया सी वॉक और साथ में एक

0: अच्छी सी नींद। अरे आज इतना सब तुमसे जानने के बाद मैं तो बहुत इन्फॉर्मेटिव फील कर रही हूँ। अच्छा देविका, क्या तुम्हारे न्यूट्रिशन ड्राइव में क्या चाय भी पी सकते हैं क्या?
1: वैसे इस बीच चाय तो आती नहीं है, लेकिन एक चाय तो तुम्हारे साथ बनती है, लेकिन साथ में एक प्यारा सा गाना भी बनता है।

0: क्या तुम जो ले रही हो वो तुम्हारे शरीर तक पहुंच रहा है? ये सवाल मेरा तुमसे रह गया था विदिका।
1: अब इसका क्या मतलब?
0: ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो भी तुम डाइट ले रही हो उसके बेनिफिट तुम्हारे शरीर के किस हिस्से तक और कैसे पहुंच रहे हैं, ये तुम कैसे डिसाइड करती हो?
1: अरे डॉक्टर साहिबा, आप तुम ही बता दो, ये कैसे होता है? क्या इसको भी नापने के लिए कुछ स्किल्स चाहिए होती हैं?
0: नहीं, स्किल्स नहीं, इसको नापने के लिए बस तुम्हारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ ही काफी है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा डेली रूटीन क्या है?
1: अरे वही जो सबका होता है, उठना, रेडी होना और इवनिंग में फ्रेंड्स के साथ कैचअप करना।
0: अरे रुको रुको, ये सारे रूटीन में एक भी बार तुमने किसी एक्सरसाइज, जिम या स्पोर्ट्स की बात की ही नहीं।
1: हाँ, मैं कभी कभी स्पोर्ट्स खेलती हूँ, जस्ट लाइक बैडमिंटन, पर जिम और एक्सरसाइज करने का वक्त ही नहीं मिलता।
0: जितना मेंटली फिट होना जरूरी है, उतना फिजिकली फिट होना भी बहुत जरूरी है।
1: चलो, फिजिकल हेल्थ तो मैं समझ गई, पर मेंटल हेल्थ का इससे क्या लेना देना?
0: सिर्फ मेंटल और फिजिकल हेल्थ ही नहीं, सोशल लाइफ स्किल भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है आजकल।
1: अरे, तो इन सबको कैसे ट्रैक पर लाया जाए?
0: वेदिका, इन सब के लिए पहले आपको खुद को फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, और बढ़िया सी कोई स्पोर्ट्स जैसे बैडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबॉल और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स, या जिम, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिनसे तुम मेंटली स्ट्रांग फील करो, इन सबको अपने दर्शन देने का मौका देना पड़ेगा।
1: ओहो, बताओ, मैं तो अभी तक वेदर को और क्रीम्स को दोष दे रही थी, जबकि स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन की कमी पेशी से ये सब हो रहा है। तो हमें फिजिकल हेल्थ पर फोकस करना चाहिए ताकि हमारी मेंटल फिटनेस, हेल्थ और सोशल लाइफ स्किल्स ट्रैक पर आ रहें।
0: इसी के साथ हम अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं।

0: इस अच्छे से गाने के बाद हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की ओर, मन से माइक्रोफोन की ओर।
1: साथियों, आकाशवाणी के युववाणी कार्यक्रम में मन से माइक्रोफोन तक सेगमेंट में मैं शैलजा, मेरे साथ श्रेया आपका स्वागत करते हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय है कविता के बहाने युवा मन की पड़ताल, और इसी खास बातचीत के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सत्येंद्र शुक्ल जी, जिन्हें हमने यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पर भी काफी सुना है। सर, आकाशवाणी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: सर। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि कविता के बहाने युवा मन की पड़ताल, इस विषय को आप कैसे देखते हैं?
2: दरअसल जिस तरह की कविताएं आजकल हो रही हैं या पहले भी होती आई हैं, उसमें जरूरी हो जाता है कि युवाओं की भूमिका को उसमें देखा जाए। कई लोगों का अपना अपना दावा है, जो छंदबद्ध वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ऐसी ही कविता होनी चाहिए, जो मुक्त वाले हैं वो आजकल नया उन्होंने अपना संप्रदाय टाइप का चलाया हुआ है कि कविता ऐसी ही होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कविता ऐसी होनी चाहिए जो मन तक पहुंचे। जैसे मैं आपको गुनाहों के देवता से एक छोटा सा वो बताऊं, सेगमेंट बताऊं, कि उसमें एक जगह उन्होंने लिखा कि जो चित्र सुधा ने बनाया है वो चित्र 84 लाख योनियों में से किसी योनि का नहीं है, किसी जीव का नहीं है, लेकिन चूंकि सुधा कह रही है कि बिल्ली है तो मान लेते हैं कि बिल्ली है। तो होता क्या है कि अगर कोई चीज कविता के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से मतलब समझ में आ रही है, युवाओं को समझ में आ रही है, उसे प्रेरित कर रही है, भावनात्मक स्तर पर उसमें कुछ सुधार ला पा रही है, तो वो अच्छी कविता है। निश्चित तौर पर वो चलनी चाहिए। ना इधर वालों को ज्यादा अपने को रिजिड होना चाहिए, ना इधर वालों को होना चाहिए। और साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि कविता के नाम पर कुछ भी कर दे आदमी।
0: सर, जैसे आपने PhD और MPhil सब अपनी कविताओं पर की है, तो ऐसी वो कौन सी पहली कविता थी जिसे सुनने या पढ़ने के बाद आपका कविताओं के प्रति आकर्षण हुआ?
2: पहली कविता मेरी माँ सुनाती थी, एक कविता और सुनाती क्या थी, लोरी कह लेंगे आप उसे। माँ भैया के तेन के आठ नवा मन सोनेन के, माँ भैया का कर थे घ्यू केर दोहनी उड़ेल दे थे। कि कोई बच्चा

0: है उसको माँ दुलार रही है और सुलाने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो कह रही है कि मेरे भैया क्या करता है, तो कहता कि घी का कोई धोनी है, बड़ा सा पात्र है, उसको उलाट देता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भैया मतलब राजा बेटा है, और मेरी माँ सुबह उठती थी, तो मुझे कविता का संस्कार कैसे आया मैं अपना बता रहा हूँ। तो वो सवेरे सवेरे जब उठती थी तो नमामि शमीसान, जो तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में लिखा, उसका पाठ करती थी, तो वहां से सुन के मुझे पहली बार कविता के लिए प्रेरणा मिली। इसके लिए मुझे अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी मतलब। और दूसरी बात, हमारे यहाँ आल्हा का पाठ होता है, आल्हा गायन वाले लोग आते हैं, तो उनसे कुछ प्रेरणा मिली कि भाई कविता ऐसी होती है। अच्छा, एक दिन ये भी हुआ कि मैं ये बताना भी चाहता हूँ आपके जो श्रोता है उनको, कि होता क्या है कि कविता कितनी महान होती है। जैसा कि आपने ओपनिंग में कहा कि भाई कविता से क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ वीर लड़ाका रानियां नहीं हुई। रानी चेन्नम्मा हुई, रानी दुर्गावती हुई, अहिल्याबाई हुई, बहुत सारी ऐसी महिलाएं, ऐसी रानियां आई जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया, प्रयत्न किया और बहुत मार्गदर्शन किया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन सब लोगों के बारे में जब हम किसी से पूछते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा कम पता चले या कम, लेकिन जब हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो हमें तुरंत से वो कविता याद आती है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो कविताओं का ये योगदान होता है कि अगर कोई एक कविता ढंग की निकल पड़ी, आप देखिए कि वो युगों युगों तक लोगों का मार्ग प्रशस्त करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहां से थोड़ी प्रेरणा मिली, और फिर मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूँ, हुआ ये कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का पहला ऐसा शोधार्थी हूँ हिंदी विभाग का जिसने आल्हा पर पीएचडी की, आल्हा के गायन पर, आल्हा की वाचिक परंपरा पर। तो मुझे मतलब गया था तो मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि भाई आप इसमें क्या करेंगे, ये तो क्या ही है, इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इसके बारे में चीजें नहीं है। मैं गाँव गाँव गया, मैं एक कजली महोत्सव होता है वहां गया, तो वो मुझे वहां जाकर के पता चला। मैं घूम घूम के एक एक व्यक्ति से आल्हा सुना। सीलू सिंह राजपूत एक युवा उस समय आपकी उम्र की गायिका हुआ करती थी, जो जिन्होंने शुरू ही किया था, उनका इंटरव्यू मैंने लिया, संजो बघेल का इंटरव्यू लिया, बहुत अच्छे अच्छे लोगों का, और मैंने कोशिश की तो वो मैं कर पाया। मैं कहना यह चाहता हूँ कि इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कविता को बहुत ऐसे ऐसे जानते हो कि भाई डॉक्यूमेंटेशन पहले से हो, चीजें बनी बनाई हो, तो ही हम कर पाएंगे। हम अपने आप भी जाकर के ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, अगर हमारी रुचि है तो चीजें मिल जाती हैं।
1: सर, जैसा कि अभी आपने आल्हा गायन की बात की, तो आकाशवाणी का जो लोकगीत वाला कार्यक्रम है उसमें आल्हा का प्रसारण अक्सर होता है। सर, जैसे रानी लक्ष्मीबाई की कविता की आपने बात की, किसी भी कविता का युवाओं के मध्य प्रासंगिक होना ज्यादा आवश्यक है कि लोकप्रिय होना?
0: देखिए, लोकप्रिय तो कई बार ऐसी भी चीजें हो जाती हैं जिनका युवाओं से कोई लेना देना भी नहीं होता है। कई ऐसी चीजें हैं हमने बीच बीच में देखी जिनका कोई खास ऐसा योगदान नहीं था। लेकिन हाँ, एक बात यह भी है कि लोकप्रियता को आप नकार नहीं सकते। जैसे आज जिस समय में हम जी रहे हैं उसमें आप लोकप्रियता को नकार नहीं सकते कभी।

0: लेकिन हाँ प्रासंगिक भी होनी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि जैसे आप वायवीय बातें करें, कि ऐसी बातें करें जिनका वास्तविक धरातल से कोई लेना देना ही ना हो, है ना। ऐसी बातें भी अगर आप कविता के माध्यम से करते हैं तो वो गलत है। लेकिन ये भी एक बात है कि कोई व्यक्ति यदि लोकप्रिय है, या उसकी कहन शैली लोकप्रिय है, या उसकी कविताएं छोटी छोटी ही सही लेकिन बेहतर हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं, एक सर्वेश तिवारी श्रीमुख नाम के एक राइटर हैं, तो उनकी एक छोटी सी कविता है जिसे उन्होंने बच्चों के लिए लिखी, कि मतलब बच्चों को संदेश देने के लिए, वो भी एक शिक्षक है। तो उन्होंने लिखा कि जीवन में रामत्व उतारो, धर्म यही है, हर बाली को छुप कर मारो, धर्म यही है, और नैतिकता के बोझ तले दबकर मत मरना, नैतिकता के बोझ तले दबकर मत मरना, दुर्योधन की जंघा फाड़ो, धर्म यही है। अर्थात जैसे बच्चा कहीं पे भी द्वि मन से ना रहे, उसको ऐसा ना लगे कि ये तो गलत हो जाएगा, तो ऐसा हो जाए, बहुत डरा हुआ भयभीत व्यक्ति भी समाज के लिए खतरा है। तो युवा को चाहिए कि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर तब होंगे जब वो कविता को उस तरीके से पढ़ेगा जिस तरीके से उसके बुजुर्गों ने पढ़ा है, और फिर उसको नया नवीन पैदा करेगा कुछ उसमें। जैसे अगर आप हम बात करें कि भाई आचार्य शुक्ल ने जब कविता की परिभाषा दी, तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, ठीक इसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, और इसी रस दशा को साधने के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। धूमिल ने कहा कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। अगर और पीछे चले जाएं हम, तो उन्होंने कहा, काव्य शास्त्री विश्वनाथ जी ने कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, हर वह वाक्य काव्य है जो रसपूर्ण है। तो रस तो किसी चीज में हो सकता है ना, लेकिन हमें क्या रहता है कि हमें लगता है कि जो हम कह रहे हैं, जिस तरह से हम कह रहे हैं, उस तरीके से चीजों को ठीक किया जाए, उसी तरीके से कविता को समझा जाए। यानी हमारी वाली कुंजी लेके नोट लगा लगा के पढ़ोगे तो कविता ठीक, अगर आप अपने हिसाब से कहोगे तो बेकार। तो कविता एक खुराक है, और वो खुराक अगर सही तरीके से नहीं मिलेगी तो दिक्कत हो जाएगी, तो ग्लानि आपके अंदर आएगी, कुंठा आपके अंदर आएगी, एक ऐसे क्षणभंगुरता आपके अंदर आ जाएगी, और आप जिजीविषा के साथ, विजगीषा के साथ जीवन जीना बंद कर देंगे।
1: जी सर, जैसे आपने युवाओं की समझ की बात की कविता को लेकर, तो सर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवा मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, बहुत सारी चैलेंजेस है, बहुत सारी विडंबनाएं हैं, तो कविता उस परिप्रेक्ष्य में एक युवा को कैसे उस परिस्थिति से, उस कुंठा से मुक्त कर सकती है?
0: विश्वनाथ त्रिपाठी सर का इंटरव्यू लेने गया था मैं, आपसे थोड़ा बड़ा था, तो उन्होंने मुझसे जब इंटरव्यू बंद हो गया तो उन्होंने मुझे पूछा कि ये बताओ सत्येंद्र, लोग गरीबी गरीबी चिल्ला रहे हैं, पिछले कितने दिन पहले तुमने किसी की बीमारी फटी हुई देखी थी? एक हम लोगों का टाइम था जब लोगों के पास चप्पल जूता नहीं होता था। आपको ये क्यों लगता है कि अभी वाले युवा के पास ज्यादा कुंठा है, ज्यादा परेशानी है, ज्यादा दिक्कतें, और आपको ये क्यों लगता है कि हमारे दरमियान, हमारे टाइम पे ये नहीं थी? तो इस पे विचार करिएगा आप भी, और जो श्रोता है वो भी विचार करें कि आपको यही क्यों लगता है कि हमारे टाइम पे ही बहुत दिक्कतें। उन दिक्कतों से निकलने के लिए कविता एक सहारा है, आप समझे। मैं अपने स्टूडेंट की कविता आपको सुनाता हूँ। मेरा स्टूडेंट है अपूर्व गौरव विक्रम शाह, उसकी कविता है, उन्होंने लिखा कि बिन परवाह, ये सब लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए है ये, कि बिन परवाज की चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है, कि बिन परवाज की चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है, हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है, हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है, अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है, शहद के छत्ते की रक्षा भी डंकों से की जाती है। आपके पास चीजें होनी चाहिए, आपको ऐसी चीजें पढ़ना चाहिए। तो कोई, जैसे किसी को ये लगता है कि भाई हम कुछ नहीं कर, जैसे आप आंदोलन में आपने देखा, या जब बहुत सारी चीजें आंदोलन इत्यादि को गति देने के लिए, या इस तरीके की चीजों को गति देने के लिए भी कविता काम आती है, जीवन जीने के लिए भी कविता काम आती है। आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं
1: जी,
0: तो आपको कहीं ना कहीं कोई कहानी, कोई कविता याद आती है कि ऐसा पिछले के साथ भी हुआ था। रामायण में लिखा महर्षि वाल्मीकि जी ने, आपकी असंभवम हेम मृगस्य जन्मा, कि ऐसा मुश्किल है, असंभव है कि सोने का मृग हो, लेकिन तथापि रामो लुलुभो मृगाया, कि राम जैसा व्यक्ति भी उसके पीछे लोलुप हो गया, भाग गया, ऐसा लिखा है उन्होंने। मतलब ये उनकी भाषा है, क्यों कह रहे हैं कि तथापि रामो लुलुभो मृगाया प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियो पिपुंसा मलिना भवंती, कि ऐसा मैंने देखा है कि प्रायः जब किसी की विपत्ति आने वाली होती है तो उसकी बुद्धि हर जाती है, फिर उसी को बहुत सालों के बाद दिनकर जी ने लिखा कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो कविता ऐसी जुड़ती चली आती है। किसी युवा को अगर ये वहम है कि उसने बहुत नई बात कह दी है, उसके ऊपर कोई बहुत नई समस्या पड़ गई है, तो ये झूठ है, ये भ्रामक है। जैसे मैं नई में बताऊं आपको, एक बुजुर्ग हैं, 50 साल के शायर हैं, उनका एक शेर है, लिखा उन्होंने कि सूरत बुलंद हो गई है फोटोशॉप से, अब सीरत के वास्ते कोई ऐप तलाशिए। उन्हीं का एक शेर है कि उन्होंने लिखा कि रात वो दुश्मनों में बैठा था, जाने क्या क्या सिखा दिया होगा। कहता रात वो दुश्मनों में बैठा था, जाने क्या क्या सिखा दिया होगा, डीपी व्हाट्सएप पे अब नहीं दिखती, डीपी व्हाट्सएप पे अब नहीं दिखती, उसने नंबर उड़ा दिया होगा। तो ऐसा नहीं है कि युवा ही युवा मन की बात कर सकता है,

0: एक कवित्री हैं, उनकी कविता है बड़ी अच्छी सी, बड़ी प्यारी सी, आप उसे रिलेट कर पाएंगे। कि उन्होंने लिखा कि वो फूल जिससे टकराकर मर गई तितली, कि वो फूल जिससे टकराकर मर गई तितली, वो फूल दरअसल दीवार पर बना हुआ था। कितनी गंभीर बात है। मेरा निवेदन इतना ही है कि कविता ऐसी हो जो आपको दिशा देने वाली हो, गति देने वाली हो, अच्छी हो, बेहतर हो।
1: सर, इस वक्त हमें लाखों करोड़ों श्रोता सुन रहे हैं, तो उन श्रोताओं के मन में ये इच्छा जागी होगी इस बातचीत को सुनने के बाद कि वो कविता के अथाह समुद्र में डुबकी मारें, तो वो शुरू कहाँ से करें?
0: जैसे दो बातें हैं, जैसे कुछ लोग मतलब ऐसा चाहते हैं कि लिख ही लें, तो लिखने तो जॉन इलिया ने एक जगह कहा था, जॉन इलिया सर ने, कि उन्होंने कहा कि बहुत लोगों को पढ़ना चाहिए था, बहुत लोगों को पढ़ना चाहिए था, मगर अफसोस है वो लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि आप पढ़ें, पहली बात। और फिर जब लगे कि कुछ विचार ऐसे हैं, जो वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि कविता जो है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है, जैसे कि मतलब धूमिल ने कहा कि भाई कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, जैसे शुरुआत में मैंने कहा था, उन्होंने ये भी कहा कि कविता दोषी के कटघरे में खड़े हुए निर्दोष व्यक्ति का हलफनामा है। यानी कविता पवित्र सी चीज है। ज्ञान दादा ज्ञान प्रकाश आकुल एक कवि हैं, उनकी एक कविता है कि उन्होंने लिखा कि सत्य सनातन समानता का ऐसा नाम नहीं हो पाया, किंतु राम के बाद धरा पर कोई राम नहीं हो पाया। किसने इतनी मर्यादा से, किसने जबरदस्ती नहीं, कहता किसने इतनी मर्यादा से ऊंच नीच की रेख मिटाई, जब सबरी की पर्ण कुटी में अवधि में बोले रघुराई, कि हमका भूख लगी है माई, हमका भूख लगी है माई। वही ज्ञान प्रकाश दादा फिर लिखते हैं कि जादू टोना एक तरफ, तेरा होना एक तरफ। आप समझिए कि जैसे कविता के कई बिंदु हैं, कई प्रस्थान बिंदु हैं, है ना। जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ, जो संस्कृत के आखिरी जो है आचार्य माने जाते हैं, उन्होंने लिखा कि रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम, कि हर वह शब्द काव्य है जो रमणीयता को प्रतिपादित करता है, कुंठा को नहीं, निर्लज्जता को नहीं, फुहड़ता को नहीं, ठीक, भदेस्ता को नहीं, है ना, कि कौतूहल डालने के चक्कर में आप यौनिकता को जबरदस्ती स्थान देना, जबरदस्ती कुंठा को, ग्लानि को, इन सब चीजों को स्थान देना नहीं। मेरा सबसे मतलब आग्रह रहेगा कि पहले कुछ पढ़ लें, है ना, और पढ़ के कुछ अच्छा सा पढ़ें, फिर उसमें से लगे कि कुछ इससे बेहतर लिख सकते हैं, इससे कुछ, वही जो किसी शायर ने कहा ना कि मतलब या तो आप ऐसी बात करिए जो खामोशी से अच्छी हो, नहीं तो खामोश भी रह सकते हैं, दूसरों की कविताएं पढ़ सकते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, बहुत बहुत अच्छा अच्छा लोगों ने लिखा है, उससे प्रेरणा ले सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, फिर अपने जिस दिन कभी मन करे कि इससे बेहतर कुछ मेरे अंदर आया है विचार, तो जरूर लिखें, खूब लिखें।
2: सर, इस खास बातचीत कविता के बहाने युवा मन की पड़ताल में आपसे वाकई कविता के बारे में हमें बहुत कुछ जानने सीखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे लिसनर्स तक कविता के इस खूबसूरत अंदाज को पहुंचाने के लिए और हमारे साथ स्टूडियो में आज जुड़ने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे सत्येंद्र शुक्ला जी को, जिन्होंने हमें कविता की लोकप्रियता, कविता की गहराई और सौंदर्य के बारे में जाना और बताया। और आप सुनते अब सुनते हैं नया खूबसूरत गीत।
4: कायदा कायदा कायदा, हर चीज में कायदा, आखिर इसका फायदा? कायदा तोड़ के सोचो एक दिन, चांद निकलता नीचे से और मैदान पे रखा होता।

0: और घास फालूदा होती दीदी तो क्या मजा आता।
1: और हाथ में चम्मच लेकर जाते रात दिन बस
2: जाने। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, क्विक बज। देविका, आज तुमने मुझसे न्यूट्रिशन के बारे में बहुत कुछ बात करी, तो मैं भी तुम्हें जन्माष्टमी के बारे में क्विक अपडेट्स देना चाहती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं मथुरा की, जहाँ जन्माष्टमी को लेकर तैयारियाँ पूरे जोरों शोरों पर हैं। इस बार यहाँ 4 सितंबर

0: सितंबर को 500 ड्रोन का एक खास शो देखने को मिलेगा। इन ड्रोन के जरिए आसमान में रोशनी और तकनीक की मदद से भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनकी लीलाओं को खूबसूरत अंदाज में दिखाया जाएगा। और बात जब इतनी बड़ी तैयारियों की हो तो श्रद्धालुओं की सुविधा का भी खास ध्यान रखा जा रहा है।
1: हाँ वेदिका, मथुरा जाने वाले यात्रियों की संख्या को देखते हुए नॉर्थन रेलवेज ने 2 से 6 सितंबर के बीच स्पेशल ट्रेनों का आयोजन भी किया है।
0: देविका, तो एक तरफ जहां मथुरा में आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाएगा, वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालुओं के सफर को भी आसान बनाने की तैयारी है। यानी इस बार मथुरा में भक्ति और उत्सव के साथ साथ बेहतर तकनीक और सर्विस दिखने को मिलेगी। तो फिलहाल क्विक बज में बस इतना ही। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना।

0: क्योंकि हमारा न्यूट्रिशन वीक है, तो मैं बताना चाहूँगी कि इस नेशनल न्यूट्रिशन वीक की शुरुआत भारत में 1982 में फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ने की थी।
1: बिल्कुल वेदिका, तो आज हमने न्यूट्रिशन की बातें करी, जन्माष्टमी के महोत्सव के बारे में जानकारी साझा करी और साथ ही बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी करी। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपने सुझाव हमें हमारी ईमेल एड्रेस yuvanifeedback@gmail.com यानी yuvvanifeedback@gmail.com पर भेज सकते हैं।
0: इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अनुमति। मैं वेदिका
1: और मैं देविका।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 5 बजने को है, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने आतंकवाद से निपटने के लिए व्यापक और वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों नेताओं ने कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में, किसी भी स्थान पर और किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवादियों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ बेल्जियम की एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने पहलगाम हमले की फिर से कड़ी निंदा की। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। दोनों देश आतंकवाद के बदलते खतरों से निपटने में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत बेल्जियम संयुक्त आतंकवाद निरोधक कार्य समूह का गठन करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। इससे पहले भारत और बेल्जियम के बीच आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें रक्षा सहयोग पर आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की

0: ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश और एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने यह बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री तेओ फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। श्रीमती सीतारामन ने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय कल से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को एक साथ आने का अवसर मिलेगा। इस दौरान न्यायपालिकाओं के बीच संवाद और न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास से संबंधित समकालीन मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे क्षमता बढ़ाने और सिग्नल व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि मुंबई में 18,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सिंधुदुर्ग के सावंतवाड़ी रोड तक एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना करने के अवसर पर यह बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की

0: नंदिनी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को हमारी
1: नमस्कार।
0: तो पायल बहन हम हाजिर हो गए हैं लोक रंजनी कार्यक्रम लेकर के।
1: अतुल भाई देखिए, लोक रंजनी, लोक रंग, और भाई कहते हैं ना कि विविधता हमारे इस कार्यक्रम में है, और इस कार्यक्रम के द्वारा हम अपने सभी बहन भाइयों का मनोरंजन करवाते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर भजन गीतों से, लोकगीतों से, रागनियों से, किस्सों से। तो एक तरह से हमारी ये लोक रंग की हम कह सकते हैं खूबसूरती है, एक मिट्टी खुशबू है जो हमारे इस कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम के रोम रोम में बसी हुई है, और यही कारण है कि हमारा ये कार्यक्रम श्रोताओं द्वारा इतना पसंद किया जाता है। और भाई कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अतुल भाई, और बताइए सबसे पहले आप किस कलाकार को सुनवाएंगे?
0: तो सुनवाते हैं सुधा श्रीवास्तव की आवाज़ में ये कृष्ण भजन।

0: तो अतुल भाई, जैसे हमारा ये कार्यक्रम लोक रंजनी विविधता से भरा हुआ है, ऐसे ही ये महीना जो है ना वो भी बड़ा विविधता से भरा हुआ है। क्योंकि भाई आप देखिए ना, कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, और इसीलिए आज हमने अपने इस कार्यक्रम में खास तौर से भाई भगवान कृष्ण के भजन
1: भजन लिए
0: लिए
1: हैं।
0: और भाई उसके बाद जो आता है महीना आता है भादों,
1: अगले ही दिन
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई भादों की नौमी है। और ऐसे में भाई अगर सुभाष नाथ का जो है एक लोकगीत ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता।
1: तो
0: आइए
1: सुनाते हैं सुभाष नाथ की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: ओहे दे दे बल्लम किराया, देख बागड़ को जाऊँ। ये भी हमारे सभी बहन भाई सुनाई थी सुभाष नाथ की आवाज़ में भाई, ये प्यारा सा लोक गीत।
1: और अब अपने सभी भाई बहनों को सुनाते हैं उदयपाल की आवाज़ में एक और कृष्ण भजन।

0: गोपाल भैन अभी हमारे भाई सुन रहे थे जयप्रकाश शर्मा की आवाज़ में ये कृष्ण भजन। और इसी के साथ आज का हमारा लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुत करता है तुषार पारासर।

0: अभी आप लोक रंजनी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 366.3 मीटर पर। शाम के 5:30 बजने को हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: दोस्तों, खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आज धर्मेंद्र और हमारे साथी
3: मैं आकाश
2: दोनों करते हैं आपको नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: और आज शुरुआत कहां से करें? शुरुआत करते हैं क्रिकेट से, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि भारत में एक चुनौती है। भारत के सामने भारतीय टीम दुबई में इस समय महिला टीम संघर्ष कर रही है एशिया कप में, और भारत में एक बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी का अगले साल में। इसके अलावा भी डीपीएल का कल समापन हुआ है, वो खबर भी है हमारे पास। एथलेटिक्स की खबर है, स्क्वाश की, और दूसरे खेलों की तरफ भी हम आपको ले जाएंगे। सुब्रतो फुटबॉल टूर्नामेंट पर भी हमारे पास खबर है। तो शुरुआत करते हैं महिला एशिया कप से, क्योंकि दुबई में आज भारत का ग्रुप ए का दूसरा मुकाबला कुछ ही घंटों में होने वाला है, और आज भारतीय टीम के सामने बहुत कठिन चुनौती तो नहीं है, लेकिन भारतीय टीम को सजग रहना होगा। पिछले मैच में जिस तरह से थाईलैंड की टीम के खिलाफ भारत ने प्रदर्शन किया था, उससे सचेत रहने की आवश्यकता भारतीय बल्लेबाजों को जरूर होगी। सुनते हैं ये रिपोर्ट।

जब बात महिला एशिया कप की आती है तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नाम सिर्फ एक प्रतियोगी के रूप में नहीं बल्कि एक महाशक्ति और इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम के रूप में लिया जाता है। नीले रंग की जर्सी में सजी मैदान पर उतरने वाली हमारी टीम सिर्फ मैच नहीं खेलती बल्कि क्रिकेट के इतिहास में अपनी महाशक्ति होने की एक नई इबारत लिखती है। एशिया कप के इतिहास में सबसे ज्यादा बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल करने वाली भारतीय टीम जब भी मैदान पर कदम रखती है तो उसका लक्ष्य सिर्फ जीत नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने खेल का लोहा मनवाना होता है। अनुभवी दिग्गजों के रणनीतिक दिमाग और युवा खिलाड़ियों के आक्रामक जज्बे से लैस ये टीम भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम भविष्य की अगुवाई कर रही है। अपनी धारदार गेंद मैदान पर चीते जैसी फुर्ती और बल्ले से रनों की बरसात करने की क्षमता के साथ भारतीय टीम महिला एशिया कप की सबसे बड़ी दावेदार और हर विपक्षी टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसी कड़ी में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में विमेंस एशिया कप के 10वें एडिशन में भारत की महिला टीम ग्रुप ए में आज अपना दूसरा मैच खेलने उतरने वाली है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली इंडियन टीम का सामना हांगकांग से होने वाला है। मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से शुरू होगा। 7:30 बजे इसका टॉस होगा। हम आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार भारत और हांगकांग की महिला टीमें आमने सामने होंगी। ग्रुप ए में भारत 2 अंक के साथ टॉप पर है। पहले मुकाबले में उसने थाईलैंड को आसानी से 94 रन से हराया था। ये मुकाबला जीतने पर टीम 4 अंक के साथ सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। इसकी वजह है कि भारत के जीतने की सूरत में पाकिस्तान के अलावा कोई और टीम 4 अंक तक नहीं पहुंच सकती। हम आपको बता दें कि हर ग्रुप से 2 टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी। अपने ग्रुप में भारत ने अब तक सिर्फ 1 मैच खेला है और पाकिस्तान थाईलैंड के बराबर 2 अंक ही हैं, लेकिन 4.7 के बेहतर रन रेट से वह पहले नंबर पर है। पाकिस्तान ने भी 1 मैच खेला है, उसके भी 2 अंक हैं, लेकिन 1.7

0: 2.75 के नेट रन रेट से वह दूसरे नंबर पर है। इस ग्रुप में थाईलैंड ही अकेली टीम है जिसने ग्रुप के अपने सभी 3 मैच खेल लिए हैं। उसके हांगकांग के खिलाफ जीत से 2 अंक और -2.05 के रन रेट से वह तीसरे नंबर पर है। आज भारत जैसी मजबूत टीम से भिड़ने जा रही हांगकांग की टीम ने एक मैच खेला है जिसमें उसे हार मिली और उसका नेट रन रेट -0.3 है। यह टीम 4 टीमों में सबसे नीचे है। साल 2026 में भारतीय टीम के अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबलों में प्रदर्शन की बात करें तो उसने अब तक कुल 17 मैच खेले हैं। इनमें से टीम ने 8 मैचों में जीत दर्ज की है जबकि 9 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है, यानी हार के मुकाबले जीत का प्रतिशत कम रहा है। दूसरी ओर हांगकांग ने इस साल खेले गए 26 में से 16 मैच जीते हैं जबकि 10 में उसे हार मिली, लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसके मुकाबले एसोसिएट मेंबर्स टीम के साथ हुए हैं। हालांकि इस मुकाबले में भारत का पलड़ा भारी रहेगा। दोनों टीमों के प्रमुख खिलाड़ियों की बात करें तो बल्लेबाजी में टीम इंडिया की निगाह एक बार फिर 2 सलामी बल्लेबाजों बाएं हाथ की स्मृति मानधना और विस्फोटक शेफाली वर्मा पर होगी। हरियाणा के रोहतक की शेफाली ने थाईलैंड के साथ पहले मुकाबले में स्मृति के साथ टीम को 3 ओवर में 38 रन की साझेदारी कर अच्छी शुरुआत दी थी, लेकिन अच्छी लय में दिख रहे स्मृति के रन आउट होने से ये साझेदारी टूटी थी। हालांकि शेफाली उसके बाद भी नहीं रुकी और उन्होंने नौसिखिया थाईलैंड के गेंदबाजों पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए मात्र 38 गेंदों में 8 चौके और 3 छक्के की मदद से 64 रन जड़ दिए। इसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया था। इसी मैच में अपना पहला T20 इंटरनेशनल मुकाबला खेल रही प्रतिका रावल ने उनका अच्छा साथ निभाया था। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 53 रन जोड़े थे। इन दोनों के आउट होने के बाद भारतीय टीम पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी। कोई भी बैटर नहीं चल सकी और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि टीम के लिए 150 के पार पहुंचना तो क्या पूरे 20 ओवर खेलना भी मुश्किल होगा, लेकिन 10वें यानी अंतिम विकेट की साझेदारी में श्री चरणी और क्रांति गौड़ ने न सिर्फ निर्धारित ओवर तक बल्लेबाजी की बल्कि 16 गेंदों में 22 रन की साझेदारी कर टीम को 159 के स्कोर तक भी पहुंचाया था। ऐसे में शेफाली वर्मा की बल्लेबाजी एक बार फिर से सबकी निगाहों में होगी। उन्होंने साल 17 पारियों में 150.14 की स्ट्राइक रेट से 503 रन बनाए हैं। उनका बेस्ट स्कोर 64 रन रहा है, साथ ही 5 अर्धशतक भी लगाए हैं। शेफाली ने इस साल T20 में 67 चौके और 16 छक्के लगाए हैं। दूसरी तरफ 172 मैच की 166 पारियों में 1 शतक और 25 अर्धशतकों के दम पर 30.17 की औसत से रन बनाने वाली स्मृति मानधना की प्रतिभा और क्षमता पर किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन पिछले मैच में जिस तरह से वे रन आउट हुई थी वो निराशाजनक था। बड़े मैचों में इस तरह की गलतियां न सिर्फ उन पर बल्कि टीम पर भी भारी पड़ सकती हैं। स्मृति को इस पर ध्यान देना होगा। वहीं जिस तरह से भारत का टॉप मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर थाईलैंड के खिलाफ मुकाबले में लड़खड़ाया वो भी अच्छा संकेत नहीं है। हालांकि टीम के गेंदबाजी कोच आविष्कार सालवी मानते हैं कि बैटिंग के साथ कोई समस्या नहीं है।
1: That's the nature of the sport. You know, we are playing T20 sport, so it's not that every time that we get into and we will be executing our plans. There will be times when we will probably not execute the plans as great as we would have wanted to. So there will be a downfall, but if you see, there was a comeback also, and the way they came back really well, they stretched the partnership at the end, and those important runs were contributed from the middle order and the lower order batters, which probably created that 160 mark, and then after that, you saw how they bowled in the game.
0: आविष्कार का कहना सच है, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि आज टीम के पास मौका है कि 5 सितंबर को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले बड़े मुकाबले से पहले अपने तरकश के सारे तीर अच्छे से आजमा ले। आगे मुकाबले और भी कठिन होते जाएंगे। कप्तान हरमनप्रीत कौर, भारती फुलमाली, ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा जैसी बैटर को इस मैच में लय हासिल करनी ही होगी। जहां तक गेंदबाजी की बात है तो पिछले मैच में टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। स्पिन फ्रेंडली पिच पर श्री चरणी और दीप्ति शर्मा ने मिलकर विरोधी टीम के 5 विकेट झटक लिए थे। दीप्ति ने तो 1 ओवर और 1 गेंद में बिना कोई रन दिए 3 विकेट अपने नाम किए थे। श्री चरणी को 2 विकेट मिले थे, साथ ही तेज गेंदबाजों की क्रांति गौड़ और नंदिनी शर्मा की जोड़ी ने भी 4 विकेट झटके थे। हम आपको बता दें कि श्री चरणी इस साल भारत की सबसे सफल बॉलर रही हैं। उन्होंने 16 मैचों में 29 विकेट चटकाए हैं। श्री चरणी ने 6.71 की बेहद किफायती इकोनॉमी से रन दिए हैं। गेंदबाजी कोच आविष्कार सालवी भी श्री चरणी की गेंदबाजी की जमकर तारीफ करते हैं।
1: आई थिंक शी इज एक्सेप्शनल टैलेंट, शी हैज क्रिएटेड इंपैक्ट फ्रॉम डे 1 दैट शी हैज स्टेप्ड इनटू द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। And 1 year down the line, you see where she has reached in the rankings as well. I think she is someone who focuses majorly on her basics while she is practicing into the nets. And every day there is some of the other things she wants to learn. And if you see the practice sessions, if you are following that, if you are covering that, you'll see every single time that she comes into the net, she challenges herself to different situations and tries to, you know, express herself into the nets also.
0: दुबई में हो रहे इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। आज के मैच के दौरान भी दुबई में गर्मी रहेगी। तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहने का अनुमान है। ऐसे में परिस्थितियों से तालमेल

0: बिठाना आसान नहीं है, फिर भी आविष्कार सालवी कहते हैं कि उनकी टीम के खिलाड़ी कंडीशन फ्रेंडली हो गए हैं।
1: पोस्ट इंग्लैंड वी ऑल्सो हैड अ कैंप इन बैंगलोर, सो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑल्सो वी वर्क्ड, आई मीन दैट वेदर, एंड देन वी आर ट्रैवलिंग टू दुबई। सो एज वी नो दैट प्रोफेशनल क्रिकेटर्स दे हैव टू हैंडल डिफरेंट वेदर्स, सो दे आर क्लिमेटाइजिंग एंड दे आर गेटिंग यूज टू द कंडीशंस, एंड एज फार एज बोलिंग इज कंसर्न वी बिल्ड देम एज देयर वर्कलोड फ्रॉम द कैंप इटसेल्फ, एंड व्हाइल दे हैड दोज प्रैक्टिस सेशंस इन दुबई दे हैव हैड दोज ओवर्स अंडर देयर बेल्ट। आई थिंक द कंडीशंस करंटली दे आर हॉट एंड ह्यूमिड, but we already knew about it when we came into the tournament, so accordingly we had prepared ourselves, we had trained ourselves, not just physically but mentally as well, so we had actually planned that way, and when we came here we practiced into these conditions, and we thought that girls got good exposure to the sort of surface where they were exposed to the practice sessions. I thought they utilized it really well, and getting into that first game against Thailand, I thought girls are, I mean, they have acclimatized really well. And if you see in that game, there were pacers also who got the wickets, there were spinners also who were getting the wickets. And if you see the score line also, in the first 10 overs, we were like 100. So I think it's about utilizing those conditions well. Whoever utilizes that, those conditions would probably would be at the better end of the game.
0: उधर हांगकांग की बात करें तो उसके लिए बल्लेबाज नताशा माइल्स और गेंदबाज करी चान इस साल बेस्ट परफॉर्मर रही हैं। नताशा ने इस साल खेले 25 पारियों में 39.28 की औसत और 97.14 के स्ट्राइक रेट से 784 रन बनाए हैं, इसमें एक शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं। उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 100 रन है। गेंदबाजी में करी चान ने 26 मैचों में 4.81 की बेहतरीन इकोनॉमी से 39 विकेट चटकाए हैं। उनका बेस्ट परफॉर्मेंस 15 रन देकर 5 विकेट रहा। अभी तक महिला एशिया कप में कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ है, फिर भी हांगकांग अगर आज उलटफेर करते हुए भारतीय टीम को शिकस्त दे दे तो उसके भी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बन सकती है। आज के मुकाबले के मैदान की बात करें तो बाउंड्री बड़ी होने से यहां बड़े शॉट लगाना आसान नहीं होगा, गेंदबाज इसका फायदा उठा सकते हैं। हालांकि ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है। मैच के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। हम आपको ये भी बता दें कि इस मैच से जुड़ा कार्यक्रम और मैच का विवरण आप आकाशवाणी पर शाम 7:30 बजे से सुन सकते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि इस बार एशिया कप में 8 टीमों के बीच कुल 12 मैच होने हैं। श्रीलंका पिछला चैंपियन है, जबकि भारत 7 खिताब के साथ महिला एशिया कप की सबसे सफल टीम है। वनडे में 4 और टी20 में 3 बार खिताब भारत के नाम रहा। बांग्लादेश और श्रीलंका ने एक एक बार ट्रॉफी अपने नाम की है। टूर्नामेंट का पहला एडिशन 2004 में वनडे फॉर्मेट में हुआ था। इसके बाद शुरुआती 4 संस्करण 50 ओवर के फॉर्मेट में हुए। फिर 2012 में इस टूर्नामेंट को टी20 फॉर्मेट में बदल दिया गया। हम आपको ये जानकारी भी दे दें कि पहली बार 2004 में भारत और श्रीलंका ने ही एशिया कप खेला था। दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज हुई और भारत ने सभी 5 मैच जीतकर खिताब अपने नाम किया। इसके बाद 2005-06, 2006 और 2008 में भी टूर्नामेंट सीमित ओवर्स के एक दिवसीय फॉर्मेट में खेला गया। वनडे फॉर्मेट में भारतीय महिला टीम 2004 और 2005-06, 2006 और 2008 में चैंपियन बनी। 2012 में पहली बार वीमेंस एशिया कप 2020 ओवर के फॉर्मेट में खेला गया। इसके बाद से सभी संस्करण इसी प्रारूप में खेले जा रहे हैं। 2020 फॉर्मेट में भारत ने 2012, 2016 और 2022 में खिताब जीता। बांग्लादेश की टीम 2020 फॉर्मेट में 2018 और श्रीलंका की टीम 2024 में चैंपियन बनी। इस बार 8 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है। दोनों ग्रुप में 4-4 टीमें हैं। हर टीम को अपने ग्रुप की बाकी 3 टीमों से एक एक मैच खेलना है। इसके बाद दोनों ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। सेमीफाइनल में जीतने वाली टीम 13 सितंबर को फाइनल खेलेगी। भारत ग्रुप ए में है। उसके ग्रुप में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान शामिल हैं। ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमारात और इंडोनेशिया शामिल हैं। इंडोनेशिया पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा है। टूर्नामेंट के सभी मुकाबले दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हो रहे हैं। ये तो थी आज भारत और हांगकांग के बीच होने वाले मुकाबले का पूर्वावलोकन, क्या है उम्मीदें, क्या है उस पर बात। लेकिन अब बात कर लेते हैं कल रात खेले गए एक अहम मुकाबले की। आकाश बता रहे हैं क्या कुछ हुआ उस मैच में।
2: महिला टी20 एशिया कप 2026 में श्रीलंका ने शानदार जीत के साथ अपना दमखम दिखाया। दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रनों के बड़े अंतर से मात दी। इंडोनेशिया ने टॉस जीतकर

0: ले गेंदबाजी का फैसला किया था। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही, लेकिन नीलाक्षिका सिल्वा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए महज 35 गेंदों में 50 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली और टीम को एक चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। श्रीलंका ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 124 रन बनाए। इंडोनेशिया की ओर से गेंदबाजों ने भी अच्छी कोशिश की। नीलू डेवी ने 3 विकेट हासिल किए, जबकि सांग में प्रियानी को 2 सफलताएं मिली। 125 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंडोनेशिया के बल्लेबाजों को शुरुआत में श्रीलंकाई गेंदबाजों ने दबाव में डाला। एक के बाद एक विकेट गिरते गए और इंडोनेशिया की पूरी टीम 18.3 ओवर में महज 49 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। और इस शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन की सबसे बड़ी स्टार रही श्रीलंका की कप्तान चमारी अट्टापट्टू। अट्टापट्टू ने सिर्फ 3.3 ओवर में महज 5 रन देकर 7 विकेट झटक लिए। नतीजा, श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रनों से हरा दिया। कप्तान चमारी अट्टापट्टू को उनके शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
1: क्रिकेट की बात को ही आगे बढ़ाएं तो भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक और अच्छी खबर है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन अगले साल होना है और आईसीसी ने इसकी मेजबानी भारत को सौंप दी है। सुनते हैं ये रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 2027 में होने वाली पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से छीनकर इसे भारत में आयोजित कराने का फैसला किया है। श्रीलंका में क्रिकेट से जुड़े प्रशासनिक विवादों के कारण उससे मेजबानी वापस ले ली गई। 6 टीम का यह टूर्नामेंट अब 14 से 28 फरवरी तक मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। इसको लेकर आईसीसी ने एक बयान में कहा है कि यह टूर्नामेंट पहले श्रीलंका में होना था, लेकिन अब इसे भारत में आयोजित किया जाएगा क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट आईसीसी की जुलाई में हुई वार्षिक बैठक में बताए गए जरूरी सुधारों को अभी पूरा कर रहा है। आईसीसी ने नए मेजबान के लिए बांग्लादेश, भारत और दक्षिण अफ्रीका के नाम पर विचार किया। इसके बाद तय नियमों और मानकों के आधार पर आईसीसी ने भारत को श्रीलंका की जगह नया मेजबान बनाने की सिफारिश की। आईसीसी बोर्ड ने कल इस फैसले को मंजूरी दे दी। टूर्नामेंट के मैच मुंबई के क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया और वडोदरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में दुनिया की 6 प्रमुख महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका हिस्सा लेंगी। इन टीमों का चयन 6 जुलाई की आईसीसी महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के आधार पर किया गया है। सभी 6 टीम पहले राउंड रॉबिन लीग में एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। इसके बाद शीर्ष 2 टीम 28 फरवरी को फाइनल खेलेगी। पुरुषों की चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर के प्रारूप में खेली जाती है। भारत ने पिछले साल महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी की थी और भारतीय महिला टीम ने पहली बार ये खिताब जीता था। चैंपियंस ट्रॉफी के लेकर आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने कहा है कि आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 महिला क्रिकेट के लिए एक नए और रोमांचक दौर की शुरुआत होगी। ये इस टूर्नामेंट का पहला एडिशन होगा जिसमें दुनिया की बेहतरीन टीम एक बड़े और कड़े मुकाबले में हिस्सा लेंगी। इससे इन टीमों को अपनी रैंकिंग बेहतर करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जगह बनाने के लिए और अधिक प्रेरणा मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब हर साल एक बड़ा आईसीसी महिला टूर्नामेंट आयोजित होगा। इससे महिला क्रिकेट को और बढ़ावा देने, प्रतियोगिताओं में निरंतरता लाने और दुनिया भर की महिला खिलाड़ियों तथा प्रशंसकों के लिए क्रिकेट को और मजबूत बनाने का अच्छा मौका मिलेगा। और अब बात दिल्ली प्रीमियर लीग की, जिसका समापन कल रात हुआ है। बीपीएल क्रिकेट में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने कल रात अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दिल्ली प्रीमियर लीग डीपीएल 2026 महिला वर्ग के फाइनल में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स को 6 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। 123 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए स्ट्राइकर्स ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर 128 रन बनाए और खिताब पर कब्जा किया। इससे पहले साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 122 रन बनाए। कप्तान श्वेता सहरावत ने 32 गेंदों पर 31 रन बनाए, जबकि विकेट कीपर निशिका सिंह ने 30 गेंदों पर नाबाद 39 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का लगाया। नॉर्थ दिल्ली की ओर से प्रिया मिश्रा, नजमा, अर्चना, रेशिका बेनीवाल और अपेक्षा आनंद ने 1-1 विकेट लिया। अपेक्षा ने 4 ओवर में महज 13 रन देकर किफायती गेंदबाजी की। लक्ष्य का पीछा करने उतरी नॉर्थ दिल्ली को उपासना यादव ने तेज शुरुआत दिलाई, लेकिन सुपर स्टार्स ने 2 शुरुआती विकेट लेकर स्कोर 15 रन पर 2 विकेट कर दिया। इसके बाद कप्तान आयुषी सोनी और अर्चना ने पारी संभाली। आयुषी ने 39 गेंदों पर 43 और अर्चना ने 36 गेंदों पर 40 रन बनाए। दोनों ने महत्वपूर्ण साझेदारी कर टीम को जीत की राह पर पहुंचाया। अंतिम 4 ओवर में 20 रन की जरूरत थी, लेकिन नजमा ने दबाव में शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 24

0: रन बनाए। समारा राघव ने भी अभिजीत 7 रन की पारी खेली जिसमें एक छक्का शामिल था। नॉर्थ दिल्ली ने 19 ओवर में लक्ष्य हासिल कर यादगार जीत दर्ज की। तो बहुत सारी बातें हमने आकाश कर ली क्रिकेट की, अब क्यों ना बात करें बैडमिंटन की।
1: चीन के शेंझा में जारी चाइना मास्टर्स 2026 में 1 से 6 सितंबर तक खेले जा रहे शेंझा एरिना में सुपर 750 टूर्नामेंट में भारत की ओर से किदंबी श्रीकांत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली, जबकि तन्वी शर्मा और ध्रुव कपिला तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी का सफर समाप्त हो गया। पूर्व विश्व नंबर 1 किदंबी श्रीकांत ने पुरुष एकल के राउंड ऑफ 32 में चीनी ताइपे के ची यू जे को 21-16, 21-15 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके बाद राउंड ऑफ 16 में उन्होंने कनाडा के नंबर 9 विक्टर लाई को सीधे गेमों में 21-18, 21-19 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। श्रीकांत का अंतिम 8 में हांगकांग के ली च्यूक यू का सामना करेंगे। महिला एकल में तन्वी शर्मा ने राउंड ऑफ 32 में डेनमार्क की अमाली शुल्ज को 21-16, 21-17 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। हालांकि राउंड ऑफ 16 में जापान की विश्व नंबर 9 तोमाको मिया जाकी के खिलाफ 66 मिनट तक चले कड़े मुकाबले में तन्वी को 17-21, 21-18, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो ने राउंड ऑफ 32 में थाईलैंड की जोड़ी को 21-18, 21-19 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई, लेकिन राउंड ऑफ 16 में चीनी ताइपे के लिए के लियू क्युआंग होंग और यूस विन हुई ने भारतीय जोड़ी को 21-18, 21-18 से हराकर प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। पुरुष युगल्स के राउंड ऑफ 32 में भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने शानदार जीत दर्ज करते हुए मलेशिया के जुनैदी आरिफ और कांग खाई सिंह को की जोड़ी को सीधे गेमों में 21-11, 21-16 से हराया और राउंड ऑफ 16 में भारतीय जोड़ी ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपाव और टोमा जूनियर पोपाव को 21-17, 21-24, 21-9 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में इस जोड़ी का मुकाबला नहीं आती है डेनमार्क की जोड़ी किम अस्ट्रिप एंडर्स आकारूप रास मुसेन से होगा। इस तरह चीन मास्टर्स भारत की चुनौती का मुख्य रूप से किदंबी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।
0: जी हाँ, और आकाश आपने बैडमिंटन की तो बात कर ली, लेकिन अब हमें बात करनी है अमरीकी ओपन टेनिस की। साल का ये चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम है, क्या कुछ हो रहा है वहां पर जानते हैं। न्यूयॉर्क के फ्लैशिंग मीडोज में खेले जा रहे साल के चौथे और अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस 2026 में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी आर्याना सबालेंका ने तीसरे दौर में जगह बना ली है। उन्होंने महिला सिंगल्स के दूसरे राउंड में रूस की क्वालिफायर पोलिना याचेंको को बिल्कुल आसानी से 6-1, 6-1 से हराकर तीसरे राउंड में जगह बना ली। सबालेंका ने यह मुकाबला सिर्फ 53 मिनट में जीता। सबालेंका की यूएस ओपन में यह लगातार 16वीं जीत है। वो फ्लैशिंग मीडोज में लगातार तीसरा खिताब जीतने की कोशिश में है। तीसरे दौर में उनका सामना उज्बेकिस्तान की कामिला रखीमोवा से होगा। इसी वर्ग में अमरीकी खिलाड़ी जेसिका पेगुला ने हमवतन सोफिया केनिन को 6-3, 6-1 से हराया। पेगुला ने यह मुकाबला 56 मिनट में जीता। 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन केनिन को पूरे मैच में वापसी का ज्यादा मौका नहीं मिला। पेगुला अगले दौर में कनाडा की लेला फर्नांडिस से खेलेंगी। फर्नांडिस ने थाईलैंड की मन्नाचाया सावांग काइव को 6-4, 6-1 से हराया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी सीड स्पेन के कार्लोस अल्काराज, डेनियल मेदवेदेव और बेन शेल्टन ने भी तीसरे दौर में जगह बना ली है। अल्काराज ने आर्थर एश स्टेडियम में पुर्तगाल के जेमे फारिया को 4-6, 6-0, 6-3, 6-2 से हराया। पहला सेट गंवाने के बाद उन्होंने लगातार 3 सेट जीतकर 2 घंटे 39 मिनट में मुकाबला अपने नाम किया। मेदवेदेव ने अमेरिका के वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी सेबेस्टियन गोर्जनी को 6-1, 6-3, 7-5 से हराया। मैच के दौरान लुई आर्मस्ट्रांग स्टेडियम में नेट पर 2 छोटी चिड़ियां आ बैठी, इस वजह से एक पॉइंट दोबारा खेलना पड़ा और मेदवेदेव इस फैसले से नाराज भी दिखे। अन्य मैच में अमेरिकन खिलाड़ी बेन शेल्टन ने पोलैंड के

0: अब बात भारत के जूनियर फुटबॉल टूर्नामेंट सुब्रतो कप की।
1: भारत के प्रतिष्ठित अंतर विद्यालयी फुटबॉल प्रतियोगिता सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का 65वां संस्करण इन दिनों पूरे रोमांच के साथ जारी है। इस वर्ष अंडर 15 बॉयज कैटेगरी के मुकाबले कर्नाटक के बेंगलुरु में खेले जा रहे हैं। प्रतियोगिता के मुकाबले जलाहल्ली स्थित एयरफोर्स स्कूल फुटबॉल ग्राउंड और अन्य संबंधित मैदानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। अंडर 15 बॉयज कैटेगरी की प्रतियोगिता की शुरुआत 1 सितंबर 2026 से हुई है, जबकि खिताबी मुकाबला 9 सितंबर 2026 को खेला जाएगा। जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ रही है, देश की विभिन्न राज्यों से आई युवा फुटबॉल टीमें शानदार प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में जगह बनाने की कोशिश कर रही है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन एनसीसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एयरफोर्स स्कूल को 4-0 से हराया। इसके बाद चंडीगढ़ ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए उत्तर प्रदेश को 10-0 के बड़े अंतर से शिकस्त दी। हरियाणा ने आईपीएससी के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया और 5-0 से मुकाबला अपने नाम किया। सिक्किम और सीआईएससीई के बीच खेले गए मुकाबले में सीआईएससीई ने आक्रामक फुटबॉल का प्रदर्शन करते हुए सिक्किम को 12-1 से करारी शिकस्त दी। इसके बाद दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें दिल्ली ने 10-0 से जीत दर्ज की। और फिर उत्तराखंड और बिहार के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। दोनों टीमों के बीच संघर्षपूर्ण खेल के बाद उत्तराखंड ने 1-0 से जीत हासिल की। इसके अलावा मेघालय ने दमन एवं दीव और दादर एवं नगर हवेली को 5-0 से हराया। महाराष्ट्र ने गोवा को 1-0 से मात दी, जबकि आर्मी पब्लिक स्कूल ने गुजरात को 1-0 से हराकर मुकाबला अपने नाम किया। 2 सितंबर के मुकाबलों में खास तौर पर चंडीगढ़, सीआईएससीई और दिल्ली की बड़ी जीत ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। वहीं उत्तराखंड और महाराष्ट्र की 1-1 गोल की जीत ने मुकाबलों में कड़े संघर्ष की तस्वीर पेश की। सुब्रतो कप के इस संस्करण में देश भर की युवा फुटबॉल प्रतिभाएं अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रही हैं। प्रतियोगिता जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, फाइनल की दौड़ भी और रोमांचक होती जाएगी। अब सभी टीमों की नजरें अगले मुकाबले पर है, जहां जीत उन्हें खिताब के और करीब ले जाएगी।
0: फुटबॉल की और खबर दे रहे हैं आकाश।
1: जी हाँ, बिल्कुल, भारतीय फुटबॉल के लिए आज का दिन बहुत अहम है। AFC अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफायर्स में भारत की युवा टीम के सामने होगी एक बड़ी चुनौती। ग्रुप बी के मुकाबले में भारतीय टीम का सामना होगा मेजबान उज्बेकिस्तान से। दोनों टीमों में क्वालिफायर्स में अपने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की थी। ऐसे में आज का मुकाबला न सिर्फ 3 अंकों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ग्रुप बी में बढ़त बनाने की जंग भी है। भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में सीरिया को 1-0 से हराकर शानदार शुरुआत की थी। अब उसकी नजरें उज्बेकिस्तान के खिलाफ एक और मजबूत प्रदर्शन पर होगी।
0: और चलते हैं अब एशियन गेम्स की तरफ। खेल मंत्रालय ने जापान के आईची नागोया में 19 सितंबर से शुरू होने वाले 20वें एशियाई खेलों के लिए 503 खिलाड़ियों के साथ 246 टीम अधिकारियों और सहयोगी स्टाफ वाले भारतीय दल को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने पहले

0: खेलों के लिए 492 खिलाड़ियों को मंजूरी दी थी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक कुछ और नाम जोड़े गए हैं जिनमें मुख्य रूप से एथलेटिक्स दल के खिलाड़ी शामिल हैं। अब भारत के दल में कुल 768 सदस्य होंगे जिसमें दल के 19 अधिकारी भी शामिल हैं। इसमें दल प्रमुख सहदेव यादव और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश पारदीवाला शामिल हैं। चोटिल जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के बिना उतरने वाले 79 सदस्यीय एथलेटिक्स दल को सबसे अधिक 31 सहयोगी स्टाफ की मंजूरी मिली है। इनमें राष्ट्रीय कोच पी राधाकृष्णन के नेतृत्व में 20 कोच शामिल हैं। वहीं एशियन गेम्स में महिला और पुरुष क्रिकेट टीमों के लिए 20 सहयोगी स्टाफ को मंजूरी दी गई है जिसकी अगुवाई वीवीएस लक्ष्मण करेंगे। भारत एशियन गेम्स के 36 खेलों में हिस्सा लेगा। प्रतियोगिता का समापन 4 अक्टूबर को होगा। और हम आपको ये बताएं कि राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले भाला फेंक के एथलीट यशवीर सिंह को जापान में होने वाले एशियाई खेलों के लिए चोटिल नीरज चोपड़ा की जगह 77 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स दल में शामिल किया गया है। ये अभी अभी जानकारी आई है और अब घड़ी की सुइयां कह रही कि आज के हमारे खेल खिलाड़ी कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो अपने दोस्त धर्मेंद्र और
1: आकाश को
0: दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
3: भारत और बेल्जियम ने आज व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिक्षा क्षेत्र में भारत को नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। प्रधानमंत्री ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने इस संबंध में वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बात की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। महिला 2020 क्रिकेट एशिया कप में आज ग्रुप ए में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। किदांबी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। भारत बेल्जियम देशयोः व्यापारो द्विगुणी भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना बेल्जियम मन्त्रिणा बार्ट डी वेबर इत्यनेन सह नवदेहल्यां विहिता शिखरवार्ता। रक्षाक्षेत्रे नवीकरणीय ऊर्जायां च हस्ताक्षरंगताः प्रमुखाः सन्धयः। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन बेल्जियम मन्त्रिणा थियो फ्रेडकन इत्यनेन सह क्षमता निर्माणाय कृता मन्त्रणा। न्यूयॉर्क नगरे समायोजितायां गोष्ठ्यां वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारामन इत्यनया भारतस्य आर्थिक सामर्थ्यं प्रदर्शितम्। तया कृत्रिम प्रज्ञा क्षेत्रे सूचना संग्रह केन्द्रेषु च भारते विद्यमानानां संभावनानां विवरणं प्रस्तुतम्। अपि च किदाम्बी श्रीकान्तः चीन मास्टर्स बैडमिंटन स्पर्धायाः अन्तिमाष्ट चक्रं प्राविशत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारत बेल्जियम देशाभ्याम् अद्य रक्षा सहयोग विषयकेण आशयपत्रेण साकं नवीकरणीय ऊर्जा अन्ताराष्ट्रिय अपराध दमनम् राजनैक प्रशिक्षणं चेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहमति पत्राणि हस्ताक्षरितानि। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अपराह्णे नवदिल्ल्यां बेल्जियम देशस्य प्रधानमन्त्रिणा बार्ट डी वेबर इत्यमुना सह द्वैपाक्षिकीं मन्त्रणाम् अकरोत्। उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां समग्र पक्षैः सह परस्पर हित सम्बद्धानां क्षेत्रीय वैश्विक विषयानां विशदतया समीक्षां विहितवन्तौ। स्वकीये वक्तव्ये प्रधानमन्त्री मोदी प्रावोचत् यत् सम्पूर्णं विश्वं महतः विप्लवस्य संघर्षस्थितेश्च कालखण्डेन गच्छदस्ति। खाद्य इन्धन आपूर्ति श्रृंखलादिषु सर्वेषु क्षेत्रेषु अनिश्चिततायाः प्रभावो दृश्यते। किन्तु एतादृशे काठिन्यमये वातावरणे अपि भारतस्य अर्थव्यवस्था स्वकीयां गतिशीलतां रक्षयति। विगत त्रैमासिके भारतेन 7.8% आर्थिक वृद्धिः समंकिता। सः न्यागादीत् यत् भारतस्य विकास यात्रा अद्य विश्वस्य कृते विश्वासस्य नूतनावसराणां च स्रोतभूतो विद्यते।
1: हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे। फ्रेंड, रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। आज हमने दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई है। हमारी सरकारों और डिफेंस

0: इंडस्ट्रीज के बीच हुए एग्रीमेंट से डिफेंस को डेवलप और को प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे।
1: सेमीकंडक्टर क्षेत्रे बेल्जियम देशस्य विशेषज्ञता अथ च भारतस्य विपुल विस्तारः परस्परं पूरकौ स्तः। अस्मिन् सन्दर्भे बेल्जियम देशस्य आईमेक संस्थानं भारतस्य सेमीकंडक्टर परिवेशेन सह संयोजयितुं कार्यं करिष्यति। अपरत्र बेल्जियम प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर भारतं विश्वस्य बृहत्तम लोकतांत्रिक देशत्वेन तीव्रतम प्रवर्धमान अर्थव्यवस्था रूपेण च श्लाघमानः प्रमुख वैश्विक महाशक्तित्वेन च अभिहितवान्। इतः प्राग् अद्यैव रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः स्व समकक्षेन बेल्जियम रक्षामन्त्रिणा थियो फ्रेडकेन इत्यमुना सह शिष्टमण्डल स्तरीय वार्ताम् अकरोत्। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः न्यूयॉर्क नगरे वैश्विक तेन हिम सरोवराणां विस्फोटेन संभाव्यमान जलाप्लावनस्य हिमस्खलनस्य च विपद सम्मुखीकरणाय सतत सतर्कता पालनाय निर्देशो दत्तः। सचिवेन संसूचितं यत् आपद प्रबंधन दलैः संकटग्रस्त क्षेत्रेषु चतुर्विंशति होराः तीव्र दृष्टिः स्थापनीया। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। भारतस्य सर्वोच्च न्यायालयः श्वः नवदेहल्यां ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मञ्चस्य आयोजनं विधास्यति। अस्मिन् सम्मेलने ब्रिक्स देशानां तथा सहयोगी राष्ट्रानां मुख्य न्यायाधीशाः सहभागिनो भविष्यन्ति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः सूर्यकान्तः उद्घाटन दिवसे रूस चीन इजिप्ट इण्डोनेशिया देशानां न्यायिक नेतृभिः सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति। अस्याः गोष्ठ्याः मुख्यमुद्देश्यं न्यायवितरणे प्रौद्योगिकी उपयोगं तथा अन्ताराष्ट्रिय विवाद निवारणं प्रति सहकार्यं वर्धयितुम् अस्ति। पाटलिपुत्रे गंगा नद्याः जलौघः विपद सूचक रेखाम् अतिचक्राम। अनेन राज्यस्य नूतनेषु भागेषु आप्लाव संकटः आपतितः। देशस्य विभिन्नेषु राज्येषु ऋतु विज्ञानेन वृष्टिपरा संचेतना प्रख्यापिता। पूर्व मध्य प्रदेशे श्वः अतिवृष्टेः संभावनाम् अधिकृत्य ऑरेंज अलर्ट इति संचेतना च निर्गता। सहैव तावत् बिहार उत्तराखण्ड समेत्य सप्त राज्येषु मेघगर्जनैः वज्रपातैः च सह अतिवृष्टिः भविष्यतीति पूर्वानुमानं प्रकटितम्। केन्द्रीय रेलवे मन्त्री अश्विनी वैष्णवः प्रतिपादितवान् यत् भारतीय रेलवे विभागेन वहन क्षमता वृद्ध्यै संकेतन प्रणाल्याः उन्नयनाय अथ च स्वयंचालित द्वार सौविध्य युक्तानां उपनगरीय रेलयानानां प्रचालनार्थं सुव्यवस्थितं कार्यं विधीयते। सः अवोचत् यत् मुंबई नगरे सम्प्रति 18,000 कोटि रूप्यकाणां रेलवे परियोजनानां कार्यं प्रगतिपथि वर्तते। श्रीवैष्णवः अद्य नवदेहल्याः आभासीय माध्यमेन मुंबईतः सिन्धुदुर्ग पर्यन्तं गच्छतः द्रुतगामी रेलयानस्य हरित पताका प्रदर्शन समारोहं सम्बोधयनासीत्। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् पूर्व पश्चिमयोः समर्पित वस्तुवाहन मार्गौ जवाहरलाल नेहरू पत्तनात् देशस्य अन्य भागेषु वस्तु परिवहनं सौविध्ययुतं विधाय महाराष्ट्रस्य औद्योगिक विकासं भृशं सुदृढयिष्यति। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतीय बैडमिंटन क्रीडकेन किदाम्बी श्रीकान्तेन चीन मास्टर्स स्पर्धायां विजय पताका उच्छ्रिता। तेन विश्ववरीयं विक्टर लाई इत्यमुं पराजित्य चतुर्थांश अंतिम चक्रे प्रवेशः सम्प्राप्तः। इति वार्ताः।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 8 से 10 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को नाम
1: राम राम
0: राम राम। और भाई अतुल भाई,
1: जी पायल बहन।
0: देखिए आज बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन हमारा खास कार्यक्रम रहता है, जो रहता है SMS पर आधारित लोक संगीत का कार्यक्रम।
1: बिल्कुल
0: और आज के इस कार्यक्रम का हमारे जितने भी भाई श्रोता हैं, जितने भी भाई बहन हैं, सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्यों ना हो कि भाई आज अपनी फरमाइश के जितने भी कलाकार हैं उन सब की रागनी वो सुनते हैं।
1: सुनते हैं।
0: और भाई बात करें मौसम की, तो मौसम का मिजाज जो है, हाल जो है अतुल भाई, वो धीरे धीरे भाई कभी गर्म हो रहा है, कभी सर्दी हो रही है, मतलब सर्दी यानी कि बारिश हो
1: बारिश
0: जाती
1: हो
0: है
1: रही,
0: तो
1: ठंड हो जाती
0: थोड़ी
1: थोड़ी
0: सी ठंडक हो जाती है,
1: जी।
0: तो ऐसे में और बारिश बंद हो जाती है तो भाई देखिए गर्मी हो जाती है, पसीना आने लगता है, गर्मी लगने लगती है। ऐसे में भाई कुछ लोग हैं ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं, है ना, तो सर्दी गर्मी होती है तो ऐसे में जो है वो जुकाम और खांसी और
1: खांसी का जो
0: बुखार,
1: है,
0: है ना, ये सारी
1: यानी कि हमारे शरीर में हड़कल सी भी बन जाती है और कई बार बुखार भी, बीमारी पड़ जाते हैं।
0: बीमार पड़ जाते हैं, और ये सारी परेशानियां जो हैं इस मौसम में थोड़ा सा अपना
1: ध्यान
0: ज़्यादा
1: रखें।
0: जोर कर रही हैं। तो ऐसे में हम अपने सभी बहन भाइयों से कहेंगे कि भाई अपनी सेहत का, ख़ास तौर से बच्चों की और बुज़ुर्गों की सेहत का इस बदलते मौसम में ध्यान
1: आप
0: रखें।
1: ध्यान रखें।
0: और भाई खान पान का भी इसमें ध्यान, भाई बहुत अहम भूमिका खान पान की रहती है, तो खान पान का भी बहुत अच्छा ध्यान रखें। जैसे कि मोटा अनाज है ना,
1: जी
0: जिसमें कि ज्वार बाजरा रागी का जो सेवन है वो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
1: बिल्कुल। देखिए ये जो आपने बताया है, जैसे हमारे मोटे अनाज हैं, ये पौष्टिक तो होते ही हैं, और देखिए हमारे पाचन तंत्र में भी पायल बहन सुधार होता है। देखिए मोटे अनाजों में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो पाचन क्रिया को ठीक रखता है और कब्ज में भी जो है ये राहत दिलाता है।
0: वजन नियंत्रण करता है अतुल भाई, और इसमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं, जिससे बार बार भूख नहीं लगती और वजन घटाने में भी मदद करता है। और ख़ास तौर से ये जो है ना मोटा अनाज, वो डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं, शुगर के
1: बिल्कुल
0: जो मरीज़ हैं, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें जो है हड्डियों में भी इससे मजबूती आती है।
1: देखिए, जैसा कि आपने बताया ना, हड्डियों मजबूती आती है, तो रागी और बाजरा जैसे जो अनाज हैं उनमें भरपूर कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो हड्डियों को बहुत ही मजबूत बनाता है।
0: दिल
1: और
0: की
1: देख
0: सेहत भी इससे बिल्कुल अच्छी रहती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो हम तो यही कहेंगे अपने सभी सुनने वाले श्रोताओं से कि भाई आप अपने खान पान में पोषण को देखते हुए मोटे अनाजों को अवश्य शामिल करें।
0: बिल्कुल, और आज हमारे जो पहले कलाकार हैं अपने इस कार्यक्रम के, वो हैं पप्पू भारती और ऋषिपाल खदाना, और उनके
1: जी
0: लिए हमारे पास जो है SMS आ
1: आ
0: चुके हैं।
1: चुके हैं और ये समय समय मिला है कुलम रोड हरगोविंद नगर नवा शहर पंजाब से भेजने वाले हैं सुरेंद्र संधू, अनीता संधू और इनका पूरा परिवार। और ये SMS हमारे पास में आया है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से भेजने वाले हैं सुरेश ग्रोवर और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से भेजने वाले हैं अनिल मोहन और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से भेजने वाले हैं कीर्तनपुरी गोस्वामी और इनका पूरा परिवार। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से भी हमें फरमाइश भेज रहे हैं मोहम्मद सईद अब्बासी और इनका पूरा परिवार।
0: ये फरमाइश हमें मिली है मेरठ कैंट से, भेजने वाले भाई हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। ये फरमाइश हमें भेजी है कबीर रेडियो श्रोता संघ डंडी लोहारा बलौद से, छत्तीसगढ़ से भेजने वाले भाई हैं देवशंकर तामूरिया और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश हमें मिली है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, भेजने वाले भाई हैं लालगिरी गोस्वामी और परिवार के सभी सदस्य। जिला पीतल नगरी ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से ये हमें फरमाइश भेजी है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप और परिवार के सभी सदस्यों ने। कनेरा मोहल्ला पटियाला से भी हमें फरमाइश

0: भाई हैं, भेजने वाले भाई हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और परिवार के सभी सदस्य।
1: जीटीवी मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से फरमाइश भेज रहे हैं मोहम्मद अनवर अंसारी और इनका पूरा परिवार। हांडी खेड़ा जिला सिरसा से फरमाइश भेज रहे हैं राधेश्याम शर्मा और इनका पूरा परिवार। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से भी हमारे पास में फरमाइश आई है, भेजने वाले हैं हीरामणि वर्मा और इनका पूरा परिवार। सूरतगढ़ राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं भूपेंद्र मिशन और इनका पूरा परिवार। वडिंगखेड़ा पंजाब से भी फरमाइश भेज रहे हैं मिंटू टॉम्स, पिंकी और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में ये पायल बहन गांव लेलौड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश से भेजने वाले हैं जगमोहन सिंह प्रजापत और प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में ये है करावल नगर दिल्ली से भेजने वाले हैं श्री रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी और इनका पूरा परिवार।
0: ये फरमाइश हमें भेजी है बेहरवाला खुर्द सिरसा से, भेजने वाले भाई हैं बलवंत जाखड़, ममता जाखड़ और परिवार के सभी सदस्य। हनुमानगढ़ टाउन से भी हमें फरमाइश भेजी है सुल्तान सिंह टाड़, कृष्ण मुकेश और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से भी हमें फरमाइश भेजी है, भेजने वाले भाई हैं मुशरत जहां नाज बहन हैं और इनके परिवार के सभी सदस्य। पठान टोली कलेर से फरमाइश भेजी है निखत प्रवीण और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। ये फरमाइश हमें भेजी है नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से, भेजने वाले भाई हैं अकरम हुसैन बेगम इशरत अकरम और इनके परिवार के सभी सदस्य। और ये फरमाइश हमें मिली है ग्राम पंचायत भटेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले भाई हैं बलकरण वर्मा और परिवार के सभी सदस्य।
1: पटेल नगर मेलौट से फरमाइश भेज रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरी और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है गांधीनगर गुजरात से, भेजने वाले हैं सुरेश राठौड़ और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है खोकरावली से, भेजने वाले हैं विनोद बाराशा और इनका पूरा परिवार। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से फरमाइश भेजे हैं रजाक मोहम्मद समीम बेगम और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से, भेजने वाले हैं सत्येंद्र कुमार चंसोलिया और इनका पूरा परिवार। पलारी छत्तीसगढ़ से भी हमारे पास में फरमाइश आई है, भेजने वाले हैं नीतीश कुमार देवांगन और इनका पूरा परिवार। तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर पप्पू भारती और ऋषिपाल खदाना की आवाज़ में ये रागनी, किस्सा होगा हरिश्चंद तारावती।

0: तो अतुल भाई, ये रागनी हमने अपने सभी भाई बहनों को सुनवाई हरिश्चंद्र तारावती के किस्से में, और मौका वो जब जो है हरिश्चंद्र को हरिश्चंद्र के बेटे रोहतास कंवर की जो है वो मृत्यु हो जाती है, और जब उसे लेके जाते हैं शमशान में, तो उस मौके पे राजा हरिश्चंद्र की और उस शमशान के मालिक की आपस में जो बातचीत होती है, उस मौके की रागनी हमने अपने सभी बहन भाइयों को सुनवाई।
1: बिल्कुल। और अगले जो हमारे कलाकार हैं वो हैं देवेंद्र सिंह, और इनके लिए भी हमारे पास में SMS आ गए हैं। ये SMS हमें मिला है ब्रज विहार कॉलोनी मुरादनगर।

0: गाजियाबाद से भेजने वाले हैं करमबीर सिंह ढिलोड़ और इनका पूरा परिवार। चंडीगढ़ से हमें SMS भेज रहे हैं सतीश अनेजा, विमला अनेजा उनका पूरा परिवार। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से फरमाई भेजे PS नाहवकर और इनका पूरा परिवार। मलकापुर महाराष्ट्र से फरमाई भेजी है नारायण इंगले और तोपान तायड़े ने, सोपान तायड़े जी ने। और ये फरमाइश हमारे पास में आई है गांव खारी अढ़ानी जिला सिरसा हरियाणा से भेजने वाले हैं सतवीर सिंह बिजनारिया और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है भाई बड़ाली देशमुख महाराष्ट्र से भेजने वाले हैं राजेश खोबर खेड़े और इनका पूरा परिवार।
1: ये फरमाइश हमारे पास आई है भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से भेजने वाले भाई हैं रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश हमें भेजी है साहू नगर यवतमाल से भेजने वाले भाई हैं राहुल मनवर, सरला मनवर और परिवार के सभी सदस्य। भिलाई छत्तीसगढ़ से भी हमें फरमाइश भेजी है मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और परिवार के सभी सदस्यों ने। पद्मा टॉकेज नेपा नगर मध्य प्रदेश से फरमाइश आई है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह और परिवार के सभी सदस्यों की। संदीप मक्कड़ और ज्योति मक्कड़ ने भी हमें फरमाइश भेजी है और इनके सभी परिवार के सभी सदस्यों ने भेजी है। पिंगावाला चौक गोरेया जालंधर से ये फरमाइश भेजी गई है। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से भी फरमाइश आई है मुकेश गोस्वामी और मधु गोस्वामी और इनके परिवार के सभी सदस्यों
0: तो
1: की।
0: सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर देवेंद्र सिंह की आवाज़ में ये राग।

सबका भरता पेट बखत पे राम भरोसे परीजा सबको देता तोल तोल के।

0: शांति का फल सफल कमाई, सबर करे सुख हो सब। बहुत ही बढ़िया उपदेशक रागनी हमने अपने सभी बहन भाइयों को सुनवाई देवेंद्र
1: देवेंद्र
0: सिंह
1: सिंह
0: की
1: की आवाज
0: आवाज में।
1: में। और देखिए अगले जो हमारे कलाकार हैं वो हैं ज्ञानेंद्र सरदाना। के लिए भी हमारे पास में SMS आ गए हैं। ये SMS हमें मिला है बक्सर बिहार से भेजने वाले हैं सरफुद्दीन अंसारी और इनका पूरा परिवार डुमराव बिहार से हमें फरमाइश भेज रहे हैं। डॉक्टर W अंसारी और इनका पूरा परिवार सारनपुर बक्सर से भी फरमाइश भेज रहे हैं। राजेश डी अंसारी और इनका पूरा परिवार छत्तीसगढ़ के दतरंगी से हमें फरमाइश भेज रहे हैं। भागवत वर्मा और इनका पूरा परिवार डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेज रहे हैं। राजपाल गजबी और उनका पूरा परिवार कोटवा नारायणपुर बावापट्टी बलिया से फरमाई भेज रहे हैं। ओम प्रकाश राय और इनका पूरा परिवार दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से फरमाई भेज रहे हैं। प्रतीक राय और इनका पूरा परिवार
0: भटिंडा रोड मंडी डब्वाली से ये फरमाइश भेजी है राजेंद्र नागर और परिवार के सभी सदस्यों ने। गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से ये फरमाइश भेजी है रमेश कुमार कंबोज और परिवार के सभी सदस्यों ने। ये फरमाइश हमें मिली है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। भेजने वाले भाई हैं ताज मोहम्मद अंसारी और परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश सहारनपुर से हमें भेजने वाले भाई हैं सैयद मसरूर और परिवार के सभी सदस्य। खैल बाजार पानीपत से फरमाइश भेजी है नरेश मल्होत्रा नीटू और परिवार के सभी सदस्यों ने। ये फरमाइश हमें मिली है छत्तीसगढ़ से भेजने वाले भाई हैं जीतू ध्रुव और परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश भोला कॉलोनी घरोंडा जिला करनाल हरियाणा से भेजी है। भेजने वाले भाई हैं विजेंद्र कुमार जयजान और परिवार के सभी सदस्य।
1: जिला नांदेड़ ऐताला महाराष्ट्र से फरमाइश भेज रहे हैं शंकरलाल जायसवाल और उनका पूरा परिवार। तेजपाल सिंह प्रजापत और हमें फरमाइश भेज रहे हैं चिट्टा मंदिर रोड यमुनानगर से भेज और भाई ये अपने सभी परिवार के साथ हमें ये फरमाइश भेज रहे हैं जो सुनना चाहते हैं ज्ञानेंद्र सरदाना को ही। ये फरमाइश हमारे पास में ये छत्तीसगढ़ हसदा नंबर 2 से भेजने वाले हैं कमलेश कुमार साहू और इनका पूरा परिवार। और सादुल शहर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं राम कुमार रेवाड़ और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में ये है दुर्गा कॉलोनी हांसी से भेजने वाले हैं राजू मिगलानी और इनका पूरा परिवार। गांव कलना तहसील बादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं विक्रम कडवासरा और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश आई है गांव फरांसी जिला हिसार से भेजने वाले हैं राजकुमार डूडी और इनका पूरा परिवार। तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर ज्ञानेंद्र सरधाना की आवाज़ में ये रागनी।

0: गीत ब्याह के गाए जा रे, रात रात भर नचे हुए कंगना राखड़ी।
1: तो पायल बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे ज्ञानेंद्र सरदाना की आवाज़ में ये रागनी और किस्सा था हीर रांझे का। और इसी रागनी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी राम राम, राम। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुत करता है तुषार पारासर।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 386.3 मीटर अर्थात 800

0: इस किलो हर्ट्स। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और बेल्जियम ने आज व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश और एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिक्षा क्षेत्र में भारत को नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। किदाम्बी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में कनाडा के विक्टर लाई को हराया, जबकि सात्विक और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव को हराया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला तनिषा क्रेस्ट्रो को हार का सामना करना पड़ा। महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप में आज ग्रुप ए में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत ने पहले मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। आइए श्रोता, आप सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55

0: केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को नमस्कार। गौतम, अगर बात करें हम आज के कार्यक्रम किसान वाणी की, तो आज हम बहुत सारी चीजें हमारे सभी किसान मित्रों के लिए, सभी सुनने वालों के लिए लेकर आए हैं इस कार्यक्रम में।
4: बिल्कुल, बहुत सही कहा आरती आपने। और हमारी कोशिश होती है कि किसान भाइयों बहनों को नई नई जानकारियों से अवगत कराना, जिसमें हम बात करते हैं एक योजना के बारे में, उसके बाद अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं विशेषज्ञ को भी, जो कि एक विस्तार से चर्चा करते हैं, जिससे कि किसान भाइयों को नई नई जानकारी वो मिलती रहे। उसके बाद बाजार भाव, मौसम की भी बात करते हैं,
3: और साथ ही साथ इस समय पर हमारे किसान मित्रों को क्या कुछ अपने खेतों में करना चाहिए, इसके लिए विशेष तौर पर कृषि सलाह भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। सबसे पहले एक बहुत विशेष योजना जो आपके बड़े काम की है, हम बात करने वाले हैं गौतम आज एकीकृत कृषि विपणन योजना के बारे में। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, और इसका उद्देश्य देश में कृषि विपणन, भंडारण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।
4: बिल्कुल, एकीकृत कृषि विपणन से जो किसान हैं वो अपनी उपज को सुरक्षित रखकर उचित समय पर बेच सकते हैं और बाजार की जो सही जानकारी मिलने में आसानी होती है इस योजना के तहत।
3: जी बिल्कुल, और देखिए बहुत सारी चीजें जिससे इनका फायदा वो उठा सकते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे जो किसान मित्र है उनको एक बेहतर बाजार उपलब्ध हो जाए, साथ ही साथ उनकी जो उपज है उसका जो मूल्य है वो भी सुनिश्चित हो जाए।
4: बिल्कुल, बहुत सही कहा आरती आपने। और किसान अपनी मेहनत से अनाज, फल, सब्जियां, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों का जो है उत्पादन करता है, लेकिन उत्पादन के बाद अगर उनको उचित बाजार और उचित मूल्य न मिले तो कई बार किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
3: जी बिल्कुल, देखिए योजना का महत्व तो बढ़ ही जाता है, और जब हमारे किसान मित्रों से हम बात करते हैं किस तरह से उनको इसका फायदा मिलता है तो बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है। एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि उनको जो मार्केटिंग है उसमें काफी सहूलियत मिल जाती है कि किस तरह मार्केटिंग कर सकते हैं, अपना जो सामान है बाजार तक कैसे लेकर जाए, इसकी सुविधा उपलब्ध है, कई जगह पर सब्सिडी भी उपलब्ध है। ये सारी चीजें इस योजना के तहत हमारे किसान मित्रों को मिलती हैं।
4: जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं आरती की एकीकृत कृषि विपणन योजना वो किसानों को खेत से बाजार तक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और इससे कृषि उपज की बर्बादी कम हो सकती है, किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा और कृषि क्षेत्र जो है अधिक संगठित और प्रतिस्पर्धी बन सकती है।
3: और गौतम, योजना की हमने बात तो कर ली, लेकिन आज के कार्यक्रम में हम एक खास विषय भी लेकर आए हैं, उस विषय के बारे में भी अपने साथी को बता देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कृषि अवशेष और जैविक कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस के बारे में।
4: जी बिल्कुल, भारत में कृषि कार्यों की बात करें अगर आरती, तो इसके दौरान बड़ी मात्रा में कृषि अवशेष जैसे पराली, भूसा, फसल के डंठल, गोबर तथा अन्य जो जैविक कचरा उत्पन्न होता है उसका उचित प्रबंधन अगर ना किया जाए तो ये पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं। और कृषि अवशेष जैविक कचरे का उपयोग करके कंप्रेस्ड बायोगैस बना सकते हैं, जो आज का हमारा विषय भी है।
3: बिल्कुल सही कहा गौतम, सबसे बड़ी बात यह है कि पराली और कृषि अवशेष का उचित प्रबंधन हो जाता है, वायु प्रदूषण नहीं होता, पराली जलाने की जो समस्या है ये भी बहुत हद तक कम हो जाती है।
4: जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने आरती। और विषय कृषि अवशेष और जैविक कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस कैसे बनाया जाता है, आज के जो विशेषज्ञ हैं वो है डॉक्टर मोहन जी सक्सेना, आप डेयरी विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली में।
5: सक्सेना जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
6: धन्यवाद।
5: सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि ये CBG यानी कंप्रेस्ड बायोगैस क्या है।
6: कंप्रेस्ड बायोगैस ये हमारे जो कृषि के अवशेष हैं या पशुधन में जो गोबर का अंश होता है उसके अवशेष हैं, उनसे फर्मेंटेशन की प्रतिक्रिया के द्वारा, एनारोबिक फर्मेंटेशन कहते हैं, ऑक्सीजन नहीं रहती है, तो जो उसका कार्बनिक तत्व होता है वो मुख्यतः बायोगैस के रूप में, जिसमें मीथेन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, थोड़ी बहुत सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, इसका उत्पादन होता है। और ये हमारे देश में बहुत समय से प्रचलित रहा है कि गोबर के द्वारा उससे ऊर्जा एवं उर्वरक का निर्माण किया जाए।
5: जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन ये कृषि अवशेष और जो जैविक कचरा है, इससे CBG यानी कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने की क्या प्रक्रिया रहती है?
6: अब जो हमारे कृषि अवशेष, खास तौर से जो धान की पराली है या शुगर केन टॉप है या और भी ऐसे तमाम सारे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के वेस्ट निकलते हैं, उन सब में ऐसे तत्व होते हैं जिनको फर्मेंट करके गैस बनाई जा सकती है और उस गैस का शुद्धिकरण करके अर्थात उसमें

0: से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल करके मीथेन की मात्रा बढ़ा के करीब 95% तक ले जाते हैं और उसको फिर कंप्रेस्ड कर देते हैं उच्च दबाव पे और उसको सिलेंडरों में भर देते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है और जहां भी ऊर्जा की आवश्यकता हो वहां पे उसको गैस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और यदि जरूरत पड़े तो उससे वाहन को भी चला सकते हैं, बिजली भी पैदा कर सकते हैं। तो ये पिछले लगभग 5-10 सालों में कंप्रेस्ड बायोगैस जो अभी तक अनुसंधान का विषय था इसको जो है भारत सरकार ने सतत विद्युत उत्पादन योजना के तहत इसको बहुत बढ़ावा दिया है और आज देश में हमारे ऐसे स्थानों पे जहाँ पे ये कृषि अवशेष और जैविक अवशेष जिसमें मुख्यतः गाय और भैंसों का गोबर आता है उपलब्ध है या जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगी हुई है या जहाँ पे शुगर मिल्स लगी हुई हैं उनके यहाँ से जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उसको कंप्रेस्ड बायोगैस की विधि से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने का कार्य बहुत ही जोर शोर से चल रहा है।
1: जी बिल्कुल है, जिस तरीके से आपने बताया कि जो भी हमारे कृषि अवशेष जैसे धान की पराली हो गया, भूसा हो गया और जो हमारे पशुओं से निकला हुआ गोबर हो गया या अन्य जो भी जैविक उत्पाद जो घरों से निकलते हैं, क्या ये सभी प्रयोग किए जा सकते हैं?
0: इसमें से मुख्यतः जो कह लें कि हमारे यहाँ आवश्यकता होती है कि कैसे हम ऊर्जा की आपूर्ति करें और साथ ही साथ जो भूमि की उर्वरा शक्ति है उसको भी बढ़ाएं, तो इसमें जो ये सीबीजी का उत्पादन होता है इसमें कंप्रेस्ड बायोगैस तो मिलती ही मिलती है, साथ में ही दो तत्व और मिलते हैं। एक जो इसमें से निकलने वाला जिसको कहते हैं कि वॉश जो लिक्विड निकलता है वो बहुत ही उसमें उर्वरक शक्ति होती है और दूसरा उसका प्रयोग जो इसमें स्लरी निकलती है उसमें से जो ठोस तत्व होते हैं उनको खेतों में डालने का काम होता है क्योंकि उनमें कार्बन नाइट्रोजन का अंश काफी कुछ होता है और ऐसे जैविक कीटाणु होते हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो आज हमारे यहाँ पराली की भी जो एक पर्यावरण से संबंधित है कि किसान जो है उसको जलाते थे तो अब उनको चूंकि उस पराली के अच्छा मूल्य मिलने लगा है और वो पराली की चाहे ब्रिकेट बना के उसका इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में भी होता है और उसको जो है वो पशु के चारे में भी होता है और एक तरीके से देखा जाए कि वापस से हम उसी प्रणाली में पहुंच गए जहां पे कोई भी अवशेष बचता नहीं है और सबका सब जो जमीन से लिया कृषि उत्पाद वो जमीन में ही वापस चला जाता है और साथ में हमें ऊर्जा और उर्वरक की प्राप्ति हो जाती है।
1: कहने का मतलब यह है कि पराली का भी ठीक से प्रबंधन हो जाता है और पराली द्वारा जो हमारे किसान भाई कभी कभी उसको जलाते थे जो हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता था उससे भी राहत
0: अब उससे भी राहत मिलेगी और चूंकि उसका उन्हें आर्थिक मूल्य मिलेगा तो इसलिए वो निश्चित रूप से अब उसे जलाने का निर्णय नहीं करेंगे।
1: तो जिस तरीके से आपने सीबीजी की बात करी उसमें बायोगैस की बात करी तो इसमें कौन कौन से प्रमुख चरण होते हैं कि जिससे बायोगैस बनती है?
0: इसमें मुख्य तो एक होता है गैस का उत्पादन
1: जी।
0: ये पहला चरण है, उसके लिए फर्मेंटर लगते हैं। उन फर्मेंटर में चाहिए होता है कि हमको जो ईंधन के लिए कृषि के उत्पाद को पल्वराइज करके गोबर को साफ करके उसमें मिलाते हैं और साथ में पानी मिलाते हैं जिससे स्लरी बन जाती है और ये चैम्बर चूंकि एनोरोबिक होते हैं इनमें हवा कहीं से नहीं जाती इसलिए यहाँ पे फर्मेंटेशन होता है। अब जो गैस बनती है ये एक दूसरे चैम्बर में जाती है जहाँ ये एकत्रित होती है और उसमें से गैस का शुद्धिकरण होता है जिसमें मॉइस्चर भी हम पाइपलाइन से निकाल लेते हैं और साथ में जो मुख्य है कार्बन डाइऑक्साइड जो लगभग 28-32% होती है उसको भी हम इसमें अतिरिक्त दबाव दे के उसको पानी में घोल के निकाल लेते हैं और जो बचती है वो बचती है मीथेन गैस जिसको हम तीसरे चैम्बर में एकत्रित करते हैं और वहां से फिर उसको ले जा करके कंप्रेस करते हैं, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है कंप्रेस्ड बायोगैस। तो एक तरीके से 95% शुद्धता वाली मीथेन गैस को सिलेंडरों में भरते हैं।

0: है और वो कंप्रेस्ड बायोगैस बन जाती है।
1: तो ये कंप्रेस्ड बायोगैस का उपयोग क्या सीएनजी के तौर पे भी किया जा सकता?
0: जिस तरीके से हमारी यहाँ पाइप्ड गैस आती है घरों में या जो गाड़ियों में भरी जाती है
1: जी
0: नेचुरल गैस, तो वो सिलेंडर्स होते हैं, तो इसको भी सिलेंडर्स में भर के एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं और इनको वाहन चलाने में भी प्रयोग किया जा सकता है। और प्रयोग तो बड़े सफल हुए हैं, जो संस्थाएं जिन्होंने इसको अपनाया है कि वो दूध लाने वाली गाड़ियां हैं या जो चारा ले जाने वाली गाड़ियां हैं, फीड ले जाने वाली गाड़ियां हैं, वो सब उन्हीं सिलेंडरों से चलती हैं। और उसमें एक तरीके से कह लें कि वो पोल्यूशन फ्री फ्यूल है जो कि हमारे को बायोगैस के द्वारा मिलता है।
1: जी डॉक्टर साहब, ये तो बात रही गैस की, लेकिन जब हम कंप्रेस्ड बायोगैस का निर्माण करते हैं तो उसमें कुछ सैलरी भी निकलती है,
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही
1: वो
0: कहा
1: किसानों
0: आपने।
1: के लिए किस तरीके से उपयोगी है?
0: जिन लोगों ने बायोगैस के प्लांट लगाए हुए हैं उनका मुख्य बिंदु था कि हमें बायोगैस बनाना है और उन्होंने अपना सारा आर्थिक दृष्टिकोण बायोगैस तक सीमित रखा। लेकिन उनको फिर अनुभव हुआ कि इसमें तो जो स्लरी निकल रही है और जो सॉलिड निकल रहे हैं टैंक से, उनकी उर्वरा शक्ति बहुत अच्छी है। और चूंकि उनकी जानकारी में आया कि इसको खाद बना के इसमें कुछ और तत्व मिला के ये संपूर्ण खाद का काम कर सकते हैं, और यदि इसको खेतों में डाला जाए तो उपज बढ़ जाती है, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में बहुत सारी उनको मदद मिलती है, और एक तरीके से देखा जाए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी कम करना पड़ता है, तो उसकी लागत कम हो जाती है। तो अब तीनों आयाम हैं कि
1: जी
0: बायोगैस मुख्य उसका आर्थिक स्रोत है, दूसरा स्लरी, और उसमें से निकलने वाला जो सॉलिड तत्व है वो जो कि कंपोस्टिंग में जाता है।
1: तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने सैलरी का जिक्र किया, क्या ये जैविक खाद की तरह प्रयोग किया जा सकता है इसको?
0: निश्चित रूप से कुछ लोग केचुए के भी इसमें मिश्र करते हैं जिससे कि वर्मी कंपोस्ट बन जाती है, कुछ लोग इसमें कीटाणु मिलाते हैं, कुछ इसमें जीवाणु का अंश डालते हैं, जिससे तरह तरह के खाद बन जाती है जो कि हमारे खरीफ की फसल और रबी की फसल में बहुत ही उपयोगी रहती है।
1: तो डॉक्टर साहब, हमारे सभी किसान भाई सीपीजी प्लांट नहीं लगा सकते, या
0: निश्चित रूप
1: सभी
0: से
1: के पास
0: बिल्कुल सही
1: बायोगैस
0: कहा।
1: संयंत्र नहीं है, लेकिन जो कृषि अवशेष है वो सभी किसानों के पास उपलब्ध रहता है, या
0: बिल्कुल
1: जो पशु पालते हैं उनके पास भी गोबर रहता है, तो इसको किस तरीके से वो बेच सकते हैं?
0: देखिए, पिछले 5 सालों में ये एक प्रयोग के तौर पे और सरकार के सहयोग से सतत विद्युत उत्पादन योजना के अंतर्गत जो राष्ट्रीय बायोगैस की नीति बनी, इसमें प्लांट लगाए गए और उसके जो परिणाम मिले उसके आधार पे बहुत सारे अवसर पैदा हुए। उनमें एक अवसर ये पैदा हुआ कि हर किसान बायोगैस प्लांट नहीं लगा सकता
1: जी
0: है, तो क्यों ना वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर एक सामूहिक रूप पे कोऑपरेटिव मॉडल पे सरकार गांव स्तर पे बायोगैस प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहन देती है, और युवा लोगों को कि आप गोबर कलेक्ट करें और वहाँ पे ले जाके उसको दें, आपको भी रोजगार के अवसर मिलेंगे, आपको भी उससे फायदा होगा, और जो बायोगैस प्लांट चलेगा उससे जो आमदनी होगी वो किसान को ही लोगों को, क्योंकि आज आपको जान के आश्चर्य होगा कि 4 रुपए से लेके 20 रुपए तक किसानों को गोबर का मूल्य मिल रहा है। तो जिसको वो छोड़ देते थे
1: जी
0: ऐसे ही नाली में बहा देते थे या ढेर लगा के खाद बनती रहती थी, अब उसके प्रति वो बहुत जागरूक हो गए हैं। और इसमें सरकार की भी तरह तरीके की योजनाएं आ रही हैं जिसमें ना केवल बायोगैस प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि उन्होंने ये सर्विस प्रोवाइडर जो एक तरीके से नए नए अवसर रोजगार के कुंभ हैं, अब जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारे यहाँ काफी विकसित हो रही है, तो उनकी जो भी पील है, जो भी चीजें निकलती हैं, उन सब का प्रयोग उस एरिया में, तो बायोगैस तरह तरह के उत्पादों से बन रही है। जहां जो चीज उपलब्ध है उस चीज से बायोगैस बनाने का कार्य चल रहा है, जहां गोबर है वहां गोबर से, जहां कृषि उत्पाद और गोबर दोनों हैं वहां पे दोनों से, जहां शुगर कैन टॉप भी है वहां शुगर कैन टॉप से भी, और

0: वो भी कृषि अवशेष है, उससे बनाने का कार्य हो रहा है।
1: तो डॉक्टर साहब, इसमें क्या छोटे और सीमांत किसान हैं वो भी इसका लाभ ले सकते हैं?
0: असल में इसका सही माने में तो लाभ हमारे छोटे किसानों को मिलेगा, और आज किसानों को तकनीकी से जोड़ा जा रहा है, उनके गांव स्तर पे ऐसी योजनाएं जा रही हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार की और जो जिला स्तर की, कि जहां पे वो किसान आपस में मिलके एक समूह बना के, जिसको कहते हैं कि कस्टम हायरिंग सेंटर बन रहे हैं, कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंडिविजुअली हमारे किसान नहीं अपना सकते, उसको सामूहिक ग्रुप बना के और एक केंद्र वहां पे बना के, जिससे कि सभी को उसका लाभ मिल सके। तो उनमें से ये बायोगैस की भी योजना है।
1: तो ये सीवीजी प्लांट लगाने के लिए सरकार मदद कर रही है।
0: बहुत मदद कर रही है, क्योंकि इससे जो ऊर्जा पैदा हो रही है, ये हमारा जो आयात होता है फॉसिल फ्यूल का, एक कच्चे तेल का जो आयात होता है, उस पे इसका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव है। इसीलिए सरकार ने इस ओर इतना ध्यान इसको बढ़ाने का फैसला किया है।
1: तो क्या इसमें जो हमारे ग्रामीण युवा हैं उनके लिए कुछ रोजगार की संभावनाएं हैं?
0: बहुत संभावनाएं हैं। हमारे जो युवा हैं आज की समय में, इस तरीके के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो युवा हैं उनको इस चीज का प्रशिक्षण मिले कि जो गांव में कृषि एवं पशुपालन से बचे हुए अवशेष हैं, जिनमें गोबर भी है, जिनमें पराली भी है, जिनमें गेहूं का भूसा भी है, जिसमें गन्ने की शुगर केन टॉप भी है, उन सब का निस्तारण वैज्ञानिक तरीके से किस तरह से करें और उससे आर्थिक लाभ कैसे पाएं, और अपने यहाँ पानी का किस तरीके से कंजर्वेशन हो और जो अवशेष हैं उनका सही तरीके से प्रयोग हो, जिससे उनके लिए रोजगार के अवसर और आर्थिक उत्थान उनका हो सके।
1: किसी कार्य करने के लिए उसमें चुनौतियां भी होती हैं, तो इसमें
0: निश्चित रूप से चुनौतियां भी होती हैं। चुनौतियां किस तरीके की होती हैं? उनमें तकनीकी से संबंधित होती हैं कि टेक्नोलॉजी में कोई फ्लॉ है, या बहुत सारी ऐसी होती हैं जो नीतिगत हैं कि पॉलिसी की वजह से उसमें कोई कमी रह जाती है। तो इस तरीके के जो चुनौतियां हैं, और इसमें एक विषय ये भी आता है कि सरकार इसको प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन बैंकों का भी होता है
1: जी
0: बहुत बड़ा रोल, कि वो इसके लिए लोन देने के लिए तैयार रहते हैं, तो लोन की गारंटी कौन लेता है। तो ये सारी योजनाएं संपूर्ण रूप से बनाई गई हैं कि अगर टेक्नोलॉजी सही है, इससे प्रोडक्ट सही बन रहा है, तो इसको एडॉप्ट कैसे करें हमारे युवा, या जो समूह बना के कर रहे हैं, या जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उनके लिए भी अवसर इस तरह के हों जिसमें कि उनके चार पैसे बच सकें और लोगों को रोजगार मिल सके और पर्यावरण की रक्षा हो सके और जो हमारे प्राकृतिक साधन हैं उनका सही तरीके से सदुपयोग हो सके।
1: अंत में आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इस तकनीक से जुड़ करके अपनी आय बढ़ा सके?
0: हमारे जो किसान भाई और बहनें हैं, उसमें दो तरीके के अमूमन हम लोग देखते हैं। एक उसी तरीके से खेती कर रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने देखा कि उनके माता पिता करते थे, और जो कृषि में नई नई टेक्नोलॉजी आई, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई, पानी बचाने की बहुत सारी आ गई, सिंचाई करने के लिए ड्रोन आ गए, तो मेरा हमेशा उन सब से ये आग्रह रहता है, आज का ये युग है, ये तकनीकी का युग है, इसमें ज्ञान विज्ञान और तकनीकी को अपनाएं और इस मुख्य धारा से जुड़ें, और ज्यादा से ज्यादा उपज किस तरीके से ली जाए, ये आज के जो सरकार है इसके प्रति बहुत ही जागरूक है और कर्तव्यबद्ध है कि किसानों को टेक्नोलॉजी का एडॉप्टेशन होना चाहिए। बायोगैस उनमें से एक प्रतिक्रिया है, ड्रोन उसी के प्रणाली में है, तो बहुत कुछ एक हमारे गांव का स्वरूप बदल रहा है।
1: जी बिल्कुल, डॉक्टर मोहन जी सक्सेना जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस तरीके से कृषि अवशेष और जैविक कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस तैयार की जा सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आपने सुना कृषि अवशेष और जैविक कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस किस तरह से बनाई जा सकती है, और इस विषय पर बात कर रहे थे डॉक्टर मोहन जी सक्सेना, डेयरी विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली से। और गौतम देखिए बहुत खुशियों का माहौल बना हुआ है, कल जन्माष्टमी भी है, तो इस अवसर पर क्यों ना एक कृष्ण भजन सुना जाए चंद्रपाल और

0: किसान भाइयों बहनों, अभी आप सुन रहे थे चंद्रपाल और साथी की आवाज में ये कृष्ण भजन।
1: और साथियों, अब समय हो गया है कि आप तक जानकारी पहुंचाएं मौसम के हाल की। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार कल दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा और गरज चमक की चेतावनी जारी की गई है। इस क्षेत्र में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर भारी से मध्यम वर्षा होने की आशंका जताई जा रही है।
0: वहीं अगर तापमान की बात करें आरती, अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
1: साथियों, अब आपको बताते हैं मौसम आधारित कृषि वैज्ञानिक सलाह। धान की फसल इस समय मुख्यतः वानस्पतिक वृद्धि बाली बनने वाली स्थिति में है, इसलिए फसल में कीटों की निगरानी करें। तना छेदक कीट की निगरानी के लिए आप फिरोमन प्रपंच 3 से 4 प्रति एकड़ लगाएं।
0: बिल्कुल, वहीं आरती, अगर किसान इस समय अगेती मटर की बुआई कर रहे हैं तो उनके लिए बीज की व्यवस्था कर लें और खेतों को पूरी तरह से तैयार कर लें।
1: साथ ही साथ किसानों को ये भी सलाह दी जाती है कि इस समय सरसों, साग पूसा, सागे, मूली, समर लौंग, पालक ऑल ग्रीन, पूसा ज्योति तथा धनिया पंत हरितमा या सकर किस्मों की बुआई मेड़ों यानी कि उथली क्यारियों पर कर सकते हैं आप।
0: वहीं अगर किसान भाई कद्दू वर्गीय सब्जियों को ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि वर्षा से उन लताओं को गलने से बचाया जा सके।
1: तो साथियों, ये थी मौसम आधारित कृषि वैज्ञानिक सलाह। अब जानते हैं आजादपुर मंडी से प्राप्त बाजार भाव।
0: बिल्कुल आरती, बहुत सही कहा आपने। आलू की अगर हम लोग बात करें तो आलू जो है बाजार में 15 से 18 रुपए प्रति किलो, प्याज की बात करें तो 35 से 45 रुपए प्रति किलो, टमाटर की बात करें तो 25 से 35 रुपए प्रति किलो, बैंगन की बात करें तो 20 से 30 रुपए प्रति किलो और बीन्स की बात करें तो 40 से 60 रुपए प्रति किलो मिल रहा है।
1: जी गौतम, सब्जियों की बात तो हो गई, आइए जानते हैं क्या है फलों के भाव। सेब 100 से 150 रुपए प्रति किलो, वहीं केले की बात करें तो ये भी 30 से 35 रुपए प्रति किलो। अमरूद की बात करते हैं तो ये 60 से 90 रुपए प्रति किलोग्राम। मौसम्बी की बात करें तो 30 से 40 रुपए प्रति किलोग्राम।
0: तो आरती, अपने किसान भाइयों के साथ बहुत सारी जानकारियों से भी उनको अवगत कराया और अब समय है कि किसान भाई अपना सुझाव और प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारा ईमेल आईडी है वो है feedback@gmail.com। आप हमें अपनी सुझाव और प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें।
1: जी साथियों, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। किसानवाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम गीत और गज़ल और कव्वाली का।

जो तो अभी आपने सुनी ये खूबसूरत सी गज़ल लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाज़ में, और अब वक्त है गज़ल की दुनिया में एक और ऐसे शानदार फनकार को सुनने का जिनकी आवाज़ में जो है नज़ाकत भी थी, दर्द भी था और मोहब्बत की एक खास मिठास भी है। तो चलिए अगली हम आपको जो गज़ल सुनाने जा रही हैं वो है पंकज उदास की आवाज़ में।

0: या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। केंद्र ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के प्रबंधन और नियंत्रण के प्रयासों की समीक्षा की। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में 50 और नई इलेक्ट्रिक बसें। दिल्ली में मल्टी यूटिलिटी डक्ट विकसित किए जाएंगे, इससे सड़क खुदाई और यातायात बाधाएं कम होंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में 11 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित और दिल्ली यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने केंद्रीय हितधारक सहभागिता के माध्यम से दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के प्रबंधन और नियंत्रण पर चर्चा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वायु प्रदूषण से निपटने के प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए समन्वित और केंद्रीय हितधारक सहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट हितधारक सहभागिता योजनाओं पर भी चर्चा की और राज्यों को सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने तथा उन्हें अन्य क्षेत्रों में भी लागू करने का आग्रह किया। श्री यादव ने राज्यों को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार उनके साथ है और वायु प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए उनके सकारात्मक प्रयासों को आवश्यक सभी प्रकार का सहयोग प्रदान करेगी। बैठक में सितंबर 2026 से मार्च 2027 की अवधि के दौरान दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों तथा अन्य उपायों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शीतकालीन वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक और बहुआयामी रणनीति के अंतर्गत कार्य कर रही है। श्री सिरसा ने वायु प्रदूषण के प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 24 घंटे जमीनी निगरानी, हॉटस्पॉट केंद्रित हस्तक्षेप और वार्ड स्तर पर सघन निगरानी पर केंद्रीय व्यापक बहुस्तरीय कार्यान्वयन रणनीति की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने आज राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक, सुरक्षित और पारदर्शी तथा पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी के तेखन डिपो में स्वचालित वाहन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने हसनपुर और गाजीपुर डिपो में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 50 नई शून्य उत्सर्जन इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही दिल्ली और रेवाड़ी के बीच अंतर्राज्यीय ई बस सेवा की भी शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
2: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य केवल समस्याओं की चर्चा करना नहीं बल्कि उनका स्थायी समाधान उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि तेखन का 4 लेन वाला स्वचालित प्रशिक्षण केंद्र वाहनों की उपयुक्तता जांच को अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाएगा। इस केंद्र की वार्षिक प्रशिक्षण क्षमता 72,000 वाहन होगी, जिसमें 52,000 भारी या हल्के मोटर वाहन हैं और 20,000 दोपहिये वाहन शामिल हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि डीटीसी बेड़े में शामिल की गई 50 नई ईवी बसें सरकार की सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण अनुकूल बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मीडिया से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि डीटीसी हसनपुर और गाजीपुर डिपो में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के स्थापित होने से क्षेत्र में ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे की पहुंच बढ़ेगी और विद्युत गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार और अंतिम चरण तक कनेक्टिविटी जैसे कई स्तरों पर काम कर रही है।
3: मैं ये समझती हूँ कि क्लीन मोबिलिटी की ओर ये एक बहुत ही सशक्त कदम है और लगातार दिल्ली सरकार उस दिशा में बढ़ रही है जहाँ केवल समस्याएं नहीं उन समस्याओं को समाधान देने की बात हो रही है।
2: इस अवसर पर उपस्थित दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली वासी को स्वच्छ, सुरक्षित, आरामदायक और भरोसेमंद परिवहन देना है। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in IN पर लॉगिन कर सकते हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बताया कि अब राजधानी में मल्टी यूटिलिटी डक्ट विकसित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत विभिन्न आवश्यक सेवाओं के लिए साझा भूमिगत कॉरिडोर बनेंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस मल्टी यूटिलिटी डक्ट के निर्माण से बार बार सड़क खोदने और उसकी मरम्मत करने की जरूरत कम होने के साथ साथ यातायात में होने वाली बाधाएं कम होंगी। उन्होंने बताया कि डक्ट का उपयोग तकनीकी रूप से उपयुक्त स्थानों पर बिजली केबल, पानी और गैस की लाइनों, फायर हाइड्रेंट नेटवर्क तथा अन्य आवश्यक उपयोगी सेवाओं के लिए किया जा सकेगा। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस डक्ट के तकनीकी डिजाइन में हवादार, अग्नि सुरक्षा, रखरखाव के लिए सुगम पहुंच और आपातकालीन प्रतिक्रिया जैसी आवश्यक व्यवस्था को भी शामिल किया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस पूरी व्यवस्था के लिए जल्द ही विशेषज्ञों की एक तकनीकी समिति गठित की जाएगी। समिति में डिस्कॉम, दिल्ली जल बोर्ड और लोक निर्माण विभाग आदि विभागों के विशेषज्ञ अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण पहल को पहले पायलट आधार पर लागू किया जाएगा, जिसके लिए चांदनी चौक में एक्सप्लेनेड रोड पर 310 मीटर और मोरसराय रोड पर 560 मीटर लंबे हिस्से का चयन प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि मल्टी यूटिलिटी डक्ट पहल अलग अलग एजेंसियों द्वारा अपनी अपनी जरूरत के अनुसार किए जाने वाले बिखरे हुए भूमिगत कार्यों के बजाय समन्वित शहरी उपयोगी योजना की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव है। शिवांगी रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
1: दिल्ली सरकार ने आज 75 सीएम श्री स्कूलों में ईट वेल लिव वेल पहल की शुरुआत की। इस पहल के माध्यम से करीब 30,000 बच्चों को अपने स्वास्थ्य और कल्याण की बुनियादी जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य बच्चों में ऐसे व्यवहार, आदतों और कौशल का विकास करना है जो उन्हें स्वस्थ, जिम्मेदार और संतुलित जीवन जीने में सक्षम बनाए।
6: शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस पहल के बारे में कहा कि जिस प्रकार से मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता बच्चों के सीखने की नींव तैयार करता है, उसी प्रकार बुनियादी कल्याण साक्षरता बच्चों को बेहतर और स्वस्थ जीवन जीने की आधारभूत समझ तथा कौशल प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम संपूर्ण स्कूल दृष्टिकोण पर आधारित है। इस कार्यक्रम में 21 व्यक्तिगत आदतों, 7 सामाजिक कौशल और 7 पर्यावरणीय कौशल को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों को अपनी और दूसरों की देखभाल करने तथा पृथ्वी और पर्यावरण की देखभाल करने के लिए तैयार करना है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
1: दिल्ली विश्वविद्यालय और एक विदेशी बहुराष्ट्रीय सेमीकंडक्टर कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर नवाचार में भारत के वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनने की दिशा में आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस ज्ञापन के अंतर्गत विदेशी कंपनी अपना एआई एंगेज डेवलपर प्रोग्राम दिल्ली विश्वविद्यालय में लगाएंगे और इसके जरिए विद्यार्थियों और शिक्षकों को एआई के क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य अगले साल तक 10,000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना है ताकि वे औद्योगिक उपकरण का इस्तेमाल करके एआई एप्लीकेशन बनाने के साथ साथ उन्हें टेस्ट कर सकें। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने आज विश्वविद्यालय में बने भारत के पहले कार्बन गार्डन का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा स्थापित इस कार्बन गार्डन में विभिन्न प्रजातियों के ऐसे पौधे लगाए गए हैं जिनका पर्यावरण में अहम योगदान होता है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि पर्यावरण की जो समस्याएं लोगों के द्वारा किए जा रहे असंतुलित कार्यों से पैदा हुई हैं, उसका समाधान अकेले तकनीक से नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास विधि छात्रों के आचरण को नियंत्रित करने की कोई वैधानिक शक्ति नहीं है। न्यायालय ने कहा कि विद्यार्थियों पर किसी भी तरह की कार्रवाई शिक्षा संस्थान की अपने विनियामक नियमों के अनुसार ले सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति मोहना की पीठ ने यह आदेश हैदराबाद की नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च नालसर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के खिलाफ बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया की कार्रवाई पर उत्पन्न विवाद से जुड़े मामले पर दिया है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज आम आदमी पार्टी

0: पार्टी के पार्षदों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आप पार्षदों ने दिल्ली नगर निगम की लोकतांत्रिक और संवैधानिक चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की सुनियोजित प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति और विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन हंगामा, अभद्रता, पीठासीन अधिकारी का अपमान और संवैधानिक प्रक्रिया को बलपूर्वक रोकने का प्रयास लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों को देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने शहर में 11 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार इस दौरान दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी दफ्तर, स्वशासी निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU के कार्यालय बंद रहेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर तक भारत मंडपम में किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की महिलाओं और बच्चों के विशेष पुलिस इकाई की आत्मरक्षा शाखा ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में 450 राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स के लिए एक दिवसीय आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित की। यह कार्यशाला संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत आयोजित की गई। कार्यशाला में कैडेट्स को आत्मरक्षा की विभिन्न व्यवहारिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि यह नई सुविधा अस्पताल चेन की लोगों की सेवा के 25 साल के सफर में एक और अहम पड़ाव है। यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी के पर्व के मद्देनजर एक यातायात परामर्श जारी किया। यातायात पुलिस के अनुसार रोहिणी के स्कॉन मंदिर, रामलीला ग्राउंड और जापानी पार्क में जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए कल सुबह 7 बजे से लेकर रात 1 बजे तक यातायात और मार्ग परिवर्तन रहेगा। पुलिस ने लोगों को मधुबन चौक से हेलीपोर्ट तक भगवान महावीर मार्ग और उससे जुड़े मार्गों से बचने को कहा है। कल कृष्ण जन्माष्टमी है। इस अवसर पर राजधानी में विशेष पूजा, भजन कीर्तन और दही हांडी के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस्कॉन द्वारका के भव्य समारोहों से लेकर कनॉट प्लेस के पास स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर यानी कि बिरला मंदिर में जन्माष्टमी में आरती और मध्यरात्रि जन्मोत्सव की तैयारियां की गई हैं। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारियों सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। राजधानी में आज हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल हल्की वर्षा, आंधी तूफान और बिजली चमकने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के प्रबंधन और नियंत्रण के प्रयासों की समीक्षा की। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में 50 और नई इलेक्ट्रिक बसें, दिल्ली में मल्टी यूटिलिटी डक्ट विकसित किए जाएंगे, इससे सड़क खुदाई और यातायात बाधाएं कम होंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में 11 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित और दिल्ली यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और अब वक्त हुआ है कार्यक्रम गीत मालिका का, तो क्यों ना शुरुआत करें अभिजीत के गाए इस बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ।

साथियों, अभी आपने सुना ये फिल्म यस बॉस से अभिजीत की आवाज़ में ये गाना और इसके बोल लिखे थे जावेद अख्तर साहब ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत फिल्म स्टाइल से, और आवाज़ रहेगी अभिजीत और हेमा सरदेसाई की।

तो श्रोताओं, कार्यक्रम है गीत मालिका और अभी आपने जो आवाज़ सुनी वो थी अभिजीत और हेमंत सरदेसाई की। आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई से, और आवाज़ है सोनू निगम और श्रेया घोषाल की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका, और अब वक्त हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम का। लीजिए, पेश है हमारा ये कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है मथुरा वृंदावन आकाशवाणी के सौजन्य से तैयार श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व पर ब्रज में आयोजित विविध कार्यक्रमों पर आधारित पूर्वावलोकन रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्मस्थान एवं मंदिर श्री द्वारिकाधीश के साथ पूरे ब्रज में श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व मनाया जा रहा है। ये पर्व भाव एवं भक्ति के साथ शांति एवं सुचारू रूप से मनाया जा सके, इसके लिए शासन प्रशासन की तैयारियों पर जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मथुरा श्री चंद्र प्रकाश सिंह।
1: भगवान जी की इस जन्मभूमि मथुरा में 5253वां भगवान जी का जन्मदिवस 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि में बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाएगा। इसी दिन श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती 1:55 पर की जाएगी और द्वारिकाधीश मंदिर में भी बहुत ही भव्यता और दिव्यता से भगवान जी का जन्मदिवस मनाया जाएगा। आप स्वयं यहाँ के साक्षी बनिए, पूरा मथुरा वृंदावन गोवर्धन बरसाना बलदेव गोकुल और नंदगांव को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया संवारा गया है और जो भगवान जी की लीलाओं की झांकियां हैं उनको हम लोगों ने वॉल पेंटिंग के माध्यम से अन्य माध्यमों से जगह जगह सजाया है। 25 से अधिक स्थानों पर कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, पूरे शहर की सजावट देखने लायक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पूरे कार्यक्रम की समीक्षा करके इसको बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाने के निर्देश दिए हैं। लगभग 75 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के यहाँ आने का अनुमान है। मैं सभी अपने श्रद्धालुओं का खुले दिल से ब्रजवासियों की तरफ से अपनी तरफ से पूरी टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उनसे अनुरोध है वो अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। हम लोगों ने तय किया है कि भगवान जी का जन्मदिन प्लास्टिक फ्री मनाएंगे।

0: ये तो श्रद्धालुओं से भी अनुरोध है कि वो पॉलिथीन का, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें। उनके रुकने के लिए जहां वो रुकें, होटल हो, धर्मशाला हो, या हमारे शेल्टर होम भी तैयार किए गए हैं, और वहां भी एक जिम्मेदारी का परिचय दें। रूट डाइवर्जन किया गया है उसका भी ध्यान रखें। पूरे शहर को छोटे छोटे सेक्टर्स में डिवाइड करके, जोन में डिवाइड करके लाइन ऑर्डर की ड्यूटी लगी हुई है, कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि जो हमारे श्रद्धालु आवें वो ब्रज की जो रज है उसमें आनंद लें, भगवान जी का दर्शन करें। जन्माष्टमी पे जो भी हमारे सारे मंदिर हैं, प्रमुख देवालय हैं, उनमें भी जाएं, लेकिन गरिमा का ध्यान रखें और अफवाहों से बचें। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो तत्काल प्रशासन या प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराएं, और हम आपकी सेवा के लिए लगातार कृतसंकल्पित हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण जी का जो संदेश, जो हम लोगों के जीवन में, हम लोगों की रगों में रचा बसा है, जो प्रगति का द्योतक है, जो ज्ञान का द्योतक है, कर्म का द्योतक है, उस पे आगे चलते हुए न केवल अपना जीवन सफल बनाएंगे, अपनों का जीवन सफल बनाएंगे, मानवता को आगे बढ़ाएंगे और स्वयं प्रसन्न रहेंगे और दूसरों को भी प्रसन्न होने का मौका देंगे। मैं पुनः जन्माष्टमी की अपने सभी साथियों के साथ, ब्रजवासियों के साथ, पूरे मथुरावासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ, और मैं अनुरोध करता हूँ कि ब्रज जरूर आएं, ब्रज आपका स्वागत करने के लिए आतुर है।
1: इस अवसर पर मथुरा ही नहीं, पूरे ब्रज की विरासत के संरक्षण को समर्पित संस्था ब्रज तीर्थ विकास परिषद उत्तर प्रदेश की सचिव IAS लक्ष्मी नागप्पन ने बताया कि इस वर्ष संस्था द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व को सांस्कृतिक रूप से मनाए जाने पर विशेष तैयारियां की गई हैं।
2: श्री कृष्ण जन्मोत्सव पूरे हर्ष और उल्लास से पूरे दुनिया में मनाया जाता है। इसी के मानते जनपद मथुरा में भी 2 तारीख से 4 तारीख तक विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा। पूरे जनपद में हर जगह पे सजावट कराया गया है और लाइटिंग की व्यवस्था कराई गई है, हॉट एयर बलून्स कराया गया है। 3 और 4 तारीख को पूरे जनपद में 21 अलग अलग जगहों पे जो हमारे जनपद के स्थानीय कलाकार हैं, उनकी कला को भी आगे बढ़ाते हुए ये 21 जगहों पर उनके द्वारा भी प्रस्तुतिकरण कराया जाएगा। 3 तारीख को और 4 तारीख को एक शोभा यात्रा भी ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जिला प्रशासन को साथ में लेते हुए ये कराया जाता है। और ये जो शोभा यात्रा है ये श्री कृष्ण जन्म स्थान के गेट नंबर 3 से शुरू कराया जाता है। इसके अलावा 4 तारीख के रात को 9 से 10 बजे के बीच में पहली बार एक भव्य तरीके से एक ड्रोन शो का भी व्यवस्था कराया गया है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन है 3 तारीख को श्री हरिदास ऑडिटोरियम प्रेक्षागर जो वृंदावन में ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा जो निर्माण कराया गया है उसका शुभारंभ और लोकार्पण है। और उस दिन भी 1051 करोड़ का विभिन्न जो लोकार्पण और शिलान्यास का एक कार्यक्रम भी है। तो इस तरीके से पूरे जनपद में 2, 3 और 4 तारीख को भव्य रूप से ये उत्सव और उल्लास से मनाया जाएगा। आप सभी लोगों से और श्रद्धालुओं से भी निवेदन है कि आप लोग जनपद मथुरा आए और इस बार की जन्मोत्सव ब्रज क्षेत्र में ही हमारे साथ ही मनाएं।
1: इस आयोजन में जब लाखों श्रद्धालु पधार रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को लेकर आप हैं मथुरा के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राधा वल्लभ।
3: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हम लोगों के यहाँ जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट से सारे प्रोग्राम किए जाते हैं, 4 जो हमारे यहाँ पे मुख्य है, जो कृष्ण जन्मभूमि है, वहाँ पे हमारे यहाँ सारी हेल्थ टीम की व्यवस्था रहती है। बरसाना मंदिर पे सब व्यवस्था रहती है, दाऊजी महाराज पे भी अच्छी खासी व्यवस्था रहती है, और इसके अतिरिक्त बांके बिहारी मंदिर पर भी हमारी पूरी टीम्स की, लगभग हमारी 20 टीम्स कार्य करती हैं इसमें, जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेज, वार्ड बॉय और अन्य स्टाफ वहाँ पे है रहता, और देख रेख में उनके प्रत्येक जगह पे हमारी टीम्स रहती है।
1: श्री श्री कृष्ण जन्मोत्सव के इस पावन पर्व पर श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आयोजित होने वाले

0: कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा।
1: भगवान श्री कृष्ण की पवित्र जन्मभूमि पर आयोजित होने वाले ऐसे विशिष्ट जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए 33 कोटि देवता देव देवादिदेव और महादेव भी स्वयं उपस्थित रहते हैं, ऐसी शास्त्र और संतों की मान्यता है। इस वर्ष भगवान ठाकुर श्री केशव देव भगवान श्री कृष्ण पंचरत्नी पोशाक को धारण करके भक्तों को दर्शन देंगे। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से 5 रत्न भगवान श्री कृष्ण की इस पोशाक पर उकेरे गए हैं, उत्कीर्ण किए गए हैं। भगवान कलहंस पुष्प बंगले में विराजमान होंगे। भगवती माँ गायत्री माँ सरस्वती के वाहन राजहंस कलहंस के भाव को हृदयंगम रखते हुए इस वर्ष कलहंस बंगले के स्वरूप में श्री ठाकुर जी के पुष्प बंगले को सजाया गया है। ठाकुर श्री केशव देव भगवान श्री कृष्ण का यह 5253वां जन्म महोत्सव बड़ा विशिष्ट है। इस वर्ष श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान का प्रयास है कि भगवान के गर्भगृह जिसको कंस के कारागार से लोग जानते हैं, भक्त जानते हैं, वहां से भी भगवान के जन्म महाभिषेक के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हो। इसके लिए संस्थान सभी आवश्यक उपाय कर रहा है और ठाकुर श्री केशव देव की कृपा से इस वर्ष श्रद्धालु जन अपने मोबाइल पर अपने टीवी पर भी भगवान के पुण्य पवित्र गर्भगृह में आयोजित होने वाले इस महोत्सव के दर्शन का आनंद ले पाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास है।
0: श्री जी बाबा आश्रम के व्यवस्थापक श्री रविकांत जी ने इस अवसर पर बताया,
2: भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव जो उत्तर प्रदेश के इस मथुरा नगरी में इस ब्रज में, क्योंकि यहीं ये पैदा हुए, जो उत्सव का हमारा 5253वां जन्म उत्सव ब्रज में इस मथुरा में इस नगरी में 2 तारीख से शुरू होकर 4 तारीख तक ये चलेगा। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, जितने भी हमारे ब्रज के ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश के नहीं बल्कि देश के सभी लोगों पर आपका आशीर्वाद, जैसा आपका नाम है ऐसे ही ये आशीर्वाद सबको बिखरता रहे, यही तो मेरी अभिलाषा है, ये मेरी कामना है।
0: श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर स्थानीय निवासियों का उत्साह भी चरम पर है। घर घर में जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। ब्रज की लोक परंपराओं एवं रीति रिवाजों के बारे में बताते हुए स्थानीय निवासी,
3: भैया जन्माष्टमी आ रही है, भादों कृष्ण पक्ष अष्टमी हमारे ठाकुर जी का जन्म तिथि जन्म महोत्सव वर्षगांठ और तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो गई हैं। घरों में रंगाई पुताई कराई जा रही है, मंदिरों को स्वच्छ किया जा रहा है, दरवाजे पर वंदनवार बन रही है, ध्वजा पताका तोरण कलश सजाए जा रहे हैं और जिनके यहाँ वाहन हैं, हाथी घोड़ा पालकी, हमारे यहाँ गायें हैं, हम गायों को सजा रहे हैं और नगाड़े तैयार हो रहे हैं, धुंधवी तैयार हो रही हैं, ढोल ढप मृदंग झांझ झड़ताल ये सब बजेंगे और जो कवि जन है वो नित्य नई नई नई बधाइयाँ रच रहे हैं कि मैं ये बधाई गाऊंगा, मैं ये बधाई गाऊंगा। और घरों में पंजरी की तैयारी है, भगवान को पंजरी का भोग लगाया जाएगा, 7 प्रकार की पाग बनेंगी, बादाम की पाग, पाग माने एक तरह की बर्फी होती है हमारे ब्रज में जिसको पाग कहते हैं, जो जच्चा को भोग लगाया जाता है कि यशोदा के लाला हुआ है, तो जच्चा और बच्चा ये दोनों का भोग लगाने का ये सामग्री है पाग। तो खरबूजे के बीज की पाग, मिंगी की पाग, काजू की पाग और चिरौंजी की पाग, ऐसे 7 प्रकार की ये पाग बन रही हैं। लोग नए नए कपड़ा बनवा रहे हैं, जो गोपियां हैं महिलाएं हैं वो तरह तरह के लहंगा ओढ़ना चुनरी पहनेंगी, अनेक प्रकार के गहने धारण करेंगी, सोले और श्रृंगार करेंगी, और जो पुरुष हैं वो जामा पाजामा बनवा रहे हैं, पगड़ी बनवा रहे हैं, सिरपेच बांधेंगे, माला पहनेंगे, कड़े कंठा पहनेंगे और ठाकुर जी को सोने के पालने में विराजमान किया जाएगा। 5253वां भगवान का ये जन्म गांठ है, जन्म महोत्सव है, तो पूरे मथुरा में और तो सरकार के द्वारा चौराहे सजवाए जा रहे हैं, सड़कें सजवाई जा रही हैं, जगह जगह रासलीला दिखाई जाएगी, भगवान की लीला दिखाई जाएंगी, जगह जगह सेल्फी पॉइंट

0: आधुनिक व्यवस्थाएं वो की जा रही है, कहीं कहीं कृष्ण लीला होगी और घर घर में तैयारियां हो रही हैं।
1: तो हम लोगों को बड़ा ही उल्लास रहता है क्योंकि हम लोग ब्रजवासी हैं, तो घर को स्वच्छ करना, घर को सजाना और ठाकुर जी के मंदिर को सजाना, उनके पर्दे पलना ये सब कुछ तैयार करना, उनकी ड्रेस लाना, पोशाकें लाना, उनके लिए श्रृंगार का सामान लाना।
2: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के इस पुनीत अवसर पर दूर दराज से लोग मथुरा पधार रहे हैं, अपने आराध्य की एक झलक पाने को लोग लालायित हैं। ब्रज में पधारकर वो कैसा अनुभव कर रहे हैं और स्थानीय तौर पर नगर निगम प्रशासन तथा पुलिस व्यवस्था के बारे में अपने अनुभव साझा करते हुए बाहर से आए कुछ श्रद्धालु।
3: जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ दर्शन करने आए थे, हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार यहाँ आए थे और चाहेंगे कि हम बार बार यहाँ आए। यहाँ बहुत साफ सफाई है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा।
4: मैं मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले से हूँ और मैं यहाँ श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित और भी जो विशेष कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जाते हैं उनको देखने के लिए, उनको जानने के लिए मैं यहाँ आया। तो मुझे भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित बहुत ही आनंद यहाँ प्राप्त हुआ। पूरा मथुरा ये मान के चलिए कृष्णमय है और यहाँ की व्यवस्था बहुत ही उत्तम है। हर जगह मैं ये कहना चाहूँगा कि कृष्णमय है।
2: अभी आप सुन रहे थे श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व पर ब्रज में आयोजित विविध कार्यक्रमों पर आधारित पूर्वावलोकन रिपोर्ट। आलेख एवं वाचन स्वर संजय सारस्वत का था, प्रस्तुति संजीव कुमार व्यास की एवं संयोजक थे ओपी सिंह। ये कार्यक्रम मथुरा वृंदावन आकाशवाणी के सौजन्य से तैयार किया गया।
5: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। और आइए अब सुनते हैं कुछ कृष्ण भजन।

श्रोताओं, अभी आपने मीराबाई द्वारा रचित ये भजन सुना, और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से ये भजन।

अभी आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में सुना ये गीत, और आइए अब सुनवाते हैं आपको जगजीत सिंह की आवाज़ में ये कृष्ण भजन।

0: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी में समाचार, फिर इंग्लिश में और फिर उर्दू में।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में एमएसएमई के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री ने वाराणसी की स्थिति की जानकारी ली और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
2: भारत और बेल्जियम दोनों ही रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया।
2: इस वर्ष की शुरुआत में हमने ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच यह अभूतपूर्व सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को भी नई मजबूती देगा। भारत की निरंतर आर्थिक प्रगति और इस एग्रीमेंट ने हमारे आर्थिक संबंधों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले।
1: बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
3: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ।

0: है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज़ इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता के सफल समापन का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतक समझौते पर वार्ता को भी जल्द पूरा करने पर जोर दिया। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने नियमित आदान प्रदान, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रक्षा औद्योगिक साझेदारी के माध्यम से रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और बेल्जियम की संघीय पुलिस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री तेओ फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। भारत ने ब्रसेल्स में डिफेंस अटैशे नियुक्त करने का फैसला किया है। बेल्जियम ने इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में डिफेंस अटैशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी दी। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण पर श्री जॉर्ज ने कहा कि उसे पिछले साल अप्रैल में बेल्जियम के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और तब से वो बेल्जियम की जेल में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे।
3: मेकिंग इंडिया $30 trillion इकोनॉमी।
4: भारत 2047 तक $30 trillion की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश अपनी आर्थिक यात्रा के अहम दौर में है। पहली तिमाही में 7.8% का सकल घरेलू उत्पाद बहुत उत्साहजनक है और भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। दुनिया भर में अनिश्चितता और भारी उथल पुथल के इस दौर में ये बड़ी उपलब्धि है।
3: अराउंड द वर्ल्ड इज नो मीन अचीवमेंट।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Samachar Sandhya mein aapka phir swagat hai. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत हमेशा से ये कहता आया है कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है और इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। श्री जयशंकर ने यूक्रेन के कीव में वहां के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा से मुलाकात के बाद ये बात कही। श्री जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिन पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए गए बयान को दोहराया। श्री मोदी ने कहा था कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करना होगा। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए भारत की ओर से हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। बाद में विदेश मंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की और मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के उपायों पर चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री

0: ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार विभाग के रणनीतिक योजना और समन्वय समूह की सचिव एलेनोर जेन लॉसन से मुलाकात की। दोनों ने द्विपक्षीय हितों से जुड़े मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4,216 लोग अब भी लापता हैं। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। तेज बारिश के कारण जौनपुर, सोनभद्र, वाराणसी, पीलीभीत, चित्रकूट और चंदौली में आज स्कूल बंद रहे। इस बीच मौसम विभाग ने कल मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कल तेज बारिश का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। सरकार ने आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित इस संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय कल से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को एक साथ लाने का अवसर मिलेगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 2 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। हांगकांग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अनाहत सिंह लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम की नील गिलस को 2-1 से हराया। किदाम्बी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में कनाडा के विक्टर लाई को हराया, जबकि सात्विक और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव की जोड़ी को हराया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रेस्टो को हार का सामना करना पड़ा। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन कल जन्माष्टमी के भव्य उत्सव के लिए सज धज कर तैयार है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि में तैयारियां जोरों पर हैं। मथुरा में पहली बार कल जन्माष्टमी के मौके पर 500 द्रोण आकाश में भगवान कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत रूप से प्रदर्शित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जन्माष्टमी समारोह में भाग लेने के लिए मथुरा पहुंच चुके हैं। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने आज श्री स्वामी हरिदास सभागार का उद्घाटन किया और 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि श्रीमद् भगवद गीता में दी गई श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी कठिन समय में सही निर्णय लेने और नैतिक मूल्यों पर दृढ़ रहने की प्रेरणा देती हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
4: सेंसेक्स 417 अंक गिरकर 76,153 पर बंद हुआ। निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 23,873 पर रहा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज

0: Bengali actor Uttam Kumar. The government of West Bengal is celebrating the occasion by organizing various programs. Chief Minister Shubhendu Adhikari will participate in a Bhumi Pujan event of the Uttam Kumar Film Center at New Town, Kolkata tomorrow. Known as Mahanayak, Uttam Kumar acted in more than 200 films. He was born on 3rd September 1926 in Kolkata. On to sports. In women's cricket, India were 147 for 2 in 16 overs against Hong Kong in their second Group A match in the 2020 Asia Cup at the Dubai International Stadium in UAE when reports last came in. Earlier, Hong Kong won the toss and opted to field. The women in blue had opened their campaign with a convincing 94-run win over Thailand in Dubai on Sunday. A victory over Hong Kong will help the Harmanpreet Kaur-led side secure a place in the semi-finals of the ongoing 8-team tournament. In badminton, India's ace shuttler Kidambi Srikanth will face Hong Kong's Lee Shak Hui tomorrow in the men's singles quarterfinals at the China Masters Super 750 in Shenzhen. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and Belgian counterpart Bart De Wever call for stronger strategic partnership. Belgium backs India's fight against terrorism. India and Belgium sign pact on defense cooperation, agree to double bilateral trade in next 5 years and enhance cooperation in fields of semiconductors, critical minerals and advanced technologies. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal hails MSMEs for achieving 7.8% GDP growth in previous quarter. Heavy rain and release of water from Bear Rajas caused floods in 23 districts of Uttar Pradesh. Prime Minister takes stock of situation in Varanasi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls on Ukrainian President Volodymyr Zelensky. He welcomes Prime Minister Modi's call to end Russia-Ukraine war. And in women's cricket, Group A match underway between India and Hong Kong in 2020 Asia Cup in Dubai. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीराजम नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के उनके हमनसब बाख्त दी वेवर ने मजबूत कलीदी शराकतदारी की जरूरत पर जोर दिया है। बेल्जियम ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की लड़ाई की हिमायत की। भारत और बेल्जियम ने दिफाई तआवुन के सिलसिले में माहिदे पर दस्तखत किए हैं। अगले 5 वर्षों में बाहमी तिजारत को दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, अहम मादनियात और जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों के शोबे में तआवुन बढ़ाने से भी इत्तफाक किया है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने पिछली सहमाही में 7.8% GDP की शरह तरक्की हासिल करने के सिलसिले में MSMEs की सताइश की है। बहुत तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के सबब उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में सैलाब आ गया है। वजीर आजम ने वाराणसी में सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। कीव की जानिब से रूस यूक्रेन जंग खत्म करने की वजीर आजम मोदी की अपील का खैर मकदम किया गया। और खवातीन क्रिकेट में दुबई में T20 एशिया कप में भारत और हांगकांग के दरमियान ग्रुप ए का मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। भारत और बेल्जियम ने आज तिजारत, सरमायाकारी और इक्तसादी तआवुन को मजीद फरोग देने के अपने अज़्म की तौसीक की। वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के उनके हमनसब बाख्त दी वेवर ने नई दिल्ली में दोनों लीडरों के दरमियान मुज़ाकरात के बाद जारी किए गए भारत बेल्जियम मुश्तरक बयानी में बाहमी तिजारत के शोबों में बढ़ते हुए तनवो का खैर मकदम किया। दोनों लीडरों ने भारत बेल्जियम कलीदी मुज़ाकरात के आगाज का भी खैर मकदम किया। भारत और बेल्जियम ने अगले 5 बरस में बाहमी तिजारत को दोगुना करने के उमंगों से भरे हदफ भी तय किए हैं। दोनों मुल्कों ने अद्वियात साजी, लाइफ साइंसेज, सेमीकंडक्टर्स, दिफाई साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग, अहम नौयत की मादनियात, काबिल तजदीद तवानाई, बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स, खला और जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज में तआवुन के खातिर खा इम्कान की भी निशानदेही की। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: दोनों लीडरों ने भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तजारती माहदे से मुतालिक मुज़ाकरात के कामयाब इख्तिताम और इस पर बरवक्त अमलावरी की ज़रूरत की तजवीज़ का भी खैर मकदम किया। दोनों लीडरों ने भारत यूरोपीय यूनियन सरमायाकारी तहफ़ माहदे और जुग्राफियाई इंडक्शन से मुतालिक माहदे पर मुज़ाकरात की जल्द अज जल्द तकमील की ज़रूरत पर भी जोर दिया। दिफा और सलामती के मुतालिक बेल्जियम ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजहती का इजहार किया और पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की

0: मजम्मत की। दोनों लीडरों ने दहशतगर्दी के खिलाफ तआवुन को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी से निमटने के सिलसिले में एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने से भी इत्तफाक किया। दोनों मुल्कों ने मुस्तकिल एक्सचेंजेज, तरबियत, तहकीक और दिफाई सनअती शराकतदारी के जरिए दिफाई तआवुन को मुस्तहकम करने के एक लेटर ऑफ इंटेंट पर भी दस्तखत किए। तहकीकात के मरकजी ब्यूरो CBI और फेडरल पुलिस ऑफ बेल्जियम के दरमियान एक मुफाहमत नामे पर भी दस्तखत किए गए ताकि बैन कौमी मुनज्जम जराइम और साइबर क्राइम से निपटा जा सके। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज।
1: भारत और बेल्जियम ने आज दिफाई तआवुन के अकरारनामे और काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में मुफाहमत नामों समेत कई माहदे किए ताकि बैन मुल्की जराइम से निपटा जा सके। इनमें साइबर क्राइम और सिफारती तरबियत के माहदे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रेस के लिए अपने बयान में जोर देकर कहा कि चैलेंजों से भरे इस माहौल में भी भारतीय मईशत ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछली सहमाही में भारत में 7.8% शरह तरक्की दर्ज की गई। उन्होंने मजीद कहा कि आज भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया के लिए एतमाद और नए मौके का एक वसीला बनती जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को उजागर किया कि बाहमी तआवुन के इम्कानात रिवायती शोबों से बालातर होकर वसअत इख्तियार करते हुए कलीदी शोबों जैसे दिफा और साफ तवानाई तक रसाई हासिल कर चुके हैं।
2: हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे। फ्रेंड, रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। आज हमने दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई है।
1: प्रेस के लिए अपने बयान में बेल्जियम के वजीर आजम बाख दी वेवर ने भारत को सबसे बड़ी जमहूरियत और तेजी से उभरती हुई मईशत कहकर उसकी सताइश की और भारत को अपना अहम इत्तेहादी करार दिया। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवेज का महकमा सलाहियत में इजाफे, सिग्नलिंग में बेहतरी और खुदकार दरवाजों वाली सहूलत से लैस नई नस्ल की मुजाफाती ट्रेनें मुतारफ कराने के लिए मनसूबाबंद तरीके से काम कर रहा है। जनाब वैष्णव ने कहा कि मुंबई में 18,000 करोड़ रुपए लागत के रेलवे प्रोजेक्टों पर काम जारी है। जनाब वैष्णव मुंबई से सिंधुदुर्ग के दरमियान चलने वाली ट्रेन को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झंडी दिखाकर रवाना करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मखसूस मशरकी और मगरबी फ्रेट कॉरिडोर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से मुल्क के दीगर हिस्सों में साजो सामान की हमलो नकल में सहूलत पैदा करते हुए महाराष्ट्र की सनअती तरक्की को इस्तेहकाम बख्शेंगे। जनाब वैष्णव ने मजीद कहा कि मुंबई शहर में फिलहाल 3,200 लोकल ट्रेनें चल रही हैं और खिदमात में 10% के इजाफे से मुसाफिरों की आमोदरफ्त में खातिरखा इजाफा होगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि रेलवे बोर्ड ने चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को 28 AC लोकल ट्रेनें मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर दिया था, जिसके तहत पहली ट्रेन के अगले साल बनकर तैयार होने की उम्मीद है। जनाब वैष्णव ने कहा कि नई नस्ल की लोकल ट्रेनें मुंबई के मुजाफाती रेलवे निजाम में बड़े पैमाने पर तब्दीली लाएंगी।
3: ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों फ्रेट कॉरिडोर्स हमारे देश के लिए बहुत बड़ी एक ताकत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फोकस करके इस काम को आगे लिया, में जो भी डिफिकल्टीज थी उनको दूर किया और अब ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर्स का काम 100% कम्प्लीट हो गया है। आगामी कुछ ही दिनों के बाद में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस पूरे कम्प्लीट ईस्ट और वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
1: कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल ने रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान मजमुई घरेलू पैदावार GDP के 7.8% नमू हासिल करने में छोटी और दरमियानी दर्जे की सनअतों के अहम रोल की सताइश की है। नई दिल्ली में आज FTA के आउटरीच प्रोग्राम से मुतालिक कौमी वर्कशॉप की सदारत करते हुए जनाब गोयल ने यह बात कही। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि मुख्तलिफ मुल्कों के साथ किए गए आजादाना तजारती समझौतों की बदौलत मुल्क के बड़े बरामदकार बनने की राह हमवार होगी। जनाब गोयल ने दुनिया के साथ मुल्क की तिजारत को फरोग देने की खातिर आजादाना तिजारती समझौतों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए मुल्क गिर जामे कोशिश की अपील की। जनाब गोयल ने कहा कि भारत अगले कुछ सालों में कनाडा, मेक्सिको, चिली, जनूबी अमरीकी ममालिक, जनूबी अफ्रीकी कस्टम यूनियन, खलीजी तआवुन काउंसिल और इसराइल के साथ आजादाना तिजारती समझौतों को हतमी शक्ल देगा। जनाब गोयल ने मजीद कहा कि इस कदम के जरिए मोल भाव की बेहतर अहलियत की बिना पर भारत को आलमी तिजारत के 75% हिस्से तक रसाई हासिल हो जाएगी। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने आज एक मीटिंग की सदारत की जिसमें दिल्ली NCR और उसके आसपास के इलाकों में طرفین کی مرکوز وابستگی کے ذریعے فضائی آلودگی کا بندوبست

करने और इसे कंट्रोल करने पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के माहौलियात महकमे के वुजरा और सेक्रेटरी और आलूदगी को कंट्रोल करने से मुतालिक बोर्ड्स के चेयरपर्सन और मेंबर सेक्रेटरीज ने भी शिरकत की। मीटिंग के दौरान जनाब यादव ने फिजाई आलूदगी से ज़्यादा मौसर तौर पर निमटने के तई कोशिश करने की गरज से तरफेन की मरकूज़ वाबस्तगी और तालमेल की ज़रूरत पर जोर दिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में शदीद बारिश और बैराजों से पानी के अखराज की वजह से 23 ज़िले सैलाब से मुतासर हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पार्लियामानी हलके वाराणसी के ज़िला मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बात की और सैलाब की सूरत हाल से मुतालिक जानकारी हासिल की। वज़ीर आज़म ने काशी की नदियों की सतह आब की जानकारी ली और राहत कैंपों में किए जा रहे इंतजाम से आगाही हासिल की। वज़ीर आज़म ने वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी से भी टेलीफोन पर सैलाब की सूरत हाल की तफसीलात हासिल की। दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी फरुखाबाद के सैलाब से मुतासर इलाकों का हवाई सर्वे किया और राहत और बचाव कार्रवाइयों का जायजा लिया। जनाब आदित्यनाथ ने सैलाब से मुतासरा 1000 कुंभों में राहती साजो सामान तकसीम किया। वज़ीर आला ने सैलाब की वजह से नकली मकानी पर मजबूर हुए अफराद को खित्ते अराजी के अलाटमेंट सर्टिफिकेट भी फराहम किए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, सोनभद्र, वाराणसी, पीलीभीत, चित्रकूट और चंडौली में आज शदीद बारिश की वजह से स्कूल बंद रहे। इस दौरान चित्रकूट में मंदाकिनी नदी की सतह आब में मजीद इजाफा हो गया, जिसके बाद हुक्काम को सैलाब से मुतासर इलाकों में रह रहे बाशिंदों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील करनी पड़ी। इधर तबाहकुन नेपाल तिब्बत सैलाब में मरने वालों की तादाद बढ़कर 1252 हो गई है। कुदरती आफात के खतरात में कमी और बंदोबस्त से मुतालिक नेपाल की अथॉरिटी NDRRMA की जानिब से जारी आदादोशुमार के मुताबिक 4216 अफराद अब भी लापता हैं। अथॉरिटी ने बताया कि चितावान ज़िले से 355 लाशें, नवल परासी ईस्ट से 218, नवल परासी वेस्ट से 208, जिसमें भारत से बरामद की गई 18 लाशें शामिल हैं और जिन्हें नवल परासी वेस्ट के सुपुर्द किया गया है, नीज नुआकोट से मिली 177 लाशें शामिल हैं। चीन की जानिब सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है। नेपाल सरहद के नज़दीक तिब्बत में गिरोंग काउंटी इस सैलाब से मुतासिर हुआ और कल तक की खबर के मुताबिक यहाँ से 541 लोग लापता हैं। मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक सैलाब से मुतासर इलाकों में अहल खाना ने कुशा घास से पुतले बनाकर अपने उन रिश्तेदारों की आखिरी रसूमात अदा की जिनका अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया। अब इस बात की उम्मीदें कम हो गई हैं कि वो जिंदा बचे होंगे। भोटे कोशी दरिया के बाला इलाकों में आज भी लगातार बारिश होती रही, इसलिए अंदेशा है कि भोटे कोशी और त्रिशूली दरियाओं में पानी की सतह बढ़ जाएगी। नीज रसुआ और नुआकोट जिलों में बह रहे छोटे दरियाओं और नहरों में भी पानी की सतह बढ़ जाएगी। भारतीय महकमा मौसमियात ने मध्य प्रदेश में कल तेज से बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और शुमाल मशरकी खित्तों में कुछ मकामात पर कल तेज़ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, ज़ैली हिमालय, मगरबी बंगाल और अंडमान और निकोबार जजायर में भी अगले दो दिनों में तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक की पेशगोई की है। इसी तरह का मौसम कल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वस्ती महाराष्ट्र, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कल दिल्ली के कुछ मकामात पर हल्की बारिश के साथ मतला अबर आलूद रहने की पेशगोई की है, जबकि कौमी राजधानी दिल्ली के कुछ मकामात पर आंधी तूफान और बिजली चमकने के साथ दरमियानी दर्जे की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में कल ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और कम अज़ कम दर्जा हरारत 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि भगवान कृष्ण की ज़िंदगी और तालीमात ने भारतीय सकाफत और फलसफियाना विरासत में नई रूह फूंकी है। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता के जरिए दी गई भगवान कृष्ण की तालीमात वक्त की गर्द से पाक इंसानियत की तरगीब का जरिया बनी रहेंगी, जिसे इंसानियत को मुश्किल घड़ी में अखलाकी इकदार पर साबित कदम रहते हुए दानिशमंदाना फैसले करना मुमकिन हो सकेगा। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि जन्माष्टमी का त्यौहार रवादारी, खिदमत और फ़र्ज़ के तई वक्फ होने जैसी इकदार के तई तरगीब देता है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज यूक्रेन की राजधानी कीव में यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की और यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी तनाज़े को ख़त्म करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया।
उन्होंने यूक्रेन के अपने हमनसब

0: केंद्रीय सिबिहा से भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत मुसलसल अपने मौकफ पर कायम है कि ये दौर जंग का दौर नहीं है। डॉक्टर जयशंकर ने इस तरह के तनाजात के दौरान बहरी जहाजों पर हो रहे हमलों के मसले को उजागर किया और कहा कि इससे आलमी खित्ते जुनूब के कई ममालिक पर मुख्तलिफ एतबार से असर पड़ा है, जिससे तेल, खाद और खाने की अशिया की कमी हो गई है। भारत को एक आलमी ताकत करार देते हुए यूक्रेन के वजीर खारजा एंद्री सिबिहा ने कहा कि उनका मुल्क वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग को ख़त्म करने के लिए की गई अपील का खैर मकदम करता है। दुबई में जारी खवातीन के एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप एक एक मुकाबले में हांगकांग ने टॉस जीता और भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारत की जानिब से वो टीम खेल रही है जिसने इतवार के रोज़ खेले गए टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में थाईलैंड को 94 रन से शिकस्त दी थी। आज के मैच में अगर भारत की टीम जीत हासिल करती है तो हरमनप्रीत कौर की ज़ेर क़्यादत भारत की टीम 8 ममालिक पर मुश्तमिल इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर अजम नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के उनके हमनसब बाख दी वेवर ने मजबूत कलीदी शराकतदारी की ज़रूरत पर जोर दिया। बेल्जियम ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की लड़ाई की हिमायत की है। भारत और बेल्जियम ने दिफाई तआवुन के सिलसिले में माहदे पर दस्तखत किए हैं। अगले 5 वर्षों में बाहमी तिजारत को दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, अहम मादनियात और जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों के शोबे में तआवुन को बढ़ाने से भी इत्तेफाक किया है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने पिछली सहमाही में 7.8% GDP की शरह तरक्की हासिल करने के सिलसिले में MSMEs की सताइश की है। बहुत तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के सबब उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में सैलाब आ गया है। वजीर आजम ने वाराणसी में सूरत हाल का जायजा लिया और वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। कीव की जानिब से रूस यूक्रेन जंग खत्म करने की वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील का खैर मकदम किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली का इंटरफेस चैनल है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम कंट्री वाइज।
2: कंट्री वाइज
3: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए जल संरक्षण और प्रबंधन में तकनीक और जन भागीदारी के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
4: अशोक कुमार जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: नमस्ते
4: अशोक जी। भारत में जिस तरह की परिस्थितियां हम देख रहे हैं, जल संकट की बात हो या फिर कुछ इलाकों में भूजल स्तर गिरने की बात कही जाती है, तो जल को बचाने के लिए कई सारे अभियान भी चलाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो हम परिस्थिति अपने सामने देख रहे हैं, इसमें आम नागरिकों और स्थानीय समुदाय की भागीदारी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और दूसरी चीज की इन सब चीजों के पीछे कारण क्या है?
5: जल के संकट के बारे में आपने बताया, बट एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ पे पिछले कई दशकों से जितने भी बारिश आ रहे थे उतनी बारिश अभी भी आ रही है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम वाटर मैनेजमेंट में वी आर नॉट एबल टू वाटर मैनेज द वाटर प्रॉपरली। इसलिए ये जन भागीदारी की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जल आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में बदला करने के बाद ही हम मैक्सिमम वाटर सेव कर सकते हैं। वो देखते आंकड़े बताएंगे तो तकरीबन 1100 mm रेनफॉल हर साल हमको मिलते हैं। कभी महीने में इधर उधर हो सकता है, बट ओवरऑल आप देखेंगे तो हर साल बारिश जितना आना है वो आते रहते हैं, और तकरीबन 4,000 billion cubic meters पानी हमको मिलता है। और जब बारिश अधिकतम होता है तो कभी कभी फ्लड्स होता है, बाढ़ हो जाते हैं और पानी बह के चले जाता है, और 6 महीने के बाद जब समर आ जाता है तो पानी की दिक्कत बढ़ जाती है, कई जगह पर पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता है। तो अगर हम ये जो बारिश में जितने पानी आता है उसी को हम संभाल के रखे, जन भागीदारी से संभाल के रखे और समर में यूज करेंगे तो हमारा वाटर समस्या एकदम बहुत हल हो जाएंगे। इसलिए जन भागीदारी बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें।
4: अशोक जी, आप कई सारी योजनाओं से जुड़े रहे हैं, नेशनल वाटर मिशन की बात हो या फिर कैच द रेन अभियान की बात हो, तो ये जो अभियान हम देखते हैं आज की डेट में, इनका क्या महत्व है जल संरक्षण के लिए, और जो हमारे सामने भूजल का संकट है या फिर पीने के पानी के पर्याप्त उपलब्धता की बात करते हैं उसके लिए?
5: जैसे मैंने बताया, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज इम्प्रॉपर और इनएडिक्वेट वाटर मैनेजमेंट। भारत में बहुत

0: सारे जल भूगर्भ से मतलब अंडरग्राउंड वाटर से निकाल के सिंचाई के लिए यूज करते हैं, पीने के पानी के लिए यूज करते हैं। अगर हम अंडरग्राउंड से पानी को खींचते रहे और वापस उसको रिचार्ज नहीं करते, तो एक ना एक दिन पानी तो खत्म हो ही जाएंगे। तो इसलिए 2021 से हमने नेशनल वाटर मिशन की तरफ से और प्रधानमंत्री के आदेश में वो हमने एक कैच द रेन कैंपेन शुरू किया, जिसका जिक्र आपने किया था।
1: जी
0: कैच द रेन कैंपेन में यह है कि स्लोगन था, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, जहां बरसे जब भी बरसे पानी का संचयन करना है। ये कार्यक्रम जन भागीदारी से हम कर रहे थे, क्योंकि ये बारिश सब जगह में होते है, खेत में, घर में, गांव में, शहर में, सब जगह में बारिश पड़ती है। वो बारिश के पानी को अगर हम वहीं के वहीं संचय करके रखेंगे तो वाटर टेबल बढ़ जाता है,
1: जी
0: और ये पानी हम यूज करके समर में भी हमारे काम में आ जाता है। इसलिए ये जो कैच द रेन कैंपेन वॉज वेरी सक्सेसफुल कैंपेन, एंड प्रधानमंत्री तो 2021 से इसके बारे में बोलते रहते थे। उन्होंने ही ये कैंपेन 2021 में देश भर में जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन के रूप में स्टार्ट किया था।
1: अशोक जी, जल संकट की जब हम बात करते हैं तो भारत के विकास और सामाजिक स्थिरता की भी यहाँ पर बात करना जरूरी हो जाती है, और साथ ही भारत में नदियों और जल स्रोतों की सफाई भी एक बड़ा टास्क हमारे लिए है, ताकि जो भी जल हमारे पास अभी उपलब्ध है उसको इस तरह से प्रभावी बनाया जाए कि ताकि उसको आराम से इस्तेमाल में लाया जा सके। तो इसके लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है? क्या आधुनिक समय में जो हमारे पास उपकरण है, यंत्र है, उनका इस्तेमाल करना, या फिर जन भागीदारी और जन जागरूकता?
0: वाटर मैनेजमेंट के बारे में बताया मैंने, और साथ ही साथ पिछले कई सालों से हमने देखा कि ये रिवर पोल्यूशन को भी एड्रेस करने के लिए काफी काम हो रहा था। उसमें एक था नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नमामि गंगे। जब हमने सब लोगों को मिला के जन भागीदारी से गंगा नदी को साफ करने का कार्यक्रम में जुट गए थे, तो ये पिछले कई सालों से अभी एनजीटी के मार्गदर्शन में हम कई जगह में वाटर रिवर्स के पोल्यूशन के लेवल मॉनिटर करते हैं, और वाटर पोल्यूशन लेवल मॉनिटर करके बताते हैं कि इस एरिया में वाटर पोल्यूटेड है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है करके। तो अमृत स्कीम के अंदर और नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट के स्कीम्स के अंतर्गत और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत कई कार्यक्रम हमने शुरू किया, क्योंकि ये जो जल में पोल्यूशन आता है रिवर्स में मुख्यतः, वो ज्यादातर सुवेज की वजह से होता है। शहर से गंदा पानी नदियों में छोड़ते हैं, और वो गंदा पानी अच्छे पानी से मिलके वो पानी को खराब करते थे। तो ये पिछले कई सालों से हमने एसटीपीस बनाने का कार्यक्रम शुरू किया, जहाँ पे ये स्वेज वाटर को ट्रीट करके अच्छा पानी नदी में छोड़ने का कार्यक्रम किया। इसमें काफी सफलता भी हुई है, मगर बहुत सारे काम अभी बाकी है। बहुत शहरों में अभी ये एसटीपीस बनाना है और
1: जी
0: उसको चालू कराना भी है। ये कार्यक्रम अभी चल रहा है।
1: अशोक जी, अभी आपने शहरों में पानी की पाइपलाइनों से होने वाली लीकेज की बात की है, और जो अच्छा पानी होता है उसमें गंदा पानी मिल जाता है, उससे भी समस्या आती है। तो प्रधानमंत्री ने इसके लिए कहा है कि सही योजना, पक्के इरादे, पर्याप्त संसाधन और सक्षम अधिकारियों के माध्यम से इसको एक अवसर में बदला जा सकता है, ताकि जो भी हमारे सामने इससे संबंधित दिक्कतें आ रही उनको दूर किया जाए।
0: एक्चुअली देखा जाए तो कई सालों से प्रधानमंत्री पानी के जो मैनेजमेंट के बारे में जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की बात की थी। जैसे उन्होंने कल बताया था कि सबका प्रयास के साथ हमको जल के क्वालिटी और क्वांटिटी के दोनों में मैनेज करना पड़ता है। वाटर सिक्योरिटी में समस्या आता है तो उसमें दो इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं, एक तो वाटर क्वांटिटी के मुद्दे होते हैं और दूसरा वाटर क्वालिटी के होता है। ये वाटर क्वांटिटी के लिए जैसे मैंने बताया, हम अगर रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे तो हमको पानी मिल सकता है, अगर हम वाटर यूसेज को रिड्यूस करेंगे तो भी हमको पानी मिल सकता है, क्योंकि अगर हम एक जगह पे 10 लीटर या 50 लीटर पानी यूज करते हैं, अगर उसका यूसेज रिड्यूस करके 10 लीटर या उससे कम करेंगे
1: जी
0: तो हमको बचत मिल जाता है, वो बचत पानी का ना सेविंग होता है। तो ये वाटर स्कैर्सिटी के लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि हम पानी जो बचत करते हैं वो दैट भी वाटर जनरेटेड सॉर्ट ऑफ थिंग। सेकेंड, हमको एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वाटर सिक्योरिटी में, एक तो रीयूज ऑफ वाटर और रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर और रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, ये सब इंडस्ट्री एरिया में होता है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो वाटर सिक्योरिटी के, जो वाटर क्वांटिटी के बारे में बोलेंगे, तो हमारा वाटर यूज एफिशिएंसी जो आंकड़ा है वो बहुत कम है। तो जैसे प्रधानमंत्री ने बताया, अगर हम स्कीम्स तैयार करें और टेक्नोलॉजी को यूज करके और प्रॉपर मैनेजमेंट करें तो हम वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ का, एग्रीकल्चर में 85% वाटर हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं इंडिया में, उनका वाटर यूज एफिशिएंसी बहुत पुअर है, 30% या 33% वाटर यूज एफिशिएंसी है। अगर हम अच्छे टेक्नोलॉजी यूज करके, अच्छा इरिगेशन सिस्टम डेवलप करके या ड्रिप इरिगेशन के ऐसे

0: यूज करेंगे तो हमारा वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो ऑफिशियल हम स्कीम्स तैयार करके लोगों को वाटर
1: जी
0: यूज एफिशिएंसी बढ़ाने का सलाह दे और उनका सपोर्ट दे, जैसे
1: बिल्कुल
0: अच्छे इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, बेटर इरिगेशन टेक्निक्स बताएंगे या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का प्रचार करें, तो हम वाटर यूज एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं और डेफिनेटली हमारा वाटर समस्या कम हो सकता है।
1: अशोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण को केवल एक सरकारी कार्यक्रम न बना करके बल्कि जन भागीदारी से जोड़ने और जल उत्सव को बढ़ावा देने की बात कही है। आज के समय में जब जब जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना बदस्तूर जारी है, लेकिन भूजल का दोहन भी उतना ही हो रहा है, तो क्या जन भागीदारी अकेले इस समस्या का समाधान कर सकती है या फिर हमें कानून या फिर आर्थिक प्रोत्साहन या स्थानीय संस्थाओं को इसके लिए आगे लाना पड़ेगा?
0: जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, यह सबका प्रयास है, सबको इन्वॉल्व करके जन भागीदारी से ही हम कर सकते हैं। जैसे आपने बताया ग्राउंड वाटर का दोहन, इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा भूजल का दोहन करने वाला देश है। हम पानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए और ये इरिगेशन के लिए बहुत पानी ग्राउंड से निकाल के यूज करते हैं, तो हमको एक तो उसकी यूज कम करना पड़ता है, दूसरा उसमें रिचार्ज करने के लिए भी हमको प्रयास करना है। तो जन भागीदारी में अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें तो बहुत पानी हम बचा सकते हैं। पहले क्या करते थे, हम लोग डैम्स बनाते थे, तो ये जो बारिश में जो पानी गिरते हैं वो एक साथ बह के कई एक जगह पर जाके हम इकट्ठा करके वहां पे बड़े बड़े डैम्स बनाते, बकरा नांगल डैम ऐसे बनाते थे। बट अभी तो ये डैम्स बनाने में बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि वहां के एनवायरमेंटल का प्रॉब्लम आता है, सबमर्जेंस के इश्यू आते हैं, लोगों को
1: जी
0: बहुत दिक्कतें होते हैं। इसीलिए डिसेंट्रलाइज रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम, दो कैच रेन कैंपेन ने जो प्रधानमंत्री ने किया वो किया। इसमें क्या किया, ये जन भागीदारी में होते हैं, बिकॉज हर एक व्यक्ति, हर एक गांव वाले, हर एक शहर वाले, हर एक आदमी इसमें अभियान में जुट सकते हैं। अपने घर में, अपने खेत में जितने भी बारिश आते हैं उसको अगर वो संचय करके रखेंगे तो वी कैन सेव अ लॉट ऑफ वाटर, वो तो भूजल का स्तर भी बढ़ा सकते हैं। तो इट्स ए डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेटिक कैंपेन
1: जी
0: एंड ये जन भागीदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है।
1: अशोक जी, प्रधानमंत्री ने पानी बचाने वाली तकनीकों को बड़े पैमाने पर अपनाने की बात कही है और दुनिया के जो बेहतरीन तरीके हैं उनसे सीखने पर जोर दिया, यानी कि हम केवल अपने देश तक सीमित अगर ना रहें, भूजल बचाने के बारे में, जल संरक्षण के बारे में पूरी दुनिया से अगर अच्छी बातें सीख सकते हैं तो ये बहुत आवश्यक सी चीज है। आपको क्या लगता है इससे?
0: कई स्टेट लाइक इसराइल और नेदरलैंड्स, वो पानी में उनका बहुत दिक्कतें थे, तो उन्होंने कैसे टेक्नोलॉजी की यूज करके कई नए नए आविष्कार चला के पानी का बचत किया है, पानी का वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ा है और वो जनता का जो वाटर की समस्या का हल निकला। आप देखे जाए तो इसराइल के ऐसा देश है जहां पे हमसे बहुत कम बारिश गिरती है और वहां पे 92% से ज्यादा पानी वो रिसाइकिल करके यूज करता है। एग्रीकल्चर में वो उनका जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा एडवांस्ड है, प्रिसिशन इरिगेशन बोलते हैं। जितना पानी चाहिए मतलब बूंद बूंद के हिसाब से वो मेजर करके पौधे को देते हैं और वो पौधा 100% वो वाटर यूज करते हैं। वो बड़ा कॉस्टली टेक्नोलॉजी है बट ये एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जहां पे जो रिसाइकिल का जो सिस्टम है वो इसराइल में यूज करता है। सिमिलरली नेदरलैंड में फ्लड को मैनेज करने के लिए वो कई टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत सारे सिंगापुर में और श्रीलंका में है। तो हम बाकी देशों से भी जानकारी ले सकते हैं बट हमारे भारत में भी इतिहास में भी देखा जाए तो प्राचीन काल में भी हमारे जो पूर्वजों ने पानी को संभालने के लिए काफी कार्यक्रम किए थे, पानी को महत्व देते थे और कई जगह पे आपने टांगा देख सकते हैं। यहाँ पे दिल्ली में अग्रसेन की बावड़ी के बारे में आप जानते हैं और रानी की बाव है जो गुजरात में, तो कई जगह में ऐसे स्टेपल्स भी है। आपको याद है मोहनजोदड़ो में भी कॉमन बात की बात करते थे और ड्रेन्स की बात करते थे और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स की बात है। तो हमारे देश में भी बहुत सालों से वाटर हार्वेस्टिंग का प्रदर्शन चलते आ रहा था बट साथ ही साथ जैसे प्रधानमंत्री ने कहा बाकी देशों से भी हम लर्न कर सकते हैं और उसका अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज करके हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: जी अशोक जी, हमारे देश में कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में जो पानी इस्तेमाल होता है वो उपचारित करके उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके लिए हमें किस तरह की योजना बनानी चाहिए, कैसे उपाय करने चाहिए कि जो औद्योगिक क्षेत्रों से निकला हुआ पानी उसको हम अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सके अन्य कामों में?
0: देखो दिस इज ए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, वो सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। एक तो जो पानी हम स्वेज से या इंडस्ट्रियल वे से भी निकलते उसको ट्रीट करके हम इरिगेशन में सिंचाई में काम लगा सकते हैं। सिंचाई में 100% प्योर वाटर देने की जरूरत नहीं है, बट इसपे अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट करके हम ये पानी हम सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं। बिकॉज हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इज ड्रिंकिंग वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो 100% प्योर होना चाहिए। अगर हम स्वेज वाटर को

0: ट्रीट करके सफिशियंट पैरामीटर्स सफिशियंट ला करके जब थोड़ा फॉस्फोरस ज्यादा रहे तो अभी अब प्रॉब्लम है, वो इरिगेशन में यूज करते हैं, वो पानी हम पी नहीं सकते मगर इरिगेशन के लिए काम आ सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि ये अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स पे वाटर ट्रीट करके हम पानी सिंचाई के लिए यूज कर सकते। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से होते हैं क्योंकि जहां पे तापमान बढ़ने से आइस और ग्लेशियर मिल करके वो किसी लेक में डाल के वहां से वो पानी बहुत जोर से बाहर आ जाते, इसी की वजह से वो बांध हुए थे। इसमें हमारे वैज्ञानिकों को बहुत सैटेलाइट इमेजरी सब यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके वी कैन प्रेडिक्ट दी फ्लो वाटर फ्रॉम दिस लेक्स। तो अगर हम सैटेलाइट मैपिंग करके या ऐसे टेक्नोलॉजी यूज करके गोल्फ ग्लोव को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मेल्टिंग को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो देन वी कैन प्रेडिक्ट फ्लड एंड रिड्यूस द डैमेज, अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेटली हमारे IITs और टेक्नोलॉजी ISRO जैसे इंस्टीट्यूशन को इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं।
1: जी अशोक जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे जल संरक्षण और प्रबंधन में तकनीक और जन भागीदारी के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: कंट्री वाइड इनसाइट्स। This is Akashvani. In the program Insights, now we bring you a discussion on India's rising economic strength and the significance of the sovereign credit rating upgrade. The participants are A.K. Bhattacharya, economic analyst, and Anubha Rohatgi, anchor.
4: Indian economy's progress has been spectacular over the last decade. Another feature in its cap was added recently when the Japan Credit Rating Agency JCR upgraded India's long-term foreign currency and local currency issuer ratings from BBB+ to A-. It has also raised India's country ceiling by one notch to A. To understand what this upgrade means economically, the factors that led to it and other related issues, economic analyst A.K. Bhattacharya now joins me in Akashvani's Insights program. Mr. Bhattacharya, welcome to the program.
5: Thank you for having me here.
4: Mr. Bhattacharya, I'll start with a very basic question. What exactly does moving up from a B to an A category mean? What changes for India with this upgrade?
5: Well, as you know, that Japan Credit Rating Agency is among few other international rating agencies like Fitch, Moody's and Standard & Poor's who rate sovereign countries and their credit risks. With the case of the Japan Credit Rating Agency, India was rated at B. Now, it has been upgraded by a notch to A-. What it meant earlier from the Japan Credit Rating Agency's point of view, it meant that the country had adequate capacity to repay its debts. It had a moderate risk, but its investment grade was just the beginning, the lowest investment grade. So now, once the Japan Credit Rating Agency upgrades India to the next level, which is A-, which means it is a low-risk country and it has got a strong capacity to meet commitments.
4: So the last time India was assigned an A by a rating agency was way back in 1988. That was Moody's. Since then, we have been in the B category and now the JCR has upgraded us to an A-. How significant is this upgrade coming as it does after more than three decades?
5: Well, the steady work in progress, I would say, in the last 35 years of India's reforms journey, when India had an unprecedented balance of payments and fiscal crisis in 1991. Since then, the governments of the past have taken several steps to reform the Indian economy in a manner that today we have reached a point our credit rating is not only investment grade, but with the Japan Credit Rating Agency, it is a notch higher.

0: what does India need to continue doing to not only retain this upgraded rating, but even go another notch up?
1: Well, I think the path of policy reform should be pursued with greater vigor. We have already seen how taxation reforms have given us rich dividends in terms of not only tax buoyancy, but also increased tax coverage. We have seen how rationalization of taxes, GST particularly, has not led to a decline in tax collections, but on the contrary, an increase in tax collections. We also need to give a bigger push to our overall policy support system for the MSMEs, and that would include tariff reforms, which the government is already committed to. As a matter of fact, the government is committed to reducing most of its tariffs to single digit by 2028. There is need for a more friendly bilateral investment treaty, as a result of which the foreign investors feel more assured and safe in investing in our country. So there are a host of reform issues that need to be tackled so that this virtuous cycle of better fiscal consolidation, more reforms leading to better credit rating becomes into a virtuous cycle, and we keep getting the benefits of reforms in every possible way.
0: Mr. A.K. Bhattacharya, thank you so much for joining Akashvani's Insights program and sharing your views on this issue.
1: Thank you very much for having me here.
2: You were listening to a discussion on India's rising economic strength and the significance of the sovereign credit rating upgrade. The participants were A.K. Bhattacharya, economic analyst, and Anubha Rohatgi, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on EIR. This program is also available on our YouTube channel, News on EIR Official.
3: Insights.
4: आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। आइए श्रोता, आप सुनते हैं प्रादेशिक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।
5: ये आकाशवाणी है। आज के क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के पहले भाग में आप सुनेंगे उस्ताद सलीम अल्लाह वाले का गजल गायन।
6: दिस इज आकाशवाणी। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक यू विल लिसन टू अ गजल रिसाइटल बाय उस्ताद सलीम अल्लाह वाले।
5: उस्ताद सलीम अल्लाह वाले का जन्म मध्य प्रदेश के देवास में एक संगीत परिवार में हुआ। उन्होंने मात्र 5 वर्ष की आयु से अपने पिता और गुरु उस्ताद दद्दू खां साहब से गजल गायन की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने आगरा और पटियाला घरानों के महान उस्ताद हाजी अमीर मोहम्मद खां साहब से शास्त्रीय गायन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे देश के एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आकाशवाणी महानिदेशालय नई दिल्ली द्वारा गजल गायन और तबला वादन दोनों विधाओं में टॉप ग्रेड से सम्मानित किया गया है। उस्ताद सलीम अल्लाह वाले को बचपन से ही गजल गायन के प्रति गहरा लगाव रहा है। उनके द्वारा रचित गजलें शास्त्रीय रागों पर आधारित हैं। उन्होंने देश के अनेक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संगीत समारोहों में गजल गायन प्रस्तुत किया है। इनमें देहरादून का विरासत समारोह, हैदराबाद का आलाप गजल समारोह और बज़्मे गजल तथा भोपाल के भारत भवन में संतवाणी समारोह प्रमुख हैं। उनके अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का जश्न उर्दू, भोपाल का बेगम ऑफ परी बाजार, जयपुर का सिंजारा समारोह, उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन और लखनऊ महोत्सव शामिल हैं। उस्ताद सलीम अल्लाह वाले को मध्य प्रदेश कला गौरव पुरस्कार, अभिनव कला सम्मान, संगीत शिरोमणि सम्मान, तालमणि सम्मान, चक्रधर सम्मान और प्राइड ऑफ भोपाल सहित अनेक सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। उस्ताद सलीम अल्लाह वाले वर्ष 2023 में आकाशवाणी भोपाल में स्टाफ आर्टिस्ट के पद से सेवानिवृत्त हुए। वर्ष 2023 में ही उन्होंने एक साथ 1500 विद्यार्थियों द्वारा तबला वादन करवाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया।
6: उस्ताद सलीम अल्लाह वाले वॉज बॉर्न इन देवास मध्य प्रदेश इन टू अ फैमिली ऑफ म्यूजिक।

0: उस्ताद सलीम अल्लाह वाले की आवाज में अब पेश है राजेश रेड्डी की लिखी ये गजल, ऐसे न बिछड़ आंखों से अशकों की तरह तो।
1: नाउ प्रेजेंटिंग अ गजल रिटन बाय राजेश रेड्डी, ऐसे न बिछड़ आंखों से अशकों की तरह तू।

0: आज के इस गजल गायन की अंतिम प्रस्तुति में डॉक्टर बशीर बद्री की रचना परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता।
1: एंड नाउ फॉर द फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ टुडेज गजल रिसाइटल वी ब्रिंग यू अ गजल रिटन बाय बशीर बद्र। परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता।

0: अभी आपने उस्ताद सलीम अल्लाह वाले की गजल प्रस्तुति सुनी। संगत करने वाले कलाकार थे तबले पर उस्ताद मोहम्मद नईम, वायलिन पर मनोज कुमार बमरेले, गिटार पर मोहम्मद अरशद और सिंथेसाइजर पर शाहिद मासूम।
1: यू हैव जस्ट लिसन टू अ गजल रिसाइटल बाय उस्ताद सलीम अल्लाह वाले। ही वॉज अकम्पनीड बाय ऑन तबला उस्ताद मोहम्मद नईम, ऑन वायलिन मनोज कुमार बमरेले, ऑन गिटार मोहम्मद अरशद, ऑन सिंथेसाइजर शाहिद मासूम।
0: इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी भोपाल में की गई और इसका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया गया। इसी के साथ आज के क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के पहले भाग का समापन होता है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड एट आकाशवाणी भोपाल एंड ब्रॉडकास्ट बाय आकाशवाणी दिल्ली। विद दिस वी कंक्लूड द फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक।
2: लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं राजस्थान के मांड गायक और आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार गोपाल सिंह खींची के गाए लोकगीत। गोपाल सिंह खींची ने गायन की शिक्षा मांड गायक चिरंजीलाल तंवर, शमसुद्दीन और बनारसी बाबू से प्राप्त की है। आपने कई विदेशी मंचों पर भी अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। आप गायन के अलावा तबला और नगाड़ा वादन की भी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। आपने कई सम्मान भी प्राप्त किए हैं। आइए अब सुनते हैं उन्हीं के गाए लोकगीत।

0: तो आपसे कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख दा वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर सफलतापूर्वक वार्ता पूरी होने का स्वागत किया है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
1: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
0: वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बेल्जियम की रक्षा कंपनियों से भारत की विनिर्माण क्षमता के साथ अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को जोड़कर संयुक्त रूप से रक्षा उपकरण विकसित करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में भारत बेल्जियम रक्षा सीईओ बैठक में उन्होंने साइबर सुरक्षा, एआई आधारित ड्रोन, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाले वाहनों और उन्नत हथियार प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। बेल्जियम के रक्षा और विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रांकेन ने भी दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर जोर दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मुकाबले में हांगकांग के सामने 194 रन का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Renuka. India and Belgium today reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgian counterpart, Bart De Wever, welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. The two sides identified significant potential for cooperation in pharmaceuticals, life sciences, semiconductors, defense manufacturing, critical minerals, renewable energy, ports, logistics, space, and advanced technologies. India and Belgium today exchanged several agreements, including letter of intent on defense cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes, including cybercrime and diplomatic training. In his press statement, Prime Minister Modi emphasized that India's economy has maintained its momentum even in this challenging environment. He said in the last quarter, India recorded a growth of 7.8%. He further said that today, India's growth story is becoming a source of confidence and new opportunities for the world. He highlighted that the scope of bilateral cooperation has expanded beyond traditional sectors to reach strategic areas such as defense and clean energy.
3: हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे। फ्रेंड, रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। आज हमने दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई है।
2: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today lauded the small and medium enterprises industries for playing a pivotal role in achieving 7.8% GDP growth in the first quarter of the current fiscal year. While chairing a national workshop on leveraging FTA's outreach program in New Delhi, Mr. Goyal expressed confidence that free trade agreements signed with various countries will pave a steadfast pathway in becoming a major exporter. In Uttar Pradesh,

0: 5 lakh devotees expected to visit the city. In badminton, India's ace shuttler Kidambi Srikanth will face Hong Kong's Lee Shuk Yui tomorrow in the men's singles quarterfinals at the China Masters Super 750 in Shenzhen. Srikanth beat Canada's world number 9 Victor Lai 21-18-21-19 in pre-quarterfinals today. In women's cricket, India women defeated Hong Kong by 137 runs. India had set a target of 194 for Hong Kong in their second Group A match in the 2020 Asia Cup at Dubai International Stadium in UAE tonight. And that's the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है और स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक समय हुआ है 11:10, जो अब वक्त हो गया है हमारे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। और मैं हूँ आपके साथ प्रीति,
2: और दोस्तों आज आपके साथ मैं हूँ आरती।
1: हम दोनों लेकर हाजिर हैं ये कार्यक्रम, और क्योंकि दोनों शामिल हैं तो फिर हम दोनों ही आपके जो भी फरमाइशी गीत हैं उसके बारे में बताएंगे और जो भी हमें संदेश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जितने भी संदेश हैं हम सबकी जानकारी दें।
2: जी प्रीति, एक बात और बता दें हम अपने सुनने वाले श्रोताओं को, भाई अगर आप भी हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप भी हमें संदेश भेज सकते हैं। और संदेश भेजने के लिए जो हमारी ईमेल आईडी है वो है ipradiodelhi@gmail.com। तो इस पर आप हमें संदेश भेज सकते हैं और अपनी फरमाइश की गीत भी सुन सकते हैं।
1: तो हम क्यों ना पहला संदेश पढ़ लें।
2: जी
1: भाई, उन्होंने फरमाइश की है और गायक हैं मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर, और गांव है टोराबाल, ज़िला है नवाशहर। गगनदीप थांदी, चित्रा कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी, इन्होंने मैसेज किया है और अपने गीत की फरमाइश की है। इसके अलावा फिल्म रोटी से भी गाने की फरमाइश की है। हम कोशिश करेंगे आरती कि हमारे पास जितनी भी फरमाइश आ रही है हम उससे जुड़े में गीत की फरमाइश की है। इसके अलावा है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे पास संदेश किया है नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी कुमारी, लड्डू देविका चौधरी, और इन्होंने कहा है कि हमें किसी भी फिल्म से कोई गीत सुनवाएं।
2: तो देखिए इन्होंने कहा है कि कोई भी गीत सुनवा दे। और देखिए अगली फरमाइश की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो हमें मैसेज किया है ये लिख रहे हैं आदरणीय प्रसारक जी, नमस्कार भाई, आपको भी नमस्कार। और ये महाराष्ट्र से इन्होंने हमें मैसेज किया है, और मैसेज करने वाले हैं पी एस नावकर, और इनके साथ हमें फरमाइश की है निर्मला विशाल, और मलकापुर महाराष्ट्र से ही भेजा है नारायण सोपान आशीष, इन्होंने हमें ये फरमाइश की है।
1: जी बिल्कुल, और देखो फरमाइशों का तांता जो है वो लगातार आ रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम संदेश पढ़ पाए। गांव और डाकघर निमनाबाद, ज़िला जिंद है, हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर, इन्होंने भी फरमाइश की है कि हमें कोई भी एक गीत सुनवाएं।
2: देखिए प्रीति, फरमाइश तो हमारे पास बहुत आ रही है, तो चलिए अब कार्यक्रम की
1: शुरुआत करते हैं। भाई एक गीत के साथ शुरुआत करते हैं और फिर हम बढ़ते हैं अपने संदेशों की तरफ।

0: आरती देखो मैसेज तो हमारे पास लगातार बहुत आ रहे हैं। अभी हमें सतीश अनेजा, बिमला अनेजा ने मैसेज किया है, साथ में हम दोनों का नाम लिखा है और कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। तो हमारी तरफ से भी आपको पूरे परिवार को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: और देखिए इन्होंने ही मतलब हमें दो तीन बारी मैसेज कर दिया, तो देखिए हम आपसे ये कहेंगे कि आप जो मैसेज है वो एक बारी भेजिए, क्योंकि बहुत से जो श्रोता हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं तो भाई उनको भी अपनी फरमाइश जो है यहाँ हम तक पहुँचानी है। तो चलिए अब अगले मैसेज की ओर बढ़ते हैं और आपको बता दें कि ये छत्तीसगढ़ से हमें मैसेज किया है हिमकेश्वर साहू, करण राहुल और चंपा साहू ने।
0: इन्होंने हमें फिल्म की फरमाइश की है कि आप किसी भी फिल्म से

0: हमें एक गीत सुनवाएं। इसके अलावा रघुवीर नगर दिल्ली से सुन रहे हैं हमारा ये कार्यक्रम जनाब दिलावर खान साहब, मोहतरमा हसीना बानो, एलिजा नायाब और प्यारे लड्डू। उन्होंने भी एक मधुर गीत की हमसे फरमाइश की है। और साथ में इसके अलावा हमारे पास मैसेज आया है विराम गम अजीत कुमार भावसार और प्रमिला भावसार, इन्होंने भी मैसेज किया है और गीत की फरमाइश की है। और ये हैं सरफरुद्दीन अंसारी बक्सर बिहार से, इन्होंने मैसेज किया है। साथ में इन्होंने नाम और भी लिखे हैं जैसे फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्बू अंसारी
1: और डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी और गोला बाजार बक्सर से मैसेज किया है। श्रद्धा नंद आर्या, अभ्यानंद आर्या और परमानंद आर्या और सरीमपुर बक्सर से ही मैसेज किया है राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान ने। चलिए एक और फरमाइश हम पढ़ देते हैं। और देखिए ये एक हमारे श्रोता हैं, ये कह रहे हैं कि आप हमें किसी भी फरमाइश में शामिल कर लें। और ये पटेल नगर से हमें मैसेज कर रहे हैं, इनके साथ हमें फरमाइश भेजी है डॉक्टर रमेश कुमार, गीता रानी, गगनदीप आरजू और गुड्डू ने।
0: जी बिल्कुल, इन्होंने हमें मैसेज किया है और फिल्म जो है कृष्ण गीत सुनाने की फरमाइश की है। और हम कोशिश करेंगे कि आपको जन्माष्टमी के अवसर पर हम कृष्ण भजन या कोई ऐसा गीत ज़रूर सुनवाएंगे। आदर्श नगर मालाउट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मैंडी शर्मा और सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, इन्होंने भी मैसेज किया है हमें कार्यक्रम में।
1: और देखिए अगली पसंद की बात करें तो ये फरमाइश हमें भेजी है, ये लिख रहे हैं आपको हमारा प्यार भरा अभिनंदन भी, आपको भी नमस्कार। और ये हमें इन्होंने मैसेज किया है शिवाजी चौक कटनी से, और मैसेज करने वाले का नाम है अनिल ताम्रकार और इनके साथ फरमाइश की हमें अमर, दिलीप, राजू, रजन, रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यस और सोम्या ने, और साथ ही उनके मम्मी पापा ने भी फरमाइश की है कि आप किसी भी गीत में हमें शामिल कर लें।
0: जी बिल्कुल, और इसके अलावा देखिए एक और मैसेज मैं पढ़ रही हूँ, नागचून रोड संजय कॉलोनी से खांडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी, इन्होंने हमें मैसेज किया है और फरमाइश की है कि आप कोई भी एक गीत मधुर सुनवाएं। इसके अलावा है प्यार भरा नमस्कार हमें भेजा है आपको भी, नाम है
1: ये हमें मैसेज किया है किशन सपकाल ने और इनके साथ हमें फरमाइश भेजी है आशा, सोनिया, साईराज, विशाल, और ये मैसेज इन्होंने हमें किया है शास्त्री नगर बीड़ शहर से।
0: जी बिल्कुल। अगला मैसेज है अस्तुपुरा ज़िला मऊ से मजहर अली अंसारी, रज़िया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद, इन्होंने लिखा है कि अपनी पसंद से कोई भी एक गीत सुनवा दें तो मेहरबानी होगी। भाई मेहरबानी तो आपकी होगी कि आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं और न सिर्फ सुनते हैं आरती, मैसेज करके हमें एक तरह से कहते हैं ना कि ये प्रोत्साहित भी करते हैं। तो आपके प्यार भरे मैसेजेस पढ़ के हमें भी बहुत अच्छा लगता है और हमारा जो कार्यक्रम का जो समय होता है वो हमें पता ही नहीं चलता है कि कितनी जल्दी वो बीत गया। अभी देखो मैं मैसेज पढ़ रही हूँ स्वर्ण सिंह गांव दौलेवाला ज़िला मोगा पंजाब से, बताइए इतनी दूर से कार्यक्रम सुना जा रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए।
1: वाकई प्रीति, जब हमारे श्रोता हमें मैसेज करते हैं और ये कहते हैं कि हम आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं और अभी हमने गीत सुना तो हमें लगता है कि किस तरह से वो हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं।
0: जी बिल्कुल, और देखो ना अभी फिर से एक मैसेज आया फारूक अली खान का, उन्होंने लिखा है बाकायदा कि इस रात की तन्हाई में मैं आप का कार्यक्रम सुन रहा हूँ, प्रोग्राम और गीत दोनों पसंद आ रहे हैं। और इन्होंने भी कहा है कि भाई गीत शामिल करें। और कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा, ये नाम है जिन्होंने अपने मैसेज में लिखा है। तो आइए क्यों ना अब सुनवाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत लेकर आए हैं हम।

तो अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। चलिए पढ़ते हैं हम अपनी फरमाइश की ओर आगे। और देखिए बता दें आपको कि अगली जो फरमाइश हमें भेजी है ये बिट्टू हमें भेज रहे हैं, और इन्होंने हमें मैसेज किया है जलालाबाद वेस्ट से, और इनके साथ हमें फरमाइश भेजी है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा ने। और दोस्तों अगला जो ये संदेश हमें भेजा है ये नासिर शेख जी हमें मैसेज कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं, सब प्रेम नमस्ते भाई, आपको भी नमस्ते। और इन्होंने हमें मैसेज किया है महाराष्ट्र से, इनके साथ फरमाइश भेजी है हमें नासिर शेख, नाजिया नासिर साजिद शाहिद शेख ने। और देखिए अगले मैसेज की बात करें कि ये हमें छोटे अंसारी जी मैसेज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रोग्राम अच्छा है और हम इस कार्यक्रम को सुन भी रहे हैं। तो देखिए आपका शुक्रिया जो आप हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और देखिए आप हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो आपको बता दें कि ये इनके साथ हमें फरमाइश की है आलम अंसारी और असद अंसारी ने, और ये कह रहे हैं कि किसी भी गीत में आप हमें शामिल कर लें। तो दोस्तों अगले गीत

ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये जो फरमाइश ये हमें आई है, ये फागरूम यादव जी हमें मैसेज कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि आपको सप्रेम नमस्कार, भाई आपको भी नमस्कार और कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, भाई आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं और कह रहे हैं कि आपका कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आपका भी धन्यवाद जो आप कार्यक्रम सुन रहे हैं और हमें भी अच्छा लग रहा है कि आप हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आपको ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों बता दें कि ये मैसेज जो हमें भेजा है ये संबलपुर से हमें इन्होंने मैसेज किया है और इनके साथ फरमाइश की है ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने। देखिए अगली फरमाइश की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें ये फरमाइश हमें भेजी है डॉक्टर आशीष ने और इन्होंने हमें मैसेज किया है पंजाब से। इनके साथ हमें फरमाइश भेजी है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक ने। अगले संदेश की ओर बढ़ें तो आपको बता दें कि दोस्तों ये मैसेज जो हमें आया है ये मोहाली चंडीगढ़ से इन्होंने हमें मैसेज किया है और मैसेज भेजने वाले का नाम है टीटी मल्होत्रा। इनके साथ हमें फरमाइश की है ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं ये एक और खूबसूरत सा गीत।

तो आप सुन रहे हैं एक फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरती। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किसका संदेश जो है हम तक पहुँचा है। तो आपको बता दें दोस्तों, ये जो अगला संदेश हमें भेजा है, ये नारायण जी हमें मैसेज कर रहे हैं और इंदौर कॉलोनी से उन्होंने हमें मैसेज किया है, और ये कह रहे हैं कि आप हमें किसी भी गीत में शामिल कर लें। अगली फरमाइश जो हमें भेजी है, ये नासिर शेख जी हमें मैसेज कर रहे हैं, इन्होंने हमें महाराष्ट्र से मैसेज भेजा है। और देखिए अगली जो फरमाइश है, ये बुधराज खोरवाल जी हमें मैसेज कर रहे हैं, और उत्तम नगर दिल्ली से इन्होंने हमें मैसेज किया है। इनके साथ हमें फरमाइश की है कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल ने।

दोस्तों एक और मैसेज जो है हमें किया है, ये फागू राम यादव जी हमें मैसेज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपको नमस्कार भाई, आपको भी नमस्कार, और कृष्ण जन्माष्टमी की उन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं, और कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, और इन्होंने हमसे फरमाइश की है कि आप हमारे नाम को ज़रूर शामिल कीजिएगा। और संबलपुर कांकेर से इन्होंने हमें मैसेज किया है, इनके साथ फरमाइश हमें भेजी है फागू राम और अविनाश यादव ने। अगले मैसेज की ओर बढ़ते हैं और आपको बता दें कि दोस्तों ये जो मैसेज हमें किया है ये अरुण कुमार पांडे जी मैसेज कर रहे हैं, और इनके साथ फरमाइश भेजने वाले हैं के पांडे, और मध्य प्रदेश से इन्होंने हमें मैसेज किया है और कह रहे हैं कि किसी भी गीत की फरमाइश में आप हमें शामिल कर लें। दोस्तों अगले संदेश की ओर बढ़ते हैं और आपको बता दें कि ये मैसेज हमें किया है छोटे अंसारी जी ने, और ये कह रहे हैं कि हमें आपका कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और इन्हें हमारे गीत भी पसंद आ रहे हैं, और किसी भी गीत में हमारा नाम शामिल कर लें। दोस्तों अगले फरमाइश की बात करें तो देखिए बहुत से ऐसे नाम जो है मैं देख रही हूँ उनके लगातार मैसेज आ रहे हैं, तो एक ही बारी में एक मैसेज करें मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, तो बार बार ही आप मैसेज ना करें, क्योंकि और भी जो श्रोता हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं तो उनकी फरमाइश भी हमें पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि सबकी फरमाइश और सबके गीत बजना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों ये मैसेज हमें भेजा है खलील कुरैशी जी ने, और ये कह रहे हैं कि आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार भाई, आपको भी नमस्कार, और कह रहे हैं कि किसी भी गीत में आप हमें शामिल करें। इनके साथ हमें फरमाइश भेजी है एम खलील कुरैशी और नुसरत बेगम, हमद जमील और बेबी अरीबा हबीबा ने। दोस्तों अगली फरमाइश की ओर बढ़ते हैं और आपको बता दें कि ये जो फरमाइश हमें भेजी है सुदर्शन मुखी जी हमें मैसेज कर रही हैं, और उनके साथ हमें फरमाइश भेजी है अनीता मुखी, सिमरन मुखी और शांति नगर सोनीपत से इन्होंने हमें मैसेज किया है, और कह रहे हैं कि आपको सादर प्रणाम भाई, आपको भी प्रणाम, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की इन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं भाई, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों अगले मैसेज की ओर बढ़ें तो अगला मैसेज जो हमें भेजा है ये जीतू प्रसाद जी ने हमें मैसेज किया है, और ये बक्सर से हमें मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमें किसी भी गीत में शामिल कर लें। तो देखिए एक और फरमाइश जो ये हमें भेजी है रियासत हुसैन जी हमें मैसेज कर रहे हैं जसपुर उत्तराखंड से, और इनके साथ हमें फरमाइश की है नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर ने। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। देखिए ये मैसेज हमें कर रही हैं हसीना, और कह रहे हैं कि आप हमें किसी भी गीत में शामिल कर लें, और इन्होंने जय विहार नजफगढ़ से हमें मैसेज किया है, और इनके साथ फरमाइश की है शाहरुख फारूक, शबनम शहनाज जी ने। और अगली फरमाइश की बात करें तो दोस्तों ये मैसेज हमें किया है मोहम्मद कमर ने, और ये कह रहे हैं कि आपको नमस्कार भाई, आपको भी नमस्कार, और आप हमें किसी भी गीत में शामिल कर लें। तो बहुत से मैसेज जो है दोस्तों हम तक पहुंच रहे हैं, तो चलिए अब वक्त है कार्यक्रम में एक और खूबसूरत से गीत का, तो चलिए सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में ये एक खूबसूरत सा गीत।

0: अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में, और कुछ ऐसा ही हाल हमारा भी हो रहा है क्योंकि कार्यक्रम अब अपनी समाप्ति पर है। तो यही लग रहा है कि चलते चलते कुछ और ऐसे संदेश ले लिए जाएं जिससे कि जिन्होंने भी हमें याद किया है उनका नाम अगर आता है तो उन्हें भी ये लगता है कि चलो ठीक है, कार्यक्रम में हमारा नाम शामिल हुआ, हमारा संदेश शामिल हुआ। जबकि कोशिश हमारी यही रहती है कि हर नाम हम शामिल करें, लेकिन समय की ऐसी पाबंदी होती है कि कुछ नाम रह जाते हैं ना चाहते हुए भी। तो चलिए, मोहम्मद यासीन अनजान ने लिखा है मैसेज, गिरिडीह झारखंड से, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, साइमा नवाज, हसन नवाज, आबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। इसके अलावा इन्होंने मैसेज किया है, आदरणीय दीदी जी का प्यार भरा नमस्कार, भाई नमस्कार। और इन्होंने फिल्म दीवाना से कुमार सानू की ही आवाज़ में गाने की फरमाइश की है, शास्त्री नगर बीड शहर से, किशन सपकाल, आशा सकपाल, सोनिया, साईराज और विशाल ने। तो इसके अलावा हमारे पास मैसेज आया है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से, इन्होंने मैसेज किया है हमारे पास। और इसके अलावा बिट्टू जलालाबाद वेस्ट से मैसेज किया है, सुरेश गगननेजा, पूनम गगननेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा, इन्होंने मैसेज किया है और एक गीत की फरमाइश की है। इसके अलावा मैसेज किया है हमें छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, इन्होंने लिखा है मैसेज में, प्यार भरा नमस्कार आपको भी। और किसी भी फिल्म से एक मधुर गीत की फरमाइश इन्होंने की है। और इसके अलावा सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से मैसेज किया है, शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप ने, इन्होंने मैसेज किया है। और फिल्म की किसी भी फिल्म से गीत की फरमाइश की है। इसके अलावा है मैसेज हमारे पास पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। तो चलिए एक और हम गीत सुनते हैं चलते चलते इस कार्यक्रम में।
1: क्या हुआ?
2: वो तो
1: क्यूट है ना?
2: अरे पहलवान है,
1: पर तुमसे प्यार करती है।
2: हो नहीं सकता।
1: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
2: हो नहीं सकता।
1: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
2: ये हो नहीं सकता।
3: होनी को तो कुछ भी हो सकता है।

इसी गीत के साथ हमारा कार्यक्रम आपकी फरमाइश यही संपन्न होता है। सुनने वाले हमारे साथियों को नमस्कार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर 12 बजने को हैं। इन मीटरों पर अब हमारे प्रसारण संबंध होंगे सुबह 4:50 पर। आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए एआईआर लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। जय हिंद।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के

0: What's up, may Vanessa Xenow. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख दा वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बेल्जियम की रक्षा कंपनियों से भारत की विनिर्माण क्षमता के साथ अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को जोड़कर संयुक्त रूप से रक्षा उपकरण विकसित करने और बनाने का आग्रह किया। नई दिल्ली में भारत बेल्जियम रक्षा मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोलमेज बैठक में उन्होंने साइबर सुरक्षा, AI आधारित ड्रोन, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाले वाहनों और उन्नत हथियार प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए गए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। डॉक्टर जयशंकर ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। बैठक में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पात्र संस्थानों से विश्वास 2026 योजना के तहत लंबे समय से लंबित EPF बकाया विवादों को कम दर पर निपटाने की अपील की है। यह एकमुश्त निपटान योजना है जिसमें नियोक्ता कम जुर्माना देकर पुराने विवादों का समाधान कर सकते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना 28 दिसंबर 2026 तक खुली रहेगी और इसकी अंतिम तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। सरकारी ई मार्केटप्लेस और टेक्सटाइल कमेटी ने पुनर्चक्रित और दोबारा इस्तेमाल किए गए कपड़ा उत्पादों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के तहत कपड़ा कचरे, कतरनों और पुराने कपड़ों से बने उत्पादों को सरकारी ई मार्केटप्लेस के जरिए सरकारी खरीदारों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स स्मार्ट स्पोर्ट्स स्पेशलिटी अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि नए भवन से सेवाओं का विस्तार होगा और अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 64 गेंदों में 124 रन बनाए। भारत ने अपने पहले मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया था। देशभर में आज हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है और स्टूडियो की घड़ी में रात के 12:10 हुए हैं।

श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम सुरों का सफरनामा का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी हम सफर सरिता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ अपना पसंदीदा कार्यक्रम जो है, बिल्कुल आपको याद होगा, और हम फिर भी आपको बता देते हैं, कार्यक्रम का नाम है सुरों का सफरनामा। आज का सुरों का सफरनामा लेकर मैं हूं आपके साथ रहेंगे इस खूबसूरत सुरीले सफर पर। दोस्तों, संगीत का आसमान सितारों से भरा पड़ा है। कुछ सितारे बहुत तेज चमकते हैं, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो दिल के कोने में मीठा सा दर्द और रूहानी सुकून छोड़ जाती हैं। एक ऐसी ही मखमली पुरकशिश और सादगी भरी आवाज मुबारक बेगम की। आज के सफरनामे का हर एक लम्हा, हर एक तराना समर्पित है उसी बेमिसाल फनकार को। तो चलिए दिल थामिए और शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफर मुबारक बेगम के दिलकश नगमे के साथ।

वाकई कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी। केदार शर्मा के बोल और मुबारक बेगम की डूब कर गाई हुई तल्लीन आवाज, ये वो नगमा है जो वक्त की हर सरहद को पार कर चुका है। इस गीत को सुनकर आंखें अपने आप ही नम हो जाती हैं, दिल किसी पुरानी याद में डूब जाता है, ठहर जाता है।

दोस्तों आप सुन रहे हैं सफ़रनामा मुबारक बेगम का, और इस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए पहले हम एक संदेश ले लेते हैं जो हमारे श्रोता ने हम तक पहुंचाया है। नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? तो जनाब मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। और ये जो ईमेल हम तक पहुंचा है, ये पहुंचा है मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब संयम और साथ ही साथ मुस्कान जैन और मास्टर जीवियम जैन का। अपना संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कार्यक्रम सुनते रहिए। कार्यक्रम का नाम है सुरों का सफरनामा। दोस्तों मुबारक बेगम की जिंदगी सुरों की साधना और मुश्किलों से भरी एक सच्ची दास्तान है। साल 1936 में राजस्थान के झुंझुनू में उनका एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्म हुआ था। जहां तक बात की जाए उनके घर की, तो घर की मालयी जो हालत थी वो उतनी ठीक नहीं थी, बहुत कमजोर थी, और उनके पिता फल और मिठाइयां बेचकर गुजर बसर किया करते थे। हम अगर उनकी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो उन्हें कोई स्कूली तालीम तो नहीं मिल पाई थी, लेकिन कुदरत ने उन्हें सुरों की अनमोल दौलत से नवाजा था। बेटी के हुनर को पहचान कर पिता ने उन्हें अहमदाबाद और फिर उसके बाद मुंबई तक पहुंचा दिया।

दफा हम बात कर रहे हैं आज मुबारक बेगम की। मुंबई में मुबारक बेगम ने किराना घराने के उस्ताद रियाजुद्दीन खान और उस्ताद अब्दुल रहमान खान से शास्त्रीय संगीत की विधिवत और कड़ी तालीम ली। और आप यकीन मानिए कि महज 10 से 12 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो पर वो गज़लें गाने लगी और गज़लें गाकर उन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। फिर आया साल 1949। ये वो साल था जब संगीतकार नौशाद ने उन्हें फिल्म में उस दौर की शानदार मशहूर गायिका और अदाकारा सुरैया जी के साथ गाने का मौका दिया। और ये 1949 की फिल्म थी आइए, और इस फिल्म के द्वारा मुबारक बेगम का सफर शुरू हुआ। और दोस्तों, फिलहाल हमारे सफर में संभल से छोटे अंसारी और आलम अंसारी के साथ साथ असद अंसारी जी भी जुड़ चुके हैं और कार्यक्रम की तारीफ कर रहे हैं। और कार्यक्रम की तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए एक टॉनिक का काम करती है। और फिलहाल एक और खूबसूरत सा गीत मुबारक बेगम की ही आवाज़ में।

दोस्तों आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ अपनी ईमेल्स के जरिए। हमारा मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। ये वो माध्यम है जिसके जरिए आप अपने दिल की बात साझा कर सकते हैं हमारे साथ।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा और इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ सरिता। आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मशहूर गायिका, मशहूर गजल गायिका मुबारक बेगम की। 50 और 60 का वो दशक हिंदी फिल्म का स्वर्णिम दौर था। उस दौर में जब लता जी, आशा जी, शमशाद बेगम और गीता दत्त जैसी आवाज़ों का दौर था, ऐसे में मुबारक बेगम ने अपनी बिल्कुल अलग, बिल्कुल जुदा और ठहरने वाली आवाज़ से अपनी एक अलग पहचान कायम की। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी कशिश थी और ये वो कशिश थी जो सीधे रूह तक असर करती थी। एस डी बर्मन, सलील चौधरी, खयाम और नौशाद साहब जैसे संगीतकार उनकी प्रतिभा का गहरा सम्मान करते थे। 1955 में विमल राय की फिल्म देवदास आई तो पारुक और चंद्रमुखी के बीच कश्मकश को बयां करने के लिए मुबारक बेगम को चुना गया। आशा भोसले के साथ उनका वो युगल गीत आज भी संगीत के इतिहास में खास जगह रखता है। तो आइए सुनते हैं देवदास फिल्म का वही गीत।

1970 का वो दशक आते आते फिल्मी दुनिया की हवा बदल चुकी थी। मुबारक बेगम की जिंदगी बहुत ऐसे दुखों के पहाड़ से दब चुकी थी जहां उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। मुबारक बेगम जैसी संजीदा फनकारा अब इस चकाचौंध से दूर हो चुकी थी। जिंदगी ने उन पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया था। हुआ यूं कि उनकी बेटी शफाक बानो गंभीर बीमारी का शिकार हो गई और बीमारी के तहत उनके इलाज में जो मुबारक बेगम ने उम्र भर पूंजी जमा की थी वो सब की सब चली गई, यहाँ तक कि गहने तक भी बिक गए। और आखिर में हुआ यूं कि वो बेटी को भी ना बचा पाई।

दोस्तों, हम बात करें अगर मुबारक बेगम के पुरस्कारों की, तो महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार उन्हें 2008 में मिला। वहीं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार क्षेत्रीय लाइफटाइम कंट्रीब्यूशन, ये उन्हें पुरस्कार मिला। और इसके साथ साथ संस्कृति विभाग द्वारा वित्तीय सहायता और विशेष पेंशन भी उन्हें दी गई। उन्हें अपने करियर के दौरान पद्म पुरस्कारों या फिल्म फेयर जैसे बड़े राष्ट्रीय व्यावसायिक सम्मानों से जो वंचित रहना पड़ा, लेकिन लोक संगीत प्रेमियों के बीच उनके गानों को हमेशा मील का पत्थर माना गया।

दोस्तों, मुबारक बेगम की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि शोहरत और चकाचौंध मिट सकती है, लेकिन रूह से जो निकलते हैं वो वक्त की रेत पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। बिल्कुल, रात के सन्नाटे में मुबारक बेगम की सुर हमें ये याद दिलाते हैं कि दिल से गाया नगमा सदियों तक जिंदा रहता है। सुरों का सफरनामा अब, जी हाँ, अभी भी हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, तो ऐसा करते हैं एक और खूबसूरत सा गीत सुनते हैं। मुबारक बेगम की ही आवाज़।

दोस्तों, अब घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही हैं कि शुरू का सफरनामा यहीं पर समेटने का वक्त आ गया है। लेकिन आप जुड़े रहिए एआई लाइव न्यूज 24x7 चैनल के साथ। फिलहाल अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। जुड़े रहिए मुबारक बेगम की इस खूबसूरत आवाज के साथ। आपको छोड़े जा रही हैं, आनंद लीजिए इस खूबसूरत से गीत का। फिर किसी दिन, फिर किसी मोड़ पर होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 1 बजने को है। अब समाचार सुनिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख दा वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया। वित्त मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबेहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। डॉक्टर जयशंकर ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में और छोटे मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। इसके अलावा श्री गोयल ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की बोर्ड बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर संस्थाएं कारोबार, नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत, समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए तकनीक, AI और नवाचार को अपनाने पर जोर दिया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा है कि हरित नौवहन की दिशा में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होगा। श्री सोनोवाल ने कल गुरुग्राम के ऊर्जा और संसाधन संस्थान के ग्वाल पहाड़ी परिसर का दौरा किया और हरित नौवहन से जुड़ी विभिन्न पहलों की समीक्षा की। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने त्रिपुरा से 18 मीट्रिक टन जैविक चावल की खेप को निर्यात के लिए रवाना किया है। चावल की 4 किस्मों की यह खेप ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स भेजी जाएंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इससे त्रिपुरा के किसानों को नए अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेंगे और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कल नई दिल्ली में राजघाट समाधि स्थित समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राजघाट स्मारक के रखरखाव, साफ सफाई और प्रबंधन की समीक्षा की गई। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है। वहीं 4,216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए 2 और विमानों के जरिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बताया है कि गृह मंत्रालय ने नेपाल में लापता लोगों की पहचान के लिए DNA जांच की सुविधा उपलब्ध कराएगा। महिला क्रिकेट में भारत ने हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के फाइनल सेमीफाइनल में जगह बना दी है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 16 ओवर और 2 गेंद में 56 रन पर ऑल आउट हो गई। देशभर में आज जन्माष्टमी के अवसर पर उत्सव का माहौल है। मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

की अपनी सरिता। प्यार से नमस्कार स्वीकार कीजिए और कार्यक्रम का आगाज करते हैं हम कभी अजनबी थे इस फिल्म के गीत के साथ। आवाजें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की।

गीत सुनहरे कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अगला गीत। फिल्म का नाम है अधिकार। आवाज दी है मोहम्मद रफी ने और संगीत है आर डी बर्मन का।

अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हों आप पे निसार। हाँ बचपन हो

पढ़ना हमेशा आगे बढ़ना, सच का दामन ना छूटे चाहे ये दुनिया रूठे, काम तू अच्छे करना सिर्फ अल्लाह से डरना, सभी को गले लगाना मोहब्बत।

ये सुनते हैं अगला गीत फिल्म शिक्षा से। आवाज दी है यशुदास ने, संगीत है पप्पी लाहिरी का और गीतकार हैं कौहर खानपुरी।

शोखियों में झोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

अभी आपने सुना प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की थी, एस डी बर्मन का संगीत था। इसे सुनते हैं अगला गीत फिल्म स्वामी से, आवाज़ें लता मंगेशकर की है और संगीत है राजेश रोशन का।

जहां अपने आप सर छुप जाते हैं उस पत्थर को भी भगवान का रूप मान लिया जाता है। जिस जगह को देखकर परमात्मा की याद आए वो तीर्थ कहलाता है, और जिस आदमी के दर्शन से परमात्मा में भक्ति जागे वो महात्मा कहलाता है। तो अगर तेरे कारण ये पुराना मंदिर तीर्थ स्थान बन गया है और हजारों हजारों आंखें ऊपर उठ रही हैं प्रकाश की ओर, तो फिर तुझे चिंता क्यों? सर झुका ले और शांत होकर बैठ जा। समझ ले कि करने वाला कोई और है, तो सिर्फ एक बहाना है। काम उसका, नाम तेरा। उसका नाम ले और जो सौंपा गया है उस काम को

अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में ये खूबसूरत है प्यारा सा गीत। लीजिए सुनिए स्वयंवर फिल्म का अगला गीत, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ है।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार, ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। लीजिए सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाक द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिर

0: अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इनमें रक्षा सहयोग पर आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। वहीं यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। इसके अलावा श्री गोयल ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की बोर्ड बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर संस्थाएं कारोबार, नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत, समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए तकनीक, एआई और नवाचार को अपनाने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने त्रिपुरा से 18 मीट्रिक टन जैविक चावल की खेप को निर्यात के लिए रवाना किया है। चावल की चार किस्मों की यह खेप ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स के लिए है। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है। वहीं 4,216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए दो और विमानों के जरिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बताया है कि गृह मंत्रालय नेपाल में लापता लोगों की पहचान के लिए DNA जांच की सुविधा उपलब्ध कराएगा। देशभर में आज जन्माष्टमी के अवसर पर उत्सव का माहौल है। मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी के आयोजनों को लेकर यातायात परामर्श जारी किया है। रोहिणी के इस्कॉन मंदिर, रामलीला ग्राउंड और जापानी पार्क में आज सुबह 7 बजे से रात 1 बजे तक यातायात बाधित रहेगा। महिला क्रिकेट में भारत ने हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के फाइनल में सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 16 ओवर और 2 गेंद में 56 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India and Belgium have reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgium counterpart Bart De Wever welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the

किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। गए सावन में ये दीवारें यूं सीली नहीं थी, न जाने इस दफा क्यों इनमें सीलन आ गई है, दरारें पड़ गई हैं। और सीलन इस तरह बहती है जैसे खुश्क रुखसारों पे गीले आंसू चलते हैं।

ये बारिश गुनगुनाती थी, इसी छत के मुंडेरों पर ये बारिश गुनगुनाती थी, इसी छत की मुंडेरों पर ये घर की खिड़कियों के कांच पर उंगली से लिख जाती थी संदेशे, ये लगती रहती है बैठी हुई

0: दोपहरें ऐसी लगती हैं बिना मोहरों के खाली खाने रखे हैं, न कोई खेलने वाला है बाजी और न कोई चाल चलता है।
1: लाख बार उसमें

न दिन होता है, अब न रात होती है, सभी कुछ रुक गया है। वो क्या मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही नॉनस्टॉप फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए AI Live News 24x7 चैनल के साथ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। ये आकाशवाणी दिल्ली का एयरलाइव न्यूज 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 3 बजने को है। अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाक द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इनमें रक्षा सहयोग पर आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंट्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। वहीं यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने और छोटे मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। इसके अलावा श्री गोयल ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की बोर्ड बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर संस्थाएं कारोबार, नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत, समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए तकनीक, एआई और नवाचार को अपनाने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्यों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने त्रिपुरा से 18 मीट्रिक टन जैविक चावल की खेप को निर्यात के लिए रवाना किया है। चावल की 4 किस्मों की यह खेप ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स भेजी जा रही है। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है। वहीं 4,216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए 2 और विमानों के जरिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बताया है कि गृह मंत्रालय नेपाल में लापता लोगों की पहचान के लिए डीएनए जांच की सुविधा उपलब्ध कराएगा। देशभर में आज जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। दिल्ली यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी को लेकर यातायात परामर्श जारी किया है। रोहिणी के इस्कॉन मंदिर, रामलीला ग्राउंड और जापानी पार्क में आज सुबह 7 बजे से रात 1 बजे तक यातायात बाधित रहेगा। महिला क्रिकेट में भारत ने हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 16 ओवर और 2 गेंद में 56 रन पर ऑल आउट हो गई। स्मृति मंधना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आज तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India and Belgium have reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgium counterpart Bart De Wever welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. India and Belgium exchanged several agreements, including letter of intent on defense cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes, including cybercrime and diplomatic training. The Supreme Court of India will host the BRICS Chief Justices Forum in New Delhi from today. The forum will bring together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS, member states and partner countries. The forum will provide a platform for dialogue among the participating judiciaries and for exchange of views on contemporary issues relating to justice delivery, international dispute resolution, technology and sustainable development. Chief Justice of India Suryakant will hold a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations on the opening day. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal yesterday called upon the automotive industry to deepen localization, expand exports and prepare to serve global markets. Addressing the 66th Society of Indian Automobile Manufacturers, SIAM, annual convention in New Delhi, he urged the industry to seize the opportunities emerging from India's expanding trade partnerships, growing domestic market and global shifts in manufacturing. He said that the automotive sector would be one of the most important drivers of India's growth story in the years to come. He stated the industry had demonstrated strong growth and that rising incomes and aspirations offered considerable scope for this growth to continue. Vice President and ex-officio Chancellor of Punjab University, C.P. Radhakrishnan, will visit the university in Chandigarh today. During his visit, the Vice President will inaugurate the Advanced Instrumentation Facility at SAIF-CIL, Sophisticated Analytical Instrument Facility, Central Instrumentation Laboratories. The Vice President will also inaugurate the Punjab University Tech Innovation Forum, marking a major step forward in strengthening the university's research, innovation and startup ecosystem. Government has constituted a 31-member Joint Committee of Parliament on Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026. Lok Sabha MP Sanjay Jaiswal will head the joint panel to examine the FCRA Amendment Bill. Prominent names from Lok Sabha in the committee include Bhartruhari Mahatab, Tejasvi Surya, Nishikant Dube, A. Raja and Supriya Sule. From Rajya Sabha, Harsh Vardhan Shringla, Sanjay Kumar Jha, Praful Patel and Menaka Guruswamy have been included in the committee. Both Houses of Parliament on 12th August gave note for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. India Meteorological Department, IMD, has issued an orange warning predicting heavy to very heavy rainfall over Madhya Pradesh today. Heavy rainfall is also expected over Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Western Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and parts of Northeast today. IMD forecast a generally cloudy sky with one or two spells of light rainfall at many places of Delhi today. President Draupadi Murmu has extended greetings to the citizens on the eve of Janmashtami. In her message, the president said that the life and teachings of Lord Krishna breathe a new life into cultural and philosophical heritage of India. Meanwhile, the city of Lord Krishna, Mathura Vrindavan, is decked up for the grand celebration today on the occasion of Janmashtami. In women's cricket, India stormed into the semi-final of 2020 Asia Cup, defeating Hong Kong by 137 runs in the second Group A match at Dubai International Stadium in UAE. And that is the end of this news bulletin.
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल और श्रोताओं 3:10 और 8 सेकंड का समय हो चला है। ये समय है कार्यक्रम गीत गजल का।

पहली बार एक गजल पेश कर रहा हूँ जो उर्दू बहर या मीटर के बजाय हिंदी छंदों के वजन पर है। उम्मीद है ये तजुर्बा आपको पसंद आएगा। मुलाहिज़ा फरमाएं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गजल आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। श्रोताओं कुछ ही पलों में सुबह के 4 बजने को हैं, अब आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना सुनेंगे।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना, स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में सुबह के 4:20 होने को हैं। यह आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, सुबह के 4:20 हो चले हैं। ये समय है कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म का, जिसमें आज आप सुनेंगे सीरगाजी गोविंदराजन का राग कल्याणी में गायन। आदि ताल में निबद्ध रचना श्रीरंगम रंगा स्वामी पिल्लई की है। वॉयलिन पर आपका साथ दिया है थिरुप्पर कडल S. वीरा राघवन ने।

इसी के साथ कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म आज यहीं पर संपन्न होता है। कुछ ही पलों में सुबह के 4:50 होने को हैं। वंदे मातरम।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 45 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और श्रोताओं, आगे बढ़ने से पहले आपको प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे देते हैं। प्रातः 6:10 का समय होता है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का, जिसमें हम लेकर आते हैं भजन, शबद, नाथ और देशभक्ति संगीत। समय रहेगा प्रातः 6:10 का। प्रातः 6:40 का समय रहेगा चिंतन का, जिसमें आज आप सुनेंगे गीता में योग का बहुआयामी अर्थ। समय रहेगा प्रातः 6:40 का।

हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस आप सुन सकते हैं प्रातः 6:45 पर। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 38।

छह बजकर 55 मिनट का समय रहेगा संस्कृत में समाचार का, 7 बजे हिंदी में समाचार और 7 बजकर 5 मिनट पर अंग्रेजी में समाचार के बाद 7 बजकर 10 मिनट का समय रहता है कार्यक्रम संगीतिका का। आज के इस कार्यक्रम में आप कृष्णा भजन सुनेंगे।

गीतों भरी गुड मॉर्निंग फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं प्रातः 7:30 पर। समाचार प्रभात समय रहेगा 8 बजे का और मॉर्निंग न्यूज आप सुन सकते हैं 8:15 पर। उर्दू में खबरों का समय रहेगा 8:30 का और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा सुबह सुन सकते हैं आप 8:45 पर। आज आप सुनेंगे विजय कुमार का राग गुजरी तोड़ी में बांसुरी वादन।

0: ये थी सुबह की सभा में प्रसारित किए जाने वाले कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर सुबह के 5 बजने को हैं। अब आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से JSLV F-17 रॉकेट के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अनुसार प्रक्षेपण के करीब 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-5 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल खनिज खरीदने या ना खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबेहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है

0: और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश और व्यापार विभाग की रणनीतिक योजना और समन्वय समूह की उपसचिव एली लॉसन, जापान के विदेश मामलों के वरिष्ठ उपमंत्री हिरोयुकी नमाजू और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर शामिल हुए। इस दौरान समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी तथा मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत और वैश्विक स्तर के घटनाक्रमों पर विचार साझा किए। ये बैठक अगले क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की तैयारियों के सिलसिले में हुई। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी दी और आवश्यक निर्देश दिए। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है, वहीं 4,216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए दो और विमानों के जरिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी। देश भर में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं दिल्ली यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी को लेकर यातायात परामर्श जारी किया है। महिला क्रिकेट में भारत ने हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 16 ओवर 2 गेंद में 56 रन पर ऑल आउट हो गई। स्मृति मंधाना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 64 गेंदों में 124 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India's first imaging satellite in geosynchronous orbit was successfully launched by a GSLV rocket from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in the wee hours today. After the completion of a smooth 27-hour countdown, the GSLV F-17 rocket with a 2,367 kg payload mass began its ascent on dot at 2:55 a.m. from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center. The ISRO said the state-of-the-art Earth observation spacecraft EOS-05 successfully placed into sub-geosynchronous orbit about 18 minutes after it lifted off from the spaceport. The imaging satellite will provide real-time imagery and help the nation in areas including agriculture and disaster management. ISRO Chairman V. Narayanan said the mission will further strengthen India's Earth observation capabilities and improve the delivery of Earth observation services. India and Belgium have reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgium counterpart Bart De Wever welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. India and Belgium exchanged several agreements, including letter of intent on defense cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes, including cybercrime and diplomatic training. The Supreme Court of India will host the BRICS Chief Justices Forum in New Delhi from today. The forum will bring together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS member states and partner countries. The forum will provide a platform for dialogue among the participating judiciaries and for exchange of views on

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौर में ऐसा लगता है कि मानो तनाव हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। जिसे देखो वह तनाव से पीड़ित है। यहाँ तक कि आजकल बच्चे भी तनाव का शिकार होते जा रहे हैं। यदि तनाव से मुक्त पाना है तो इसका एक ही प्रभावी तरीका है और वह है योग। वैसे तो हर योग की अधिकतर क्रियाएं करने से आप तनाव से मुक्त हो सकते हैं, परंतु प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम सबसे ज्यादा इफेक्टिव यानी सर्वश्रेष्ठ माना गया है तनाव को कम करने के लिए। तो भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए आइए सीखते हैं कि किस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। भ्रामरी शब्द भ्रमर से लिया गया है, जिसका मुख्य अर्थ है भंवरा। इस प्राणायाम के अभ्यास के समय निकलने वाला स्वर यानी निकलने वाली आवाज भ्रमर के गुंजन के स्वर की तरह ही होती है।

इस तरह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र माना जाता है और हर बार जब भी आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इस अभ्यास को कम से कम 4 से 5 बार अवश्य दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है और चिंता, क्रोध और अति सक्रियता को घटाता है। भंवरे जैसी आवाज का प्रतिध्वनि प्रभाव आपके मस्तिष्क और आपकी कोशिकाएं, आपकी तंत्रिकाओं पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। यह महत्वपूर्ण शांतिकारक अभ्यास है, मतलब इस अभ्यास को करने से आपका तनाव काफी हद तक कम होता है और आपको एक शांति का अनुभव होता है। यह एकाग्रता और ध्यान की भी आरंभिक अवस्था मानी जाती है। तो आज के सेशन में हमने सीखा कि भ्रामरी प्राणायाम से आप किस प्रकार अपने तनाव को कम कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहे निरोग।

दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखंड। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कमर दर्द की समस्या बहुत ही आम होती जा रही है। युवावस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक कमर के दर्द की प्रॉब्लम पाई जाती है, जिसके लिए आज हम एक आसन करेंगे। उसका नाम है भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं और अपने दोनों हाथों पर सिर को टिकाए रखें और शरीर को शिथिल करें, यानी रिलैक्स कर दें। अब अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, हाथों को खींचकर आगे की ओर लेकर जाएं और माथा यानी फोरहेड आपके आसन पर टिकाए रखें। अब हाथों को धीरे धीरे वक्षस्थल यानी चेस्ट रीजन के पास लेकर आएं और ध्यान रहे कि आपकी दोनों कोहनियां ऊपर की ओर उठी हुई हों, यानी आसमान की ओर उठी हुई हों। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और छाती को नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठाने का प्रयास करें। दोनों कोहनियों को समांतर रखें और इसी स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक श्वास पर श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। दोनों कोहनियों को समानांतर रखें और 10 से 30 सेकंड सामान्य श्वास पर श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहे। इस अभ्यास को भुजंग आसन कहा जाता है। पुनः श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं और अपने माथे को जमीन पर टिकाएं और मकरासन की स्थिति में कुछ क्षण विश्राम करें। ध्यान रखें दोस्तों, जब आप यह आसन करें तब पैरों को उतना ही तान कर रखें कि कमर पर किसी भी प्रकार का कोई तनाव पैदा ना हो। भुजंग आसन का अभ्यास एक सेशन में कम से कम 3 से 4 बार दोहराएं। यदि आपको कोई हर्निया की प्रॉब्लम है और पेट की कोई रिसेंटली सर्जरी हुई है तो यह आसन अवॉइड करें। यह आसन आपकी कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और कुछ हद तक तनाव को भी दूर भगाता है। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस। आज कार्यक्रम में आपने सुना भ्रामरी प्राणायाम और भुजंगासन पर जानकारी। आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, सुबह के 5:18 हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे देते हैं। प्रातः 9:15 का समय रहेगा गांधी चर्चा का, जिसमें आज आप सुनेंगे वार्ता, विषय है शिक्षा और शिक्षकों पर गांधी जी के विचार। वार्ताकार होंगी निशा जिंदल। मिट्टी दी महक पंजाबी कार्यक्रम आप सुन सकते हैं, समय रहेगा प्रातः 9:30 का।

ये थी प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर सुबह के 5:20 होने को हैं। श्रोताओं, ये समय होता है देशभक्ति संगीत का।

इस देशगान के साथ ही आज का देशभक्ति संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, सुबह के 5:30 और 12 सेकंड हो चले हैं। ये समय है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर मुज्तबा हुसैन का राग नटभैरव में बांसुरी वादन।